नमस्कार, FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओ, आज शनिवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 2 तारीख, तदनुसार 23 मई सन 2026, प्रातः के 5:58 और 10 सेकंड हुए हैं। हम अपना आज का प्रसारण आरंभ कर रहे हैं।

0: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 6 बजने वाले हैं श्रोताओं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल

0: ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहलिनकैम्प से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र प्रांतिरक्षा मिशन में कार्यरत भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार के लिए चुना गया है। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। 6:05 हुए हैं। हमारा प्रसारण अब हम आपके लिए मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। सबसे पहले सुनिए भक्ति रचनाओं का कार्यक्रम वंदनवार।

नमस्कार, प्रस्तुत है कार्यक्रम वंदनवार। आज का चिंतन, भर्तृहरि के नीति शतकम के अनुसार महापुरुषों का चित्त समृद्धि के समय पुष्प के समान कोमल हो जाता है, किंतु वही चित्त संकट के समय पर्वत शिला के समान सुदृढ़ हो जाता है। आइए अब सुने भक्ति संगीत।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत। सुनिए आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान भाग 197। सुबह 6:45 और संध्या 6:45 से आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। आज से नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। इसका पहला भाग आज प्रसारित किया जाएगा। आमंत्रित कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहम, प्रस्तुति रूपाली रूपक की। भूले बिसरे गीत सुबह 7:00 से 7:30 से हम हैं राही प्यार के।

सुबह 8:15 से आपको सुनाएंगे त्रिवेणी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। 8:30 से चित्रलोक, सुबह 9:30 और रात्रि 9:30 से सुनेगा कार्यक्रम आज के फिल्मकार। यह कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेत्री शेफाली शाह पर। सुबह 10 से आपको सुनवाएंगे इब्राहिम यादगिरी की लिखी कहानी गोल्ड मेडल। कार्यक्रम होगा गीतों भरी कहानी। संपादन सहयोग काजल भद्रकी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। सुबह 11 और रात्रि 11 सुनेगा चित्रपट संगीत। सुबह 11:30 और रात्रि 11:30 से आपको सुनाएंगे कार्यक्रम मैटिनी शो। दिन में 12 से हिंदी समाचार, 12:05 से सुनेगा यादों की महफिल। सुरीला सफर, ये कार्यक्रम आप

सकेंगे दोपहर 1 बजे से, दोपहर 2 बजे से त्रिवेणी, दोपहर 2:30 से आपको सुनाएंगे सदाबहार नगमे।

दोपहर 3 बजे से मन चाहे गीत, दोपहर 2:30 से सुनिएगा नाट्य तरंग के अंतर्गत नाटक विजयमाल, लेखन रवि शर्मा का, प्रस्तुतकर्ता बीडी माथुर। शाम 4 बजे से पिटारा के अंतर्गत बॉम्बे टॉकीज, इसके अंतर्गत अभिनेता लेखक और निर्देशक देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत सुन सकेंगे, संपादक सहयोग रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। छायागीत का पुनर्प्रसारण आप सुनते हैं शाम 5 बजे से, शाम 5:30 से सुनवाएंगे आपको तराने नए पुराने। झरोखा सुनेगा शाम 6:30 से, 6:35 से संध्या रंजन, शाम 7 बजे से आपको सुनवाएंगे विशेष जयमाला, ये प्रस्तुत कर रहे हैं अभिनेत्री नरगिस, इसकी रिकॉर्डिंग आप सुन सकेंगे। शाम 7:45 से इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा, रात 8 बजे से हवा महल के अंतर्गत सुनेगा सुनो कहानी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी पत्नी का पत्र का चौथा भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। चितलोक रात 8:15 से आपके लिए रात 9 बजे से और 10 बजे से सुनिएगा कार्यक्रम छाया गीत, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी, रात 10:30 से आपको सुनाएंगे ढलती जाए रात।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 197।

राम सखा निषाद राज को गले लगाकर भरत ने कुशलक्षेम पूछा। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषाद राज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषाद राज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषाद राज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए।

श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।

0: कर्नाटक संगीत पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी पुरानी मान्यताएं। श्रोताओं, आज के संगीत सरिता कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रही हैं शकुंतला नरसिम्हन।
1: दोस्तों नमस्कार, और संगीत सरिता की इस कड़ी में आपका स्वागत है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के रागों के बारे में रोचक बातें आपके सामने पेश कर रही हूँ। तो आज का विषय है राग अमृतवर्षिणी। अमृतवर्षिणी का मतलब हुआ अमृत की धारा या वर्षा। जब देश में सूखा पड़ जाए और पेड़ पौधे और खेत सब सूख रहे हों, तब अगर बारिश होने लगे तो उस वर्षा को अमृत ही कहना उचित है, क्योंकि वर्षा से पेड़ पौधे पुनः जीवित हो उठते हैं। अमृतवर्षिणी राग द्वारा ऐसा ही हुआ था, ऐसा कहा जाता है। श्रोताओं, आपको याद होगा कि तानसेन के बारे में भी ऐसी ही एक कहानी प्रचलित है। तानसेन ने दीपक राग गाकर ज्वाला उत्पन्न किया था, और उस आग को बुझाने के लिए मेघराग को

गाना पड़ा। बिल्कुल उसी तरह कर्नाटक संगीत के एक महान वाग्यकार और कंपोजर मुत्तुस्वामी दीक्षितर ने भी अमृतवर्षिणी राग गाकर वर्षा उत्पन्न की थी, ऐसा कहते हैं। यह घटना करीब 200 वर्ष पहले की है, जब त्यागराजर और दीक्षितर जीवित थे। कहा जाता है कि मुत्तुस्वामी दीक्षितर एक बार दक्षिण भारत के तमिलनाडु प्रांत में एट्टयपुरम से गुजर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि पूरे प्रांत में सूखा था और खेत सब मुरझा गए थे। लोग भूख से पीड़ित थे और पानी की कमी थी, और इस हालत को देखकर दीक्षितर को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने उसी क्षण सफर में ही संस्कृत भाषा में एक कृति की रचना की, जिसके शब्द हैं आनंदामृत कृषिणी अमृत वर्षिणी हरादि पूजिते शिवे भवानी, मतलब भवानी की प्रशंसा में है। इस कृति में देवी भवानी का वर्णन है और कृति के अंतिम पंक्ति के बोल हैं अमृतेश्वरी सलिलम वर्षय वर्षय वर्षय, अर्थात देवी पानी बरसाओ बरसाओ बरसाओ। इस रचना को गाते ही आकाश में न जाने कहीं से घने बादल घिराए और सलिलम वर्षय वर्षय कहते ही जोर से बारिश होने लगी। लोग अत्यंत खुश हुए और उनकी वेदना भी दूर हो गई, खेतों में पानी भर गया। राग अमृत वर्षिणी का परिचय अब देती हूँ। यह एक औड़व औड़व राग है, अर्थात आरोह अवरोह में पांच स्वर लगते हैं। इस प्रकार

स्वर हैं शुद्ध गांधार, तीव्र मध्यम और शुद्ध निषाद। यह राग चित्रांबरी नाम का 67वां मेलकर्ता का जन्य है। राग सीधा साधा, सरल और अत्यंत लोकप्रिय है और विस्तार भी आसानी से हो सकता है। इसे एक आधुनिक या मॉडर्न राग कह सकते हैं क्योंकि यह करीब 200 वर्षों से ही प्रचलित है। इस राग में बहुत कम बंदिशें मिलते हैं और उनमें सबसे प्रसिद्ध कृति दीक्षितर द्वारा रचित आनंदामृता कृष्णी है। तो अब सुनिए अमृतवर्षिणी राग में इस कृति को, जो आदि ताल में निबद्ध है।

इसी राग को आधुनिक पद्धति में फ्लूट पर पेश किया गया है। जैसे मैं कह रही थी कि ये आधुनिक राग है, प्राचीन राग नहीं है। तो अमृतवर्षिणी राग को सुनिए, बांसुरी पर कलाकार हैं रूपक कुलकर्णी।

0: पद्धति के अंतर्गत आने वाले कुछ राग और उनसे जुड़ी पुरानी मान्यताएं। इसे प्रस्तुत कर रही है शकुंतला नरसिम्हन। कल इस कार्यक्रम की अगली कड़ी आप सुनेंगे हमारे इसी संगीत सरिता कार्यक्रम में।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन भूले बिसरे गीत। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: वज्रदंती,
1: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: कार्यक्रम भूले बिसरे गीत, सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं शमशाद बेगम और चितलकर की आवाजों में पतंगा फिल्म के गाने के साथ। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार हैं सी रामचंद्र।
3: हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ।

आइए अब सुना जाए राजा मेहंदी अली खां का लिखा और एस डी बर्मन का संगीत बद्ध किया गाना। आवाज है गीता दत्त की, फिल्म का नाम दो भाई।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में
0: के जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज। सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
4: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं दर्द फिल्म का ये गीत।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है भूले बिसरे गीत। आइए सुने लाहौर फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में लाहौर फिल्म का गाना। गीतकार थे राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार थे श्याम सुंदर। लीजिए, अब आपको सुनवा रहे हैं नूरजहां की आवाज में जुगनू फिल्म का ये गाना।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल लगवे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
1: प्यार का राग सुनो रे
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश राजकुमारी की आवाज में महल फिल्म से। गीतकार हैं नक्शब जारजवी और संगीतकार हैं खेमचंद प्रकाश।

0: इस गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न हुआ। आपने
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मर क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हम हैं राही प्यार के। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में मेरे सनम। इस फिल्म के गाने के साथ मजरू सुल्तानपुरी हैं गीतकार और संगीतकार हैं ओ पी नैयर।

अगला गाना आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। इसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से संवारा है खयाम ने। फिल्म का नाम मोहब्बत इसको कहते हैं।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
2: सखी सहेली।
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। लीजिए अब सुनिए मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजों में पूर्णिमा फिल्म का गाना। गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
1: घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है हम है राही प्यार के नमस्ते जी। जहां इस फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अनजान के बोल और तर्ज बनाई है जी एस कोहली ने।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से भी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में। गीतकार हैं कमर जलालाबादी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी और फिल्म का नाम जौहर महमूद इन गोवा।

0: इस गाने के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: हम हैं राही प्यार की, आपने ये कार्यक्रम सुना श्रोताओं। ये कार्यक्रम हमने आपके लिए अपने मुंबई केंद्र से रिले किया। हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, FM 107.2 MHz पर। 8 बजने को ही थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हम आपके लिए हिंदी में समाचार रिले करेंगे।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
4: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत

0: और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
1: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
2: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं। हमारी जांचीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में यह तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री

0: तोशिमित्सु मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
1: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस

0: राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
1: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
2: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। इस उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता UCC की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
3: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी IAS अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट UG की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नवभारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, है प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्य की हेडलाइन है आसमानी आग में झुलसा देश पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादन

0: तबके में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं संभले तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की आठवीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए की अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आज लाखों करोड़ों की भीड़ में भी कई बार इंसान अपने को अकेला पाता है। आधुनिकता के इस दौर में छोटे होते जा रहे परिवार के कारण अकेलेपन की समस्या आम बात हो गई है। ऐसे में अगर हम अपने लक्ष्य पर, अपनी प्रगति पर ध्यान देंगे तो हमारा अकेलापन हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी शक्ति बन जाएगा। देखे ना, चांद रोज रात को आकाश में अकेला ही अपने सफर पर निकल पड़ता है, बिना थके, बिना हारे।

अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के अलावा अकेलापन दूर करने का एक सरल उपाय है। अपने जीवन में किसी को अपना हम ख्याल बना लें, हम सफर बना लें, ऐसा प्रयास करके तो देखें। जिंदगी एक नए रूप में, नए रंग में मुस्कुराती नजर आएगी।

लेकिन आज के जीवन की आपाधापी में कोई आपका साथ न दे, कोई आपकी पीठ न थपथपाए, आपकी सफलता पर तालियां न बजाए, तो फिक्र की क्या बात है। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका सच्चा हितैषी तो ऊपर वाला होता है। ऐसे में अपनी क्षमताओं पर विश्वास

कीजिए, आप अकेले ही पूरी दृढ़ता के साथ प्रगति के पथ पर बढ़ सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, ज्योतिर डाक्षुने के उनाशे तबे एकला चलो रे।

दोस्तों, जब हम सकारात्मक सोच के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो अकेलापन हमारी शक्ति बन जाता है। आज त्रिवेणी का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक। इस कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को राजेश का प्यार भरा नमस्कार। प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाजों में प्रसून जोशी के लिखे गीत के साथ, जिसे संगीतबद्ध किया है शंकर एहसान लॉय ने। फिल्म का नाम भाग मिल्खा भाग।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की,

0: सुनिए एक खुशखबरी, कहिए ना, आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब सुनिए सोनू निगम और सुनिधि चौहान की आवाजों में किरण कोटरियाल का लिखा और राजू सिंह का संगीतबद्ध किया गाना, फिल्म का नाम प्रेम का गेम। बोले आई वांट टू फॉल फॉर लव।

अगले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
2: आपने ट्यून किया है भारत का नंबर 1 मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक।

विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से अभी आप सुन रहे कार्यक्रम चित्रलोक। अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में यारियां फिल्म का गाना लमी थोड़ा, और इरशाद कामिल थे गीतकार और संगीतकार प्रीतम। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं अमित योश नागपाल, सुजीत शेट्टी और अमित कपूर की आवाजों में बेशरम फिल्म का ये गाना।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहनियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आइए अब सुनते हैं मीत ब्रदर्स अंजन और स्टीफन बेन की आवाजों में शिमला मिर्च फिल्म का गाना कुमार के बोल और मीत ब्रदर्स अंजन की है तर्ज।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अभी आप सुन रहे थे रंजना फिल्म का गाना है, आवाजी थी मधुश्री आंचल सेठी और सखियों की, रियाज कामिल ने लिखा था इसे और संगीत से संवारा था एआर रहमान ने। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं जोनिटा गांधी की आवाज में दंगल फिल्म का गाना। अमिताभ भट्टाचार्य हैं गीतकार और संगीतकार हैं प्रीतम।

इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रसूति फिस्टुला उन्मूलन दिवस। इसका उद्देश्य महिलाओं में प्रसव के दौरान होने वाली गंभीर बीमारी प्रसूति फिस्टुला के प्रति जागरूकता फैलाना तथा इसके उन्मूलन के लिए प्रयास करना है। इस रोग के कारण महिलाओं को शारीरिक पीड़ा के साथ साथ सामाजिक उपेक्षा और मानसिक कष्ट भी सहना पड़ता है। ये समस्या विशेष रूप से उन क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है जहां उचित स्वास्थ्य सेवाओं, पोषण और प्रशिक्षित चिकित्सकों की कमी होती है। समय पर चिकित्सा सुविधा, सुरक्षित प्रसव तथा महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता से इस रोग को रोका जा सकता है। इस वर्ष की थीम है हर हेल्थ इज अ राइट, इन्वेस्ट इन एंडिंग फिस्टुला एंड चाइल्ड बर्थ इंजरीज। तो दोस्तों, चित्रलोक कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब आपको पालोमा की आवाज में हेलीकॉप्टर इला फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सदाबहार नगमे।

आपने ट्यून किया है भारत का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती और कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवा रहे हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में पीके फिल्म का गाना। अमिताभ वर्मा हैं गीतकार और संगीतकार हैं शांतनु मोइत्रा। लव इज अ वेस्ट ऑफ टाइम।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे भूल भुलैया 2 फिल्म का गाना अरिजीत सिंह की आवाज में। समीर ने लिखे थे बोल और तर्ज बनाई थी प्रीतम ने। और आज के इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मंच म्यूजिक हरबी सहारा और नेहा कक्कर की आवाजों में गुड न्यूज फिल्म से। तनिष्क बागची, हरबी सहारा ने लिखा इससे और संगीत से संवारा तनिष्क बागची, मंच म्यूजिक और हरबी सहारा ने। लाल घाघरा।

0: इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम यही संपन्न हुआ। अपने दोस्त राजेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रलोक। ये कार्यक्रम हमने श्रोताओं आपके लिए विविध भारती के मुंबई केंद्र से रिले किया। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। 9:30 हुए हैं, बस कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रोग्राम आज का अखबार।
2: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: हर घर सूर्य घर।
1: निजी श्रोताओं, आप सुनिए प्रोग्राम आज का अखबार।
5: आज का अखबार।
1: आज का अखबार, ये प्रोग्राम सुन रहे सभी श्रोताओं को सुनीता भगत की ओर से नमस्कार, शुभ प्रभात, अ वेरी गुड मॉर्निंग। जी तो कैसे हैं हमारे सभी श्रोता भाई? सभी सुनने वाले अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश रहने की कोशिश भी कर रहे होंगे। ऐसे गर्म मौसम में जब कुछ भी अच्छा नहीं लगता ना, तो खुश रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन भाई हम तो ये कहेंगे कि आज फिर से एक नया दिन है, नई सुबह है, और जब ये नया दिन है तो आपकी ज़िंदगी का भी नया दिन है। तो नया दिन है तो हमें उस ईश्वर को हमेशा ही धन्यवाद देना चाहिए कि कुछ और सांसें उसने हमें दे दी हैं जीने के लिए। देखिए ना कितना अनमोल जीवन है ये, तो इस जीवन को हंसते हुए मुस्कुराते हुए ही हमें बिताना चाहिए। वैसे भी जो नया दिन होता है ना, तो जैसे लगता है हमारी उम्मीदें जो हैं वो भी कुछ नई हो गई हैं। तो ऐसे में कल की उलझनों को हमें पीछे छोड़ देना चाहिए और जीवन के नाम एक प्यारी सी मुस्कान जो है ना, वो हमेशा अपने होंठों पर रखनी चाहिए। सूरज जो है वो सिर्फ उगता नहीं है ना दोस्तों, हर सुबह कुछ नए नए सपने भी हमारी आंखों में जगाता है। और ये जो नया दिन है हमारे जीवन का, ये कहता है कि चलो आज फिर कुछ नया करते हैं। तो आप कुछ भी करें, बस अच्छा करें, हम तो यही कहेंगे आपसे। मतलब अच्छा बोलें, मीठा बोलें, प्यारा बोलें, कुछ ऐसा कहें कि सुनने वाले को बस ठंडक आ जाए। अच्छा सुने, अच्छा सुनना भी बहुत ज़रूरी है, और अच्छे अच्छे काम करें। देखिए अगर आप जीवन में हम कुछ अच्छा कहेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छे काम करेंगे, तो खुद तो भाई हम अपने आप को खुश रखेंगे ही, हमारे आसपास के जो लोग हैं ना उन्हें भी शांति मिलेगी, चैन मिलेगा, बड़े सुख से वो भी रहेंगे। तो हम अगर दूसरे के सुख में खुशी महसूस करते हैं तो ये तो अच्छी बात है ना दोस्तों। तो भाई नया दिन नई आशाएं, जीवन का एक नया गीत है, तो मन में विश्वास रखिए कि जो मुश्किलें आएंगी वो भी दूर हो ही जाएंगी। तो आज कर लीजिए ना वादा अपने आप से, एक वादा ये कि हर दिन जो आपकी ज़िंदगी का है वो आप ऐसे जिए कि जैसे वैसे भगवान न करे आपका ये आखिरी दिन है। अब देखिए जब कोई चीज़ आखिरी बार हमारे पास आती है ना, तो हम बड़ी शिद्दत के साथ उसको चाहते हैं। तो ये सोचिए कि आपको अपना हर दिन ऐसे ही जीना है, और ये जज्बा जब आपके मन में आ जाएगा ना, तो आपको लगेगा जैसे दुनिया की सारी खुशियाँ जो हैं आपकी झोली में आ गई हैं।

जी, तो बस यही उमंग रखनी है हमें अपने दिलों में, तो फिर देखिएगा जीवन जीने का आनंद है ना, वो कुछ और ही ज्यादा हो जाएगा। तो जी, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज का अखबार, मैं हूँ आपके साथ आप सबकी अपनी सुनीता भगत। तो चलिए फिर समाचारों की सुर्खियों की तरफ। ऐसा करते हैं, पहले देश की जो सुर्खियां हैं वो आप तक पहुंचाते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी आज रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बांटेंगे नियुक्ति पत्र। देश भर के 47 स्थानों पर होगा ये आयोजन।

भारत ने कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 1 की मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। साइप्रस और भारत के बीच हुए 6 अहम समझौते। प्रधानमंत्री मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति के बीच हुई बैठक में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री रक्षा, शिक्षा, संस्कृति और भारत यूरोपीय संघ के संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने स्मार्ट बॉर्डर परियोजना की घोषणा की। 6000 अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा ग्रिड, ड्रोन राडार और उन्नत कैमरे लगाए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा 27 मई से देशव्यापी आंदोलन करेगा। एमएसपी व्यवस्था को बताया फर्जी। संगठन ने कालाबाजारी पर कार्रवाई ना होने का भी आरोप लगाया है। भारत की ऐतिहासिक चंद्र मिशन चंद्रयान 3 ने बड़ी वैश्विक उपलब्धि हासिल की है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स से मिला प्रतिष्ठित गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड। सीबीएसई की नई भाषा नीति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका, सुनवाई अगले हफ्ते होगी। बता दें कि सीबीएसई की नई नीति में 1 जुलाई से 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 अतिरिक्त भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। बीएसएफ की पहली महिला पर्वतारोही टीम ने फतह किया माउंट एवरेस्ट। गृह मंत्री ने दी बधाई। भारत में 47,000 बच्चे हैं लापता। सुप्रीम कोर्ट का देशभर के थानों को निर्देश। गुमशुदगी

पर बिना देरी दर्ज हो FIR। और देश भर में भीषण गर्मी का कहर जारी है। वहीं अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के संकेत मिले हैं। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की ओर, लेकिन उससे पहले ये संदेश सुन लीजिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनिए कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक। अपनी फरमाइश का फिल्मी गीत सुनने के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें अपनी फरमाइश भेजें। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है AIR चंडीगढ़। तो FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़ से सुनना न भूलें हर शुक्रवार दिन में 11:15 से 12 बजे तक और हर शनिवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस।
2: जी, तो आपकी मैसेजेस का, आपकी संदेशों का हमें रहेगा इंतजार। अपनी फरमाइश भेजना मत भूलिएगा। विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं प्रोग्राम आज का अखबार। मैं हूं आपके साथ श्रोता सुनीता भगत। तो चलिए अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों की ओर। श्रोता, ईरान अमेरिका में संधि का मसौदा तैयार हुआ है। तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम इसमें शामिल है। संधि में सभी मतभेद सुलझाने की बात है, लेकिन होमुर्ज पर सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दुनिया से अपील की कि होमुर्ज में ईरान द्वारा शुल्क लगाने की व्यवस्था को ना करें स्वीकार। यूक्रेन में रूसी तेल रिफाइनरी पर साधा निशाना। 800 किलोमीटर से अधिक दूर सिजरान तेल रिफाइनरी पर किया ड्रोन से हमला, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने किया है दावा। भारत का बढ़ा मान, मेजर अभिलाषा बराक को मिला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। लेबनान ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में महिलाओं के लिए किया है शानदार काम।

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की संसद में लगातार गैर हाजिरी को लेकर विपक्ष ने किया विरोध प्रदर्शन, संसद हुई स्थगित। न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास 29 मई को भारतीय निर्यातकों के लिए एक विशेष वेबिनार आयोजित करने वाला है, पाथवेज फॉर एक्सपोर्ट टू यूएसए। भारतीय सामान को अमरीकी रिटेल स्टोर वॉलमार्ट तक पहुंचाने के लिए नियमों और सप्लाई चेन की दी जाएगी जानकारी। दक्षिणी लेबनान पर इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 10 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य कर्मियों और मेडिकल सुविधाओं को निशाना बनाया गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का है उल्लंघन।

तो भाई अब करते हैं स्थानीय और प्रादेशिक खबरों की जो सुर्खियां हैं उनकी बात। ट्राइसिटी की बात करें तो चंडीगढ़ में हाईकोर्ट के जज करेंगे कार पूलिंग व्यवस्था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई। 33% स्टाफ करेगा घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम, और ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। चंडीगढ़ में किसानों ने CLU नीति लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कृषि भूमि पर होटल, होम स्टे और कारोबार से गांव को और ग्रामीणों को मिलेगा रोजगार। पुलिस सुधार और सुविधाओं को लेकर दायर की गई जनहित याचिका का हुआ निपटारा। हाईकोर्ट ने प्रशासन को दिया 2 महीने का समय।

डुडुबाजरा डंपिंग ग्राउंड पहुंचे निगम कमिश्नर। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद निगम एक्शन में, कर्मचारियों के साथ खुद जुटे सफाई अभियान में। इबोला वायरस को लेकर पीजीआई सतर्क, हर स्थिति से निपटने को है तैयार। शहर में बढ़ेंगी हाई राइज इमारतें, प्लॉट सिस्टम की जगह ग्रुप हाउसिंग को मिलेगा बढ़ावा। सेक्टर 43 और विकास मार्ग बनेंगे नए बिजनेस हब। मास्टर प्लान 2031 में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जीपीए मकानों की खुलेगी रजिस्ट्री, 52,000 संपत्तियों को मिल सकता है मालिकाना हक। यूटी प्रशासन की मंजूरी, अंतिम फैसला केंद्र सरकार ही लेगी। मोहाली में नगर निगम चुनावों को लेकर प्रशासन से फर्जी वोटिंग और नकली आधार कार्डों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग हुई। पूर्व पार्षद और समाज सेवी परमजीत सिंह काहलू ने डिप्टी कमिश्नर और एसएसपी को लिखा पत्र। कर्मचारियों और पेंशन धारकों ने सरकारी नीतियों के विरोध में मोहाली में निकाली विशाल बाइक रोष रैली। जल्द मांगे पूरी ना होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। संगोली में डॉग शेल्टर बनाने की मांग हुई तेज। पूर्व डिप्टी मेयर ने निगम कमिश्नर को लिखा पत्र। और श्रोताओ, पंचकुला रोडवेज को मिलेंगी 10 नई BS6 बसें। 20 दिनों के भीतर ही संचालन होगा शुरू। पंचकुला के 11 स्कूलों में बनेंगी अटल टिंकरिंग लैब। विद्यार्थियों को रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D प्रिंटिंग की मिलेगी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। खबरों की सुर्खियां भी और भी हैं। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सुर्खियां आप तक पहुंचाएंगे। और जैसा कि हमारे सभी श्रोता जानते ही हैं, खेलों की बात भी हम किया करते हैं और मौसम की बात तो भई होगी ही। तो ऐसा करें, पहले एक गीत सुन लेते हैं।

जी, तो इतना तो आप जानते ही हैं, मानते हैं कि चलते रहना ही जिंदगी का नाम है, और जो थम जाता है उसके लिए तो भाई क्या जिंदगी। अच्छा, तो आप भी बस यूं ही चलते रहिएगा। हाँ, लेकिन चलिएगा तभी, मतलब घर से बाहर तभी जाइएगा अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो। आप जानते हैं आजकल बहुत गर्मी पड़ रही है, लू चल रही है बाहर, और गर्म थपेड़ों से आपका सामना हो सकता है। वैसे बहुत सारे श्रोताओं का तो आज भाई घर में ही रहने का प्लान होगा, क्योंकि बहुत सारे दफ्तर, स्कूल आज के दिन बंद होते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये समय मिला है घर में रहने के लिए, तो हम तो यही कहेंगे आपको कि अगर ज़रूरत नहीं है तो घर में ही आप रहें। तो फिर से आपको याद दिला दें, आप इस समय सुन रहे हैं प्रोग्राम आज का अखबार। अब आपको सुर्खियां हम जो सुनवाएंगे वो हमने पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से ली हैं, लेकिन उससे पहले ये संदेश आप सुन लें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सुर्खियां कुछ पंजाब से। पंजाब में भीषण गर्मी का असर, 25 मई से बदलेगा स्कूलों और दफ्तरों का समय। नए आदेशों के अनुसार सुबह 7:30 से दोपहर 1:30 तक है ये नया समय। ये शेड्यूल स्कूलों की सभी कक्षाओं पर समान रूप से ही लागू होगा। पंजाब निकाय चुनावों पर बड़ा फैसला, हाईकोर्ट ने खारिज की ईवीएम की मांग वाली याचिकाएं, कहा अब देर हो चुकी, बैलेट पेपर से ही होंगे पंजाब निकाय चुनाव। आपको बता दें 105 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए 26 मई को मतदान होगा। पंजाब में होने वाले निकाय चुनावों के चलते पंजाब यूनिवर्सिटी ने 26 मई को होने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। शिकायतें निपटाने में हरियाणा बना नंबर एक, लोक शिकायत विभाग की आई रिपोर्ट, समाधान से 78% लोग संतुष्ट हैं। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनेगा और भी अधिक आधुनिक, बनाए जाएंगे पीपीपी स्मार्ट कार्ड। हरियाणा बनेगा ईवी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र, 9 जापानी कंपनियां करेंगी 5,000 करोड़ रुपए निवेश। अब प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के काम की होगी डिजिटल निगरानी। अप्रैल 2027 से बंद होगी मैनुअल एसीआर व्यवस्था, डिजिटल परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा लागू। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 1,280 पंचायतों के लिए 26 मई को होगा मतदान। पहली बार गांव की सरकार चुनेंगे 52,349 युवा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की मंत्रिमंडल बैठक, कई अहम फैसले लिए गए, विभिन्न विभागों में 2,215 से अधिक पद भरे जाएंगे। पर्यटन सीजन के दौरान 24 घंटे खुलेंगी दुकानें और प्यारी बहना योजना के अंतर्गत अब 2,00,000 से कम आय वाली महिलाओं को ही मिलेंगे 1,500 रुपए। प्रदेश में इस बार जनगणना डिजिटल तकनीक से होगी। 1 जून से 15 जून तक मिलेगा स्वगणना का मौका। हिमाचल ने पड़ोसी राज्यों के लिए घटाई बिजली बैकिंग, हरियाणा और पंजाब को पहले स्तर की बिजली देने में कटौती की। खेलों की बात करें तो यूकी भांवरी और माइकल वीनस जनेवा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के युगल वर्ग के फाइनल में पहुंच गए हैं। आईपीएल में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रनों से हरा दिया। शीर्ष पर रहते हुए आरसीबी क्वालिफायर राउंड एक में पहुंच गई है। आज श्रोताओं पंजाब किंग्स का मुकाबला है लखनऊ सुपर जॉइंट्स के साथ। मलेशिया ओपन मास्टर्स टूर्नामेंट में शटलर अश्मिता चाहिला का सफर समाप्त हुआ। एशियाई अंडर 23 कुश्ती के लिए वियतनाम रवाना हुई टीम और हरियाणा की 7 महिला पहलवान इसमें ले रही हैं हिस्सा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 6 दिन फिर से बहुत गर्म रहने वाले हैं और चंडीगढ़ की बात करें तो 28 मई को छा सकते हैं बादल, बूंदाबांदी भी हो सकती है। आज आंशिक बादल छाने की संभावना है। तापमान आज लगभग 40 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। कल का आसमान साफ रहेगा। चंडीगढ़ में कल का अधिकतम तापमान था 44.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 26.2 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:13 पर, कल सूर्योदय होगा 5:25 पर। और श्रोताओं अब 10 बजने वाले हैं तो कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त हो रहा है।

0: आकाशवाणी दिल्ली से अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। सुनीता भगत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: आज का अखबार।

0: संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की ये पहली भारत यात्रा है। यात्रा अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार ये वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर स्थित एक विशेष न्यायालय ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी मजदूरों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके पास अवैध दस्तावेज में ये मजदूर तिरुप्पुर जिले के पल्लडम के एक कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता दर्शाने वाले पहचान पत्र भी पाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद कल ये फैसला सुनाया गया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में भी कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट

0: शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतरोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। इस समय श्रोताओं 10:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सफर सुरीला सा, लेकिन उससे पहले ये संदेश आपके लिए।
2: सूट साड़ी लहंगा व रेमंड सूटिंग के डायरेक्ट डीलर बग्गा सारीज नियर रेलवे स्टेशन अंबाला शहर। फोन 8950632224।
1: सफर सुरीला सा, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम। तो इस सफर में आइए, इस गर्मी के माहौल में सबसे पहले आपको कश्मीर लिए चलते हैं।

हमारे श्रोताओं ने सुना लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सुरेश वाडेकर की आवाजों में बेमिसाल फिल्म से ये गीत। जी, तो कश्मीर, जिसे हम धरती का स्वर्ग भी कहते हैं, और ऐसे गर्म मौसम में, इन गर्मियों में, इन गर्मियों की छुट्टियों में, देश भर से ही नहीं पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। तो भई आप भी निकल जाइए पहाड़ों की सैर पर, ठंडी हवाओं का मज़ा लीजिए। आज इस कार्यक्रम में हमने कुछ ऐसे ही गीत चुने हैं आपके लिए जो आपको कुछ ठंडक पहुँचाएंगे, और आप हसीन वादियों के बीच में हैं, पहाड़ों के बीच में हैं, इसका एहसास होगा आपको।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वैसे दोस्तों, पहाड़ों की सैर का भी अपना ही मजा है। ठंडी हवाओं में एक नशा सा महसूस होता है और जो बादल होते हैं उनमें तो जैसे खो जाने को मन चाहता है। यूं लगता है जैसे प्रकृति ने अपने आप को हमारे सामने बिछा दिया है और अपनी बाहों में भर लिया है हमें।

होगा अगर आप पहाड़ की सैर पर निकले होंगे कभी, कि यादों में एक ठंडी हवा बनकर बस जाता है वहाँ का सुकून। जब आप शहर को लौटते हैं ना, तो वो आपको बार बार अपनी ओर बुलाता है। वादियों की खामोशी गीत सुनाने लगती है वहाँ पर। पहाड़ों की सैर जिंदगी को थोड़ा सा और खूबसूरत, खुशनुमा बना देती है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार को आप सुन रही थी। फिल्म का नाम था ये गुलिस्ता हमारा। तो आज इस कार्यक्रम में हमारी श्रोता पहाड़ों की सैर पे निकले हैं हमारे साथ। कुछ ऐसे गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिन्हें सुनकर मन को ठंडक मिलती है और एक अच्छा सा एहसास जो है वो आप तक पहुंचता है। अब बेशक आप पहाड़ पे इस समय ना हो, लेकिन इस तरह के गीत सुनकर आपको ऐसा ही लगता है कि आप हरी भरी वादियों के बीच में हैं, ठंडी हवाओं के बीच में हैं, झरने कलकल जहाँ पर बह रहे हैं वहाँ हैं आप। तो कितना अच्छा लगता है ना। तो चलिए अगला गीत भी आपको सुनवाते हैं। दरअसल ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो होते हैं और वहाँ पे जो घुमावदार रास्ते होते हैं, और फिर यूँ लगता है कि जैसे बादलों ने एक चादर सी ओढ़ ली है धुंध की। सच कहीं तो पहाड़ों में ना दिल को बड़ा सुकून मिलता है, और वादियाँ जब आप देखते हैं, हरी भरी वादियाँ, ऐसा लगता है कि आपको पुकार रही हैं कि बस चले आइए।

आप सुन रही हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सफर सुरीला सा। अगला गीत सुनवाते हैं आपको संदेश के बाद।

0: थाना पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: तीखा कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल जो किया जाता है फर्स्ट क्वालिटी सरसों से तैयार और जिससे हो जाएगा आपको प्यार। अभी ऑर्डर करें www.pikarrenterprises.com पर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो चलिए चल निकलते हैं पहाड़ों की ओर। यकीन कीजिए, पहाड़ों के रास्तों में दिल को बड़ा सुकून मिलता है और दिल हर नज़ारे के साथ थोड़ा और खिल जाता है।

जी, आप चलें पहाड़ों की ओर और हमारा फिलहाल अगले प्रोग्राम पर चलने का वक्त हो गया है। तो श्रोताओं, सफर सुरीला सा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हुआ। अब सुनते हैं कार्यक्रम पॉप टाइम, और ये कार्यक्रम आप तक विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से पहुंच रहा है।

0: पॉप टाइम प्रोग्राम सुनने वाले सभी दोस्तों को रमेश कपूर का प्यार भरा नमस्कार।
1: हेलो, मेरे मैंगो जूस जैसे खट्टे मिठे पाजी।
0: हेलो पिंके, आज अकेले ही? शन्नो जी कहाँ हैं?
1: पाजी, शन्नो जी तो सेल्फी की कायल हो गई हैं, टीडी टी करके।
0: हाँ पिंके, शन्नो जी तो कायल हैं सेल्फी की, बहुत सेल्फियां खींचती हैं शन्नो जी।
1: ओहो पाजी, वो कायल जब चोट लगती है खून निकलता है, वो वाली कायल टीडी टी करके।
0: ओहो, अच्छा अच्छा, घायल?
1: हाँ जी कायल।
0: पिंके, क्या हुआ शन्नो जी को?
1: पाजी, बड़ी छुई मुई सी बनती हैं शन्नो जी। कई बार कहा है भाई इतनी सेल्फियां ना लिया करो टीरी टी करके, पर वो है कि मानती नहीं।
0: पिंके, पर हुआ क्या है शन्नो जी को?
1: पाजी, अब क्या बताऊं यार, सुबह पार्क में झूला झूल रही थी टीरी टी करके, बस झूला झूलते झूलते पता नहीं दिमाग में क्या आया, चूल्हे पर सीधी खड़ी हो गई। जैसे ही सेल्फी लेने के लिए वो खड़ी हुई, चूल्हे समेत तड़ाम करके नीचे टीडी टी करके। पाजी, शन्नो जी भी पूरी टीढ़ है, गिरते गिरते भी सेल्फी खींच के मुंह किताब यानी फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर दिया। मी गॉट फट्टड़ विद चूल्हा टीडी टी।

0: मेछी भाई फटाफट सरकारी एसी चलाओ ना, गर्मी ने वट कट दिए हैं टीडी टी करके।
1: हाँ पिंके वाकई गर्मी तो बहुत है।
0: तो पाजी फटाफट सरकारी एसी चलाओ ना, मेरा मुंह तो ऐसे झांक रहे हैं जैसे पहली बार किसी ने संगमरमर वाला ताजमहल देखा हो टीडी टी करके।
1: पिंके आज तो बड़े संगमरमर बन रहे हो, क्या बात है?
0: पाजी आपको मेरे मार्बल बनने पर बिल आ रहा है टीडी टी करके। फटाफट एसी चलाओ, हाँ बातें ना बनाओ टीडी टी करके, और जरा पाइया को ठंडी सरकारी हवा का हम भी पूरन आनंद ले लें टीडी टी करके।
1: पिंके सुधर जाओ।
0: ओए होए पाजी अब चला दो ना सरकारी एसी के छोटी सी पर्ची पर लिख के दूं टीडी टी करके।
1: नहीं नहीं पिंके उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लो चल गया एसी।
0: हाय हुण आई मेरी जान में जान। वैसे भाई बड़े दुखी हो के चलाया अपने सरकारी एसी। जैसे सारा बिजली का बिल आपकी जेब से जाएगा मेरे दुखी राम भाजी।
1: पिंके तुम भी पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हो।
0: पाजी आज शन्नो जी यहाँ पे होती ना तो इस सरकारी एसी के साथ एक सेल्फी जरूर लेती टीडी टी करके।
1: एसी के साथ सेल्फी?
0: और नहीं तो क्या, आलुओं के साथ सेल्फी लेती। पाजी अब तक तो शन्नो जी ने सरकारी एसी के साथ सेल्फी लेके मुंह किताब यानी फेसबुक पर डाल भी दी होती टीडी टी करके। एंजॉयिंग ठंडी हवा विद सरकारी एसी टीडी टी करके।
1: अच्छा
0: हाँ जी भाजी इसमें हैरान होने वाली कौन सी बात है, आजकल शन्नो जी इतनी सेल्फियां लेती हैं कि मोबाइल भी बोल उठता है। हाय ओए एक मिनट चैन नहीं लेने देती ये सेल्फिश।

0: पाजी शन्नो जी को सेल्फ एरिया हो गया सेल्फ एरिया टी डी टी करके।
1: अच्छा
0: हाँ जी पाजी, शन्नो जी कहती हैं कि मोबाइल फोन में सेल्फी मेरे से ज्यादा वधिया कोई नहीं ले सकता टी डी टी करके। पाजी मैं सब्जी बनाता हूँ, शन्नो जी फटाफट सब्जी के साथ सेल्फी ले लेती हैं। मैं रोटी बनाता हूँ तो रोटी के साथ फटाफट सेल्फी टी डी टी करके। माई हब्बी मेकिंग फुलका।
1: अच्छा
0: हाँ जी भाजी, शन्नो जी के साथ साथ मैं भी बड़ा मशहूर हो गया हूँ फेसबुक पे टी डी टी करके। हस्बैंड से हब्बी हो गया हूँ टी डी टी करके। ओए होए पाजी क्या बताऊं, एक दिन तो वो पीली पीली पूंडियां होती है ना, उन पूंडियों की खखर, मेरा मतलब है पूंडियों के छत्ते के साथ सेल्फी ले रही थी शन्नो जी। बस जैसे ही शन्नो जी ने क्लिक किया, पूंडियों ने उड़ के मेरे मुंह पर दे डंग ते डंग, दे डंग ते डंग।
1: ओहो
0: बस ओहो, और नहीं पाजी, उन पूंडियों ने मेरा मुंह सुजा सुजा के सेल्फी पलवान वर्गा बना दिया टी डी टी करके।
1: ओहो बेचारा पिंका।
0: पाजी चार पांच दिन तक तो ऐसे ही मैं सेल्फी पलवान बना घूमता रहा टी डी टी करके। पाजी यहां तक के लोग मुझे टाउट करने लगे, सेल्फी पलवान।
1: देखा पिंके, शन्नो जी की वजह से किस तरह से तुम कांगड़ी पहलवान से सेल्फी पहलवान बन गए
0: ना। अब मैं दंगल लड़ूं पूंडियों के साथ टी डी टी करके।

0: गई चुल।
1: पिंके, आजकल सेल्फी का बहुत क्रेज है।
2: हाँ जी बाजी, हर बंदा सेल्फी सा हो गया टीडी टी करके।
1: बिल्कुल ठीक कहा पिंके।
2: पाजी, एक दिन हम ना पचकूला गए थे टीडी टी करके।
1: क्या करने?
2: शादी करवाने।
1: पर तुम लोग तो
2: शादी शुदा है पाजी, हम तो हम अपनी नहीं मामे के लड़के की शादी करवाने गए थे टीडी टी करके।
1: ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझा।
2: पाजी बड़ी देर से समझे, आप भी ना 2G हो, अब तो 4G हो जाओ टीडी टी करके।
1: अच्छा पिंके, फिर क्या हुआ?
2: पाजी शन्नो जी ने जैसे ही उस शादी वाले होटल में एंट्री की, दे सेल्फी।
3: कभी गोलगप्पे खाते हुए, कभी चाट खाते हुए, कभी टिक्कियां खाते हुए, और कभी सलाद की प्लेट के साथ, कभी दूल्हे के साथ, कभी दुल्हन के साथ सेल्फी। ओए होए होए होए, शन्नो जी के मोबाइल फोन के कैमरे की भी टीडी टी हो गई। और मोबाइल फोन का कैमरा बोल उठा, ओए होए, इतनी फोटो में तो दूल्हा दुल्हन की नहीं खींची होंगी पूरे ब्याह में। बीबी, जितनी तूने सेल्फियां ले ली टीडी टी करके।
1: पिंके, शन्नो जी को बहुत शौक है सेल्फी लेने का, सेल्फी लेना भी एक कला है।
3: हाँ जी भाजी, इसी कला के चक्कर में शन्नो जी ने एक टैक्सी, वही जिसे आजकल कैब शैब कहते हैं, उसके ड्राइवर को कान चक्कर बना दिया था टीडी टी करके।
1: अच्छा, कैसे पिंके? पूरी कहानी बताओ ना जरा।
2: क्यों, मैं आपकी नानी हूँ टीडी टी करके। पूरी कहानी सुनाओ ना जरा।
1: ओहो पिंके, बताओ भी।
3: पाजी, हम जैसे ही शादी वाले होटल से बाहर निकले, वो कैब का ड्राइवर अपनी गड्डी में आराम से बैठा हुआ था टीडी टी करके। इतने में शन्नो जी ने उससे कहा, भाई साहब कितनी सोहनी सजावट है इस होटल के गेट की, इस गेट के बाहर जरा हमारी एक फोटो तो खींच दो टीडी टी करके।
2: भाई ड्राइवर ऐसे हमारी फोटो खींचने आया जैसे सुभाष कई फिल्म की शूटिंग करने आया हो टीडी टी करके।
1: अच्छा।
3: हां जी भाजी, वो कैबी ड्राइवर एक फोटो खींच के मोबाइल फोन शन्नो जी को वापस करने लगा। शन्नो जी ने फिर कहा, भाई साहब एक फोटो ना यहां से खींचो जरा। उसने वहां से भी फोटो खींच ली। बस फिर क्या, एक एक करके 50-60 फोटो खिंचवा ली शन्नो जी ने टीरी टी करके। वो कैबी ड्राइवर तो रोने ही लगा, अरे मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मेरे से। अच्छा एक फोटो मैं अपने तरीके से खींचूं। आप लोग जरा इधर आओ, थोड़ा सा इधर। हाँ पाजी, हम उधर चले गए।
1: अच्छा फिर क्या हुआ?
3: पाजी जैसे ही वो कैबी ड्राइवर फोटो खींचने लगा, शन्नो जी ने उससे कहा, ए भाई साहब थोड़ा आगे आके फोटो खींचो। जैसे ही वो कैबी ड्राइवर आगे आया, अचानक
1: क्या हुआ पिंके?
3: कैबी ड्राइवर गटर में।
1: ओहो बेचारा।
3: पाजी एक तो वो कैबी ड्राइवर गटर में लटका हुआ था, ऊपर से शन्नो जी उससे कहने लगी, हाँ इस गटर से खींचो फोटो हमारी, बहुत बढ़िया आएगी टीडी टी करके।

0: ओहो पिंके, तुम लोगों ने उस कैब ड्राइवर को बाहर नहीं निकाला?
1: पाजी निकाला ना, 25-30 फोटो खिंचवाने के बाद। पाजी जैसे ही वो गटर से बाहर आया, सीधा भागा अपनी कैब की तरफ। आए मेरी तौबा, आज के बाद किसी सवारी की फोटो नहीं खींचूंगा, पावे लाख रुपया दवे टीडी टी करके।
0: पिंके तुम लोग भी ना, बस
1: बस नहीं, बंदे हैं हम।
0: वैसे पिंके, आजकल कई लोग सेल्फी लेने में बड़ा खतरा मोल ले लेते हैं, तो कई लोग दूसरों के लिए खतरा बन जाते हैं।
1: बिल्कुल भाजी, आधी दुनिया पागल की हुई है इस सेल्फी ने टीडी टी करके। कोई चलती ट्रेन के गेट के बाहर लटक के फोटो खिंचवाता है, तो कोई किसी पहाड़ी की चुंज पे जाके ना वहां सेल्फी लेता है। पाजी वो मूर्ख प्राणी ये नहीं जानते कि अगर आप सेल्फ सलामत रहोगे तभी सेल्फियां ले पाओगे टीडी टी करके।
0: पिंके बहुत अजीब अजीब हरकतें करते हैं सेल्फी लेते हुए कुछ लोग।
1: हाँ जी भाजी, रब ने चंगी भली शकल दी है, हैं? सेल्फी लेते हुए ऐसे ऐसे मुंह बनाएंगे जैसे दशहरी आम रेडी में पड़े पड़े ही सूख गया हो टीडी टी करके। और कुछ ऐसे हंसेंगे जैसे बच्चों को डरा के सुलाना हो।
0: बिल्कुल ठीक पिंके, कल परसों की ही बात है, मैं अखबार पढ़ रहा था, एक लड़के ने लाल झंडी दिखाकर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन रुकवाई, सेल्फी ली और भाग गया।

0: कर लो बात। भाजी हमारे जमाने में तो ट्रेन को किसी हादसे से बचाने के लिए एक लड़का अपनी लाल कमीज डांग पर बांध कर ट्रेन को हादसे से बचा लेता था। आजकल ये सिरफिरे सेल्फियां लेने के लिए ट्रेन रुकवा लेते हैं। भाई क्या सेल्फी जमाना आ गया है टीडी टी करके।
1: बिल्कुल पिंके, उस लड़के की वजह से कितने लोग परेशान हुए, ट्रेन कितना लेट हुई।
0: और पाजी जब पुलिस पाजी ने उस सेल्फी को पकड़ा बस फिर क्या, हम लेते हैं तेरे साथ सेल्फी, ये ले सेल्फा।
1: पिंके मुझे समझ नहीं आती कि लोग ऐसा काम करते ही क्यों हैं जो दूसरों के लिए परेशानी का कारण बने।
0: हाँ जी पाजी, जो करेंगे सो भरेंगे, आप क्यों पे उदास हैं? अब ना आप मेरी परेशानी का कारण ना बनो, एक बढ़िया सा गाना सुना दो, नहीं तो श्रोता फिर कहेंगे बातें ही करते रहते हैं, गाना तो सुनाते नहीं टी टी करके।

0: मेछी भाजी अब मैं जाऊँ, चन्नो जी के बगैर मेरा दिल उदास हो गया है, टी टी टी करके।
1: हाँ हाँ पिंके जरूर।
0: अच्छा भाजी ओके बाय।
1: बाय पिंके। श्रोताओ आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें अपनी राय जरूर दें। अब आज का पॉप टाइम प्रोग्राम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम पॉप टाइम, ये विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। श्रोताओ 11 बजे हैं, लीजिए अब सुनिए प्रोग्राम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।

कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं को सुनीता भगत की ओर से नमस्कार। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और सुनवाते हैं आपको आप ही की पसंद पर ये पहला गीत।

हमारी श्रोताओं ने कार्यक्रम का ये पहला गीत सुना, दिलीप मंदिर फिल्म के लिए आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की थी, संगीत था शंकर जयकिशन का। और इस गीत को सुनना चाहते थे चंडीगढ़ सेक्टर 23 के हमारे श्रोता, आप हैं विक्की, रेनू, बुलबुल और अक्षी। अब आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता हैं

आप हैं जी सेक्टर 18 जगाधरी जिला यमुनानगर हरियाणा के हमारे ये श्रोता हैं। आप सबने सुनना चाहा है दो चोर फिल्म से गीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, और नाम है आपके विनय मोहन खार, मीनाक्षी, पलोमा और डॉक्टर ईशानी।

कफू चक्कर फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। गीत की बोल गुलशन बावरा ने लिखे हैं। श्रोताओं, ये धुन है कल्याण जी आनंद जी की और ये पसंद है आप सबकी। आप हैं चाईबासा झारखंड के हमारे श्रोता। नाम है जी आपके शिवा, शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, आप हैं संगीता गोप, लिपि गोप और दीपाली गोप। इसी गीत को आप सबने भी पसंद किया है। परवेज अहमद शुक्लपुरा वाराणसी से सुनते हैं आप सबकी पसंद।

गांव फरांसी जिला हिसार के हमारे श्रोता हैं राजकुमार डूडी और प्रमोद कुमार डूडी। आपने सुनना चाहा है दुल्हन फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, और इसी गीत की फरमाइश हमारे कुछ अन्य श्रोताओं ने भी की है। आप हैं जी हमारे श्रोता, गांधीनगर गुजरात से जीके परमार, ज्योत्सना परमार और दीपल। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद।

विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से हमारे श्रोता इस समय सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं इम्तिहान फिल्म के लिए, कुमार सानू और अलका याग्निक ने इसे गाया है। पसंद करते हैं हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। आप हैं हमारे श्रोता भाटापारा छत्तीसगढ़ से और इसी गीत को आपने भी पसंद किया है। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर के हमारे श्रोता हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। लीजिए पेश है आप सबकी पसंद।

कार्यक्रम में अब हम शामिल कर रहे हैं आप सबकी पसंद, आप हैं गोविंदपुरा सीकर राजस्थान के हमारे श्रोता दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। और इसी गीत को पसंद करते हैं आप भी, आप हैं जी हमारे श्रोता मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ और आपके परिवार के अन्य सदस्य। आप सबने सुनना चाहा है डॉन फिल्म का गीत अनजान का लिखा हुआ, आवाज़ें आशा भोसले और किशोर कुमार की हैं।

जिला रतलाम मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं जगदीश धाकड़, नाइमा रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। आप हैं जी हमारे श्रोता मोहाली एरो सिटी ब्लॉक से सर्वेश कुमार कनौजिया। आप सबने सुनना चाहा है शोर फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की हैं। इसी गीत की पसंद आपने भी हमें भेजी है। सेक्टर 9 पंचकुला के हमारे श्रोता हैं आप, रमेश गुलाटी, स्नेह गुलाटी, हिमांशु गुलाटी, देवांशु गुलाटी। चलिए मिलकर सुनते हैं आप सबकी पसंद पर शोर फिल्म से ये गीत।

धर्मात्मा फिल्म का गीत सुनते हैं मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में। इस गीत को सुनना चाहते हैं कृष्णा पार्क दिल्ली के हमारे श्रोता हैं सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी के आप हमारे श्रोता हैं पिंटू दीवाना और राजेंद्र सिंह ओब्राय। इसी गीत को आपने भी सुनना चाहा है, आप हैं जी हमारे श्रोता जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। तो श्रोताओं को बता दें ये गीत मुकेश के साथ कंचन ने गाया है।

श्रोताओं, असली नकली फिल्म का गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में दुर्गा कॉलोनी हांसी के हमारे इन श्रोताओं की पसंद पर। ये हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू। आपने भी पसंद किया है ये गीत। आप हैं जी दुधला मंडी अंबाला कैंट के हमारे श्रोता, ललिता पाल, हुकम चंद, ईशांत पाल, निशांत पाल। कुछ और श्रोताओं ने भी इस गीत की फरमाइश की है। परमवीर हाउस आदर्श नगर भटिंडा के आप हमारे श्रोता हैं, अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर और कुछ और हमारे श्रोता हैं। असली नकली फिल्म का यही गीत उन्होंने भी पसंद किया है। आप हैं मारहरा दरवाज़ा एटा के हमारे श्रोता, नबी हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, रशीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी और आपके परिवार के अन्य सदस्य। सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये प्यारा सा गाना।

आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनते हैं आपकी कसम फिल्म के लिए आवाज किशोर कुमार की। सुनना चाहा है आप सबने अंबेडकर कॉलोनी ढकोली जिला मोहाली के हमारे श्रोता हैं सुरेंद्र कुमार, माधुरी सिंह, राध्या सिंह, अनंत और कायरा। इसी गीत को आपने भी पसंद किया है। आप हैं जी हमारे श्रोता चंडीगढ़ सेक्टर 52 से बिंदिया, नगमा, सुरेश और रवि।

अपनी श्रोताओं की पसंद पर अब हम सुनवा रहे हैं अभिमान फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने इसे गाया है। सुनना चाहते हैं गांधीनगर गुजरात के हमारे श्रोता जी के परमार, ज्योत्सना परमार, दीपल परमार और आपके परिवार के अन्य सदस्य।

मजनू का टीला, ये है जी जगह का नाम। और यहीं से हमारी श्रोता हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। आप हैं जी मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा, श्रीगंगानगर राजस्थान से। आप सबने सुनना चाहा है दिल ने फिर याद किया फिल्म का गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की।

अंतिम गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। पसंद है हमारे इन सब श्रोताओं की, काला अंब नाहन के हमारे श्रोता हैं हिमाचल प्रदेश की रजाक मोहम्मद शमीम बेगम।

इमरान खान और इरफान खान इसी गीत को सुनना चाहते हैं। भोपालगढ़ राजस्थान की हमारे श्रोता धर्मेंद्र छीम्पा, कपिल छीम्पा, ईशान छीम्पा और पूजा परिहार, और यही गीत आपने भी पसंद किया है। आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने फरमाइश लिख भेजी है। गुलाम साबिर राही, ताज मोहम्मद अंसारी और महराज जहां, लैला फिल्म का ये गीत है, मनमोहन सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ों में।

0: तो श्रोताओं, लैला फिल्म के इस गीत के साथ ही म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस कार्यक्रम यहीं पर समाप्त हो रहा है। सुनीता भगत को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
1: म्यूजिक हैशटैग इंस्टाफेस। इंस्टाग्राम पर आपकी फरमाइशों का सिलसिला।
0: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
0: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। जालंधर स्थित प्रवर्तन निदेशालय ने इंडियन कोऑपरेटिव हाउसिंग मिडिल सोसाइटी के सचिव अजय सहगल को फर्जी सहमति पत्र जमा करके धोखाधड़ी से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपये तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रही हैं श्रोताओ, FM 107.2 MHz पर 12:05 हुए हैं। अब हमारा प्रसारण हम आपके लिए अपने मुंबई केंद्र से रिले करेंगे, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आज इस कार्यक्रम में हमने आपके लिए गीतकार कैफी आजमी के कुछ गीत चुने हैं।

यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था हंसते जख्म। गीतकार कैफी आजमी थे और संगीतकार थे मदन मोहन।

संगीतकार लता मंगेशकर का फिल्म का नाम है आखिरी खत। कैफी आजमी के बोलों को संगीत से सजाया है खय्याम साहब ने।

कार्यक्रम के अगले गीत हमने मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म नौनिहाल से लिया है। गीतकार कैफी आजमी के बोलों को संगीत में ढाला है मदन मोहन ने।

0: यह आवाज थी मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम था नौनिहाल।
1: अरे सुनो।
2: हाँ?
1: सावधान रहना।
2: क्यों, क्या हुआ? कोई चोर डाकू आ गए हैं क्या?
1: नहीं बाबा, देखो अगर मोबाइल पर किसी जाने अनजाने नंबर से कोई लिंक आता है तो उसे खोलना नहीं है।
2: अच्छा,
1: विदेश के किसी अनजाने नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है तो भी सावधान। और हाँ, किसी भी वेबसाइट से शॉपिंग करने से पहले चेक कर लेना कि वो सेफ है या नहीं, वरना हम धोखाधड़ी का शिकार बन सकते हैं।
2: बाप रे बाप, इतनी सारी जानकारियाँ, आजकल कोई क्लास लगाई है क्या तुमने?
1: क्लास लगाने की क्या जरूरत है?
2: तो?
1: अरे मैं तो हर रोज दिन में 3 बजे विविध भारती पर सखी सहेली सुनती हूँ।
2: अच्छा,
1: उसी में आती है ये सारी जानकारियाँ।
2: अरे वाह, फिर तो मुझे भी सुनना है सखी सहेली।
1: क्यों नहीं, सखिया ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दिन में 3 बजे
3: सखी सहेली।
0: यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतकार कैफी आजमी की गीत रचनाएं। आइए सुनते हैं हेमंत कुमार की आवाज में फिल्म कोहरा का ये गीत।

हेमंत कुमार को अभी आपने सुना फिल्म कोहरा में। कार्यक्रम का अगला गीत कमल मित्रा के संगीत निर्देशन में आशा भोंसले और हेमंत कुमार का गाया हुआ है। फिल्म का नाम यहूदी की बेटी।

कार्यक्रम में आप सुनिए खय्याम साहब का संगीत, कैफी हसमी की बोल, सुलक्षणा पंडित की आवाज और फिल्म का नाम संकल्प।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म क्षमा से, आवाज सुमन कल्याणपुर की। गीत को कैफे आजमी ने लिखा है और धुन बनाई है गुलाम मोहम्मद ने।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सुनते हैं कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की, फिल्म का नाम है अर्थ।

फिल्म अर्थ की गजल अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में। हेमंत कुमार का संगीत, कैफी आजमी की बोल, लता मंगेशकर की आवाज और फिल्म का नाम अनुपमा।

लीजिए कार्यक्रम में आप सुनिए खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें। ये फिल्म है शोला और शबनम।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी को आपने सुना। फिल्म का नाम था शोला और शबनम। लीजिए अब सुनिए मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज मोहम्मद रफी की, और ये फिल्म है हकीकत।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले कर रहे थे।
1: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
0: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रही। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
1: ये आकाशवाणी है।
0: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
1: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
0: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
1: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
0: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
1: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
0: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
1: ये आकाशवाणी है, आकाशवाणी है।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए अब सुनिए अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, पहले 1:05 पर हिंदी में, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में। प्रादेशिक समाचार शाम को भी प्रसारित किए जाएंगे, शाम 6:10 पर हिंदी में और 6:20 पर पंजाबी में। कुछ फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे 1:15 पर और शाम 5:05 पर। 1:30 पर सुनिए कार्यक्रम।

सुरीला सफर कार्यक्रम त्रिवेणी पेश किया जाएगा दिन में 2 बजे। कार्यक्रम सदाबहार नगमे आप सुन सकते हैं 2:30 पर। आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत होगा 3 बजे। नाट्य तरंग कार्यक्रम में बाद दोपहर 3:30 पर नाटक सुनिए विजय माल। शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज सुनिए कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज। इस कार्यक्रम में अभिनेता लेखक और निर्देशक देवेंद्र अहिरवार से बातचीत सुनवाई जाएगी। प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे पेश किया जाएगा शाम 5:20 पर। शाम 5:30 पर सुनिए कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। आज इस कार्यक्रम में एजुकेशनिस्ट हरजिंदर कौर से भेंट वार्ता सुनवाई जाएगी। कुछ पंजाबी गीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 6:30 पर, रात 7:47 पर और फिर सुरसांझ कार्यक्रम में रात 10:32 पर। शाम 6:45 पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए ऑर्गन इंडिया। अभिनेत्री नरगिस द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला सुनिए शाम 7 बजे। हवा महल कार्यक्रम में रात 8 बजे सुनो कहानी के अंतर्गत गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी पत्नी का पत्र का 4th भाग प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम चित्रलोक होगा रात 8:15। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए।

रात 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित रहेगा।

और रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत। आप सुन रहे थे अब से लेकर रात 11 बजे तक प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

0: 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने विभिन्न विभागों में नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सभी युवा कठिन परिश्रम के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। श्री मोदी ने कहा,
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं।

0: से आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: ये रोजगार मेला हरियाणा में अंबाला, फरीदाबाद सहित देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। देश के सभी हिस्सों से चयनित ये युवा रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यभार संभालेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार राज्य को इलेक्ट्रिक वाहन और ऑटोमोबाइल विनिर्माण के क्षेत्र में देश का अग्रणी केंद्र बनाएगी। इस उद्देश्य से कल मुख्यमंत्री ने नई दिल्ली में उद्योग प्रतिनिधियों, निवेशकों और संबंधित अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में हरियाणा के औद्योगिक विकास, निवेश संभावनाओं तथा एकीकृत ईवी एवं ऑटोमोटिव विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की रणनीति पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया। इस दौरान वैश्विक ईवी निर्माता कंपनी विनफास्ट से संबंधित केस प्रस्तुतीकरण भी किया गया, जिसमें हरियाणा में संभावित निवेश एवं विनिर्माण अवसरों को रेखांकित किया गया। बैठक में हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विनफास्ट कंपनी की कार को चलाकर भी देखा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि उद्योग जगत और सरकार के बीच मजबूत समन्वय से हरियाणा आने वाले समय में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ऑटोमोटिव विनिर्माण क्षेत्र में वैश्विक पहचान स्थापित करेगा। हरियाणा की सिंचाई एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने कल पंचकुला स्थित आंगनवाड़ी केंद्रों, क्रेच, बाल देखभाल संस्थानों एवं शिशु निकेतन केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान श्रुति चौधरी ने बच्चों से सीधे संवाद कर उन्हें उपलब्धि करवाई जा रही सुविधाओं, खानपान और देखभाल संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कई स्तरों पर लापरवाही सामने आने पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने पाया कि मुख्यालय स्तर की वरिष्ठ महिला अधिकारी भी नियमित निरीक्षण के लिए केंद्रों में नहीं पहुंच रही हैं। इस दौरान श्रुति चौधरी ने लापरवाही बरतने के मामले में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक से स्पष्टीकरण लेने के आदेश जारी किए। चंडीगढ़ प्रशासन के स्कूल शिक्षा निदेशक नीतीश सिंगला ने सभी निजी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा भीषण गर्मी के दौरान भी स्कूल खुले रखने का सख्त नोटिस लिया है। श्री सिंगला ने कहा कि ऐसे सभी स्कूल आज से ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण बंद रहेंगे। आवश्यकतानुसार स्कूल 9वीं और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों की केवल ऑनलाइन कक्षाएं जारी रख सकते हैं। 8वीं तक के बच्चों की किसी भी माध्यम से कक्षाएं नहीं होंगी, उन्हें पूरी तरह छुट्टी रहेगी। उल्लेखनीय है कि आज से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के सभी सरकारी स्कूल भी ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए बंद रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने हरियाणा के विभिन्न जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर आमजन को लू से बचाने के लिए एडवाइजरी जारी की है। जींद नागरिक अस्पताल के वरिष्ठ महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू सिंगला ने आकाशवाणी संवाददाता से बातचीत में बताया कि अस्पताल में एडवाइजरी के अनुसार सभी प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को गर्मी में बाहर न निकलने की सलाह दी।
2: आजकल गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो हम प्रेग्नेंट लेडीज को मेरी यही सलाह है कि वो बहुत ज्यादा जरूरत हो इन केस ऑफ डायर इमरजेंसी ही हॉस्पिटल में आए, बाहर निकले, क्योंकि गर्मी लो लगने से पेशेंट को उल्टी दस्त लगने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं और जिसकी वजह से उसके अंदर पानी की कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी हो जाता है।
1: इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: है, एक तरह से ये नेशन बिल्डिंग के लिए प्लेज भी है फॉर द शेयर्ड ड्रीम ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया।
1: इस मगरों श्री पुरी ने 93 नवे भर्ती हुए लाभपात्रियों नूं नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके लाभपात्रियों ने दस्या,
2: मेरा नाम अजय कुमार है, मैं राजस्थान के जिला बीकानेर का रहने वाला हूं और मेरा चयन SBI जूनियर एसोसिएट के पद पर हुआ है। केंद्र सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं।
3: मैं आकाश वर्मा जोधपुर राजस्थान से हूं, मुझे रेलवे में ऑफिस एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्ति मिली है।
4: मेरा नाम ज्योति है, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान की रहने वाली हूं। मैं

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: तीखा कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल जो कि आ जाता है फर्स्ट क्वालिटी सरसों से तैयार और जिससे हो जाएगा आपको प्यार, अभी ऑर्डर करें www.pikarrenterprises.com पर।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म के गीत से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं जानी दुश्मन फिल्म में लता मंगेशकर को। गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हम विविध भारती के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुने कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
2: लिस्ट उसमें आप शामिल हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीतकार चित्रगुप्त मखमली धुनों और सादगी के मसीहा थे। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग में जहां एक तरफ शंकर जयकिशन, नौशाद साहब, एसडी बर्मन जैसे दिग्गजों का दबदबा था, वहीं एक ऐसा संगीतकार भी था जिसने बिना किसी तामझाम के बेहद सादगी और गहराई से भरपूर संगीत दिया। उनका नाम था चित्रगुप्त। चित्रगुप्त श्रीवास्तव हिंदी सिनेमा के उन अनमोल रत्नों में से एक हैं जिनके गीतों की मिठास आज भी कानों में मिश्री घोल देती है। बिल्कुल सही कहा, और वही मिश्री घोलने वाले गीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। अगला गीत राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है। इस बार आवाजें हैं गीता दत्त और उषा मंगेशकर की, और ये फिल्म है माँ बाप।

तो भैया इस भरी गर्मी में थोड़ी सी भी यदि ठंडाई की बात करूं तो वो है विविध भारती, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में अच्छा मैं आई हूं तो गानों की बौछार होगी। गानों की बौछार तो हमेशा ही होती है और मन आनंदित होगा। सचमुच कल की गीतों भरी कहानी सुनी जिसमें एक ऐसा प्रसंग आया जहां मुझे रोना ही आ गया था। धन्य विविध भारती जो ऐसे प्रसंग लाती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पहला गाना एकदम अनसुना सा था, यहां तक कि सिनेमा का भी नाम नहीं सुना था। तूफान में प्यार कहां, सिर्फ विविध भारती के पास ही ऐसा कलेक्शन हो सकता है। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका कार्यक्रम सबसे अलग होता है, ये महारत आपको हासिल है। अच्छा मुझे बहुत शानदार सुंदर, क्योंकि सुने कौन सा संगीत, गीतों से हम भीषण गर्मी में ठंडक महसूस कर रहे हैं, मस्ती और आनंद आ रहा है। बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देते हैं आपको मुझे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती परिवार और सभी मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया। आज परीक्षा में पेपर अनुमान से ज्यादा आसान आ जाता है तो खुशी के मारे जो याद किया था वो भी भूल जाते हैं। दूसरे आसान पेपर की मार्किंग भी हार्ड होती है। श्रोताओं में बहुत से शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, वे सब मेरी बात का समर्थन करेंगे। अब नंबर देना आपके हाथ में है, देखें आप कितना लिबरल रहती हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने आज सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक सुरीला सफर की पोस्ट का इंतजार किया, फिर मैं अपनी नौकरी के लिए निकल गया। 10:30 बजे नौकरी पर पहुंचकर कुछ घंटे काम किया, उसके बाद 12 बजे मैंने सुरीला सफर की देखी, फिर श्रोता मित्रों की पोस्ट देखी, तब मालूम पड़ा आज सुरीला सफर महान और अमर संगीतकार चित्रगुप्त जी पर केंद्रित है, साथ में 2 गायिकाओं पर भी। दुकान पर पहुंचकर गीतों को शब्दों को पढ़ा, मेरे लिए समझना थोड़ा कठिन हो जाता है। वहीं एक श्रोता ने हमारे इस सवाल का जवाब देते हुए बहुत सारे गीत लिखे हैं, गोरे गोरे और बांके छोरे, लता मंगेशकर और समाधि फिल्म का आपने ये गाना लिखा है, बिल्कुल सही कहा आपने, और साथ में प्रेमलता है इनके, जिसका जिक्र आपने नहीं किया है। वहीं एक श्रोता ने दूसरे गाने लिखे हैं, लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाज में जो जुगलबंदी वाला गीत है, लिखते हैं ये गाना मेरा फेवरेट है, फिल्म उत्सव का, मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, क्या बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा और मेरे महबूब में क्या नहीं अपलम चपलम, ये सभी गीत मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। बहुत सही आपने गीतों का चयन किया है। जी हाँ, तो हमारे श्रोता बताएं कि कौन से ऐसे गीत हैं जुगलबंदी वाले, महिला जुगलबंदी वाले जो उनको पसंद हैं, उनका जिक्र वो करें, साथ ही उन संगीतकारों के बारे में बताएं जिन्होंने अपने संगीत निर्देशन में ये महिला जुगलबंदी वाले गीत लिए हैं और संगीतबद्ध किए हैं। जैसे आज हमने चित्रगुप्त साहब को इस कार्यक्रम में शामिल किया है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हमारे श्रोताओं ने अपनी अपनी पसंद हम तक पहुंचाई है। एक श्रोता लिखते हैं कि हंसता हुआ नूरानी चेहरा लता जी और कमल बारोट की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में है। वहीं मन क्यों बहका लता जी और आशा जी की आवाज में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में। और काश किसी दीवाने से हमको भी मोहब्बत हो जाए, अच्छा काश किसी दीवाने को है हमसे भी मोहब्बत हो जाए। आपने से और को का थोड़ा सा अंतर कर दिया है। और ये गीत भी आपको पसंद है, लता मंगेशकर और आशा भोंसले का गाया हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ है। वहीं आप लिखते हैं तुमको पिया दिल दिया और कजरा मोहब्बत वाला और तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। ये सभी गीत आपको बेहद पसंद है, बहुत सुंदर गीतों का चयन आपने किया है। एक श्रोता लिखते हैं कि दिन रात जले अखियां परदेसी, उषा मंगेशकर और आशा भोंसले, ये गीत हमें बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय बहुत निराला है और बहुत बढ़िया है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो आपने कमाल की गुगली फेंकी है। अच्छा आपने, हम तो क्लीन बोल्ड हो गए, आज हमारी बत्ती गोल डब्बा गोल है। आप तो बस मधुर गीतों का रसा स्वादन कराइए और हम मधुर गीतों का आनंद लेने वाले हैं, क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि हमें सफर में तो सफर सुरीला कैसे नहीं होगा अगर आप हैं हमारे साथ, तो आज आप आई प्रोग्राम में तो गीतों की बाहर आ गई है। आप लिखते हैं कि ओ गोरे बांके छोरे गीत पसंद है, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, कजरा मोहब्बत वाला, ये सभी गीत हमें बेहद पसंद है जो दो गायिकाओं द्वारा गाए गए हैं। साथ ही आपने लिखा है एक श्रोता ने कि मनभावन के घर गाए जाए गोरी, घूंघट में शर्माए गोरी, लता जी और आशा जी की आवाज में, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आपकी गीतों की चॉइस कितनी बड़ी है, मन बहुत खुश हुआ। अच्छा शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि आज का सुरीला सफर बहुत ही बढ़िया है, दो फीमेल गायिकाओं के गीत कितने बढ़िया और कितने ताल सुर में, परदेसी का गाना सुन के बहुत ही बढ़िया लगा, चित्रगुप्त जी का संगीत बोले तो बहुत मधुर संगीत, क्या कहने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपकी थीम कुछ समझ नहीं आ रही, कुछ भी हो हम आपको विविध भारती जरूर सुनेंगे, इस तपतपाती गर्मी में गानों के जरिए ठंड का एहसास हमें थोड़ा तो होगा। आप इतनी शिद्दत और प्यार के साथ हमारे कार्यक्रम को सुनते हैं, सराहते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अभी जो गीत हम सुन रहे थे फिल्म गेस्ट हाउस का सबसे शानदार गाना शीला वाज और अन्य अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। कितनी खूबसूरत और गहरी जानकारी आपने हमें दी है, इसके लिए शुक्रिया। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आप चाहे मना करें, मैं आपकी तारीफ करूंगा और धन्यवाद भी करूंगा कि आज यादों की महफिल में मेरे तीन पसंदीदा गाने एक साथ सुनवाए गए। कुछ दिल ने कहा जीत ही लेंगे बाजी हम तुम और मैं ये सोचकर जा रहा था। बिल्कुल, ये गाने तो बहुत ही खूबसूरत थे और कैफी आजमी की रचनाएं थी, तो पसंद तो होंगी आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पसंदगी के महिला युगल गीत में एक इन्होंने कुछ गानों का जिक्र किया है, सखी रे सुन मोरी पपीहा उस पार। अच्छा, फिल्म मिस मैरी का ये गाना आपको बहुत पसंद है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिस देश में गंगा बहती है का क्या बात तू मुझे क्या बताइए गाना पसंद है। गर्जत बरसत सावन आयो रे और बरसात की रात फिल्म का जो एक जमाने में उसका अंश संगीत रचना के परिचय धुन में शामिल था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मैडम काफी खुश हैं और काफी हंसमुख लग रही हैं। अच्छा और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक परिवर्तन से ही कार्यक्रम में श्रोता फ्रेंडली हो गए हैं, आगे गीतों के लिए दिलचस्पी और उत्सुकता बढ़ गई है और आज का ये कार्यक्रम चित्रगुप्त साहब और दो गायिकाओं तक ही सीमित है, इससे हम बड़े खुश हो गए हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपलम चपलम और मन भावन के घर जाए गोरी ये गाने बहुत पसंद है हमें। वहीं एक श्रोता ने मन क्यों बहका रे सखी ये गाना पसंद किया है, चुपके कौन आया मेरे अंगना काश किसी दीवाने को और आएगा हमारे गाँव कोई आएगा, इन सभी गीतों को पसंद किया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि सबसे ज्यादा पसंद है मन क्यों बहका रे बहका और हुजूर आला जो इजाजत हो, ये युगल महिला गीत वाले जो स्वर गीत हैं ये हमें बेहद पसंद आते हैं। जी, तो आज के सुरीला सफर में हमने आपके सफर को थोड़ा सा आसान कर दिया और आप लगभग हमारे साथ दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत, ये है आशा भोंसले और उषा मंगेशकर की आवाजें, अनजान के बोल हैं, चित्रगुप्त साहब का संगीत है और ये फिल्म है ज्वाला दहेज की।

उदा मल्होत्रा का, संगीतकार रोशन साहब और रेशमी सलवार कुर्ता जाली का ये गीत इन्हें बेहद पसंद आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ये गीत तो पहली बार सुना है, वैसे मुझे डोला रे डोला फिल्म देवदास का गीत बहुत पसंद है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वाह वाह मेरा एक गीत मैच कर गया है, निकला है गोरा गोरा चांद रे। वहीं एक श्रोता ने कहा है कि कचरा मोहब्बत वाला आंखियों में ऐसा डाला शमशाद बेगम और आशा भोंसले की गायकी बहुत पसंद है। युगल गायिकाओं में कुछ लोगों ने अपलम चपलम हंसतावा नूरानी चेहरा तेरी महफिल में किस्मत आजमाकर मन क्यों बहकाई सभी गीतों को पसंद है किया है। और वहीं एक श्रोता ने कहा आपने पूछा कि कौन से युगल गीत पसंद है, फिल्म शिकारी का युगल गीत तुमको पिया दिल दिया, फिल्म पारसमणि का गीत हंसतावा नूरानी चेहरा, उत्सव का गीत मन क्यों बहकारी बहका हमें बेहद पसंद आता है। चलिए तो आपकी पसंद को हम धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपकी पसंद इतनी लाजवाब है। और अब कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां सुनते हैं लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर को फिल्म हम मतवाले नौजवान में। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, चित्रगुप्त का संगीत।

जी तो हमारे श्रोता कह रहे हैं कि मेरे पास करीब 20,000 गानों का संग्रह है और लगातार पुराने गीतों को ढूंढकर संग्रह को मैं और बढ़ा रहा हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि ताथैया करके आना मेरे जादूगर, ओ सैया, गीता दत्त, लता मंगेशकर, इकबाल कुरैशी, फिल्म पंचायत का गीत और कौन रंग मुंगवा, लता मंगेशकर और

तो दोस्तों आज का सुरीला सफर यहीं तक, और अब इस सफर से मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। आज लाखों करोड़ों की भीड़ में भी कई बार इंसान अपने को अकेला पाता है। आधुनिकता के इस दौर में छोटे होते जा रहे परिवार के कारण अकेलेपन की समस्या आम बात हो गई है। ऐसे में अगर हम अपने लक्ष्य पर, अपनी प्रगति पर ध्यान देंगे तो हमारा अकेलापन हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारी शक्ति बन जाएगा। देखिए ना, चांद रोज रात को आकाश में अकेला ही अपने सफर पर निकल पड़ता है, बिना थके, बिना हारे।

अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के अलावा अकेलापन दूर करने का एक सरल उपाय है। अपने जीवन में किसी को अपना हम ख्याल बना लें, हम सफर बना लें, ऐसा प्रयास करके तो देखें। जिंदगी एक नए रूप में, नए रंग में मुस्कुराती नजर आएगी।

लेकिन आज के जीवन की आपाधापी में कोई आपका साथ न दे, कोई आपकी पीठ न थपथपाए, आपकी सफलता पर तालियां न बजाए, तो फिक्र की क्या बात है। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका सच्चा हितैषी तो ऊपर वाला होता है। ऐसे में अपनी क्षमताओं पर विश्वास कीजिए, आप अकेले ही पूरी दृढ़ता के साथ प्रगति के पथ पर बढ़ सकते हैं और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के शब्दों में, जो दितोर डाक शून्य के उनाशे तबे एकला चलो रे।

दोस्तों, जब हम सकारात्मक सोच के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो अकेलापन हमारी शक्ति बन जाता है। आज त्रिवेणी का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त राजेश के साथ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निकम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार

0: रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
0: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
0: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है, इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
2: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आईगॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरला में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की

0: उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। सीबीएसई ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
0: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया।
0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेनियो कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने

0: कांगो में इबोला बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि इस संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थ या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंजीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये था पहला गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था जन्म जन्म के फेरे। गीतकार थे पंडित भरत व्यास और धुन बनाई थी SN त्रिपाठी ने।

0: साहिर लुधियानवी की लिखी यह कव्वाली अभी आपने सुनी। मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजें थी। एन दत्ता का संगीत था और फिल्म का नाम था साधना।
1: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
2: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
1: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
3: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
1: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना। विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
4: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
1: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
5: तुम आ गए
1: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
0: आशा भोसले, शमशाद बेगम और साथी फिल्म का नाम हम पंछी एक डाल के। गीतकार हैं पी एल संतोषी और संगीतकार एन दत्ता।

0: मना
1: ना कोई मारे कोई किसी को
0: ना कोई खाए मांस किसी का
1: ना कोई पीवे खून किसी का
0: ना कोई रोके सा

0: देखो भाई जाती तो हूँ जाने को, लेकिन राजा कहीं जो झपटा मुझको ही खा जाने को।
1: हम आएंगे तुमको वहाँ बचाने को।
2: हम आएंगे,
3: हम आएंगे, हम आएंगे, हम आएंगे।
4: लेकिन सब में था होशियार एक बूढ़ा सा सियार, बोला अपनी दुम फटका।

लीजिए कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज और ये फिल्म है मधुमति। शब्दकार शैलेंद्र और संगीतकार सलिल चौधरी।

आइए अब सुनते हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत, आवाज आशा भोसले की, शब्द हसरत जयपुरी के हैं और धुन ओपी नैयर की है।

0: की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण की रचना सुनिए। गायिकाएं हैं आशा भोसले और गीता दत्त, और ये फिल्म है अदालत।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का ये है आखिरी गीत। हेमंत कुमार का संगीत है, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के युगल स्वर हैं। फिल्म का नाम है चंपाकली।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मनचाहे गीत। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जी तो शुरू करते हैं आज का ये सफर आपके मनपसंद गीतों का। तो पहला गीत सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता हैं ये। कहां से लिखा है आपने? आपने लिखा है गांव जाखोद राजस्थान से, पूजा खटक, बिमला देवी, शंभुदयाल खटक ने। और इसी ये खत हमें मिला है कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से, योगेश गुजराती, रेखा गुजराती। और ये खत हमें मिला है बीकानेर से और राजस्थान से। अच्छा, आप राजस्थान के थे श्रोता जिनका नाम हमने पढ़ दिया है। आप है चेतक सर्कल उदयपुर से मुकेश जीनगर, रेणु जीनगर, अजय, प्रिंस और कुलदीप। आप सभी सुनना चाहते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज मोहम्मद रफी की, और फिल्म का नाम है जीने की राह।

अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म अनामिका से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार राहुल देव बर्मन। इस गीत को सुनने की आप सभी ख्वाहिशमंद हैं। आप हैं कोल्हापुर से सतीश वाघमारे, आतिश वाघमारे, स्वाति, वर्षा वाघमारे, श्रमण वाघमारे, श्रमेण वाघमारे। अच्छा, आपने चंदन नगर सातारा से ये खत लिखा है। और उल्लास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर, चेतन शामतकर ने खत लिखा है हमें। आप हैं पालदा नाका इंदौर से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी और अलीना मंसूरी। नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद। और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पंवार, डैनी पंवार और मास्टर मनीष। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर को फिल्म अनामिका में।

0: लता मंगेशकर को अभी आपने सुना फिल्म अनामिका में। अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। आप हैं पलसीकर कॉलोनी इंदौर से धनेश मटाई, राकेश मटाई, उमेश, जिम्मी, अमिता, हनी, दियाना, जियांश मटाई, करनाल हरियाणा से गुरविंदर सिंह पांधा, मनविंदर सिंह पांधा, और ये खत आया है हैदराबाद से कनुगुला गोपाल, महेश्वरी, प्रावलिका, विष्णुवर्धन और विघ्नेश का। हम आप सभी से ये अनुरोध भी करते हैं कि कृपया अपने नाम थोड़ा सा साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और हम आपके नामों का उच्चारण सही ढंग से कर पाएं। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म लैला मजनू का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी हैं और संगीतकार मदन मोहन हैं।
1: तेरे दर पे आया हूँ कुछ कर

कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है, अनजान की बोल, लता मंगेशकर की आवाज है और फिल्म का नाम है अपने रंग हजार। सुनने वाले हमारे श्रोता हैं पंचमुखी हनुमान मंदिर दुर्ग से, आप हैं छत्तीसगढ़ से अनंत जैन, हंसित जैन, प्रीति जैन, और छत्तीसगढ़ से ही हैं देवरी भटापारा से गन्नू लाल रजक, के आर एस, अश्विनी कुमार और गणेश राम। लीजिए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आप सबकी पसंद पर। आप हैं लिखने वाले गौतम नगर नांदेड़ से प्रभाकर जोधले, आरती जोधले और इनके परिवार वाले। ये खत हमें मिला है छत्तीसगढ़ से जिला धमतरी से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम सावित्री साहू। यानी ये खत है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से। हमें उम्मीद है आपने अपना नाम सुन लिया होगा। और ये खत मिला है गाजियाबाद से नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना आनंद, खुशी आनंद का। और वनुजा तांडा से सानिका राठौड़, एस आर टेलर, जय राठौड़, सुनील राठौड़, इंदुबाई राठौड़ और कुमार आशीष का। आप सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफी और आशा भोंसले को फिल्म परवाना में। गीत को कैफी आजमी ने लिखा है और संगीत मदन मोहन का है।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अमर प्रेम का गीत, आवाज किशोर कुमार की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और तर्ज बनाई है राहुल देव बर्मन ने। इस गीत को सुनने के लिए आपने हमें खत लिखे। आप हैं बोडोसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबली, प्रियांशु साहू। और ये खत आया है खमहरिया बिलासपुर से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रदीप कुमार का। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

किशोर कुमार की गाय फिल्म अमर प्रेम के इस गीत के साथ ही आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।

0: रवि शर्मा लिखित नाटक सुनिए विजयमाल।
1: सब यथा स्थान विराजें, कार्यवाही आरंभ की जाए।
2: जो आज्ञा महाराज। महाराणा की जय। राणा हाड़ा जी का विशेष दूत एक संदेश लेकर आया है और दरबार में उपस्थित होने की आज्ञा चाहता है।
1: आने दिया जाए।
3: महाराणा की जय।
4: राणा हाड़ा जी ने यह पत्र आपकी सेवा में प्रेषित किया है।
1: मंत्री जी,
2: अन्नदाता,
1: पत्र का भावार्थ व्यक्त कीजिए।
2: अन्नदाता, राणा हाड़ा जी अपनी अतीत सुंदरी कन्या का विवाह हमारे वीर सामंत चूड़ावत से करना चाहते हैं। उन्होंने इसके लिए आपकी अनुमति मांगी है।
1: यदि चूड़ावत जी को यह प्रस्ताव स्वीकार है तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है?
2: महाराज, यदि आज्ञा हो तो मैं इस विषय में कुछ निवेदन करूं।
1: आज्ञा है मंत्री जी, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
2: महाराज, सरदार चूड़ावत हमारे वीर सेनापति हैं। राणा हाड़ा ने उन्हें अपनी सुंदरी कन्या के लिए मांगकर बुद्धिमता का परिचय दिया है। पर मेरी सम्मति में तो वीर चूड़ावत की जीवन संगनी कोई वीर कन्या ही हो सकती है, हाड़ी कुमारी नहीं।
1: महामंत्री जी, ये क्या कह रही हैं आप? क्या हाड़ी कुमारी छत्राणी नहीं है? क्या उसकी रगों में पूर्वजों का रक्त प्रवाहित नहीं हो रहा?
2: महाराज,
1: हम आपकी शंका का कारण समझने में असमर्थ हैं।
2: महाराज, जहां तक मुझे ज्ञात है, हाड़ी कुमारी में वीरोचित गुणों का अभाव है। सामंत चूड़ावत का बचपन तो तलवारों की खनखनाहट में पला है और यौवन युद्ध क्षेत्र में पल्लवित हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस उगते हुए सूर्य को ग्रहण लग जाए। विद्वानों ने कहा भी है, भार्या रूपवती शत्रु, यूं भी नारी का रूप और यौवन पुरुष की सबसे बड़ी दुर्बलता है। जानबूझकर इस दुर्बलता को गले की माला बनाने की सलाह मैं नहीं दे सकता।
1: चूड़ावत जी।
5: महाराणा,
1: आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? क्योंकि वीर राजपूत केवल अपने ही विचारों

0: और अपने ही भुजबल के विश्वास पर आगे बढ़ता है। इसलिए निसंकोच आप अपने विचार व्यक्त कीजिए।
1: महाराणा, हाड़ी कुमारी के अद्भुत रूप और लावण्य की चर्चा सुनकर भी मैंने कभी भावुकता का आश्रय नहीं लिया, पर मैं इतना अवश्य कहूंगा कि रूपवती भार्या को चाहे शत्रु कहा जाए अथवा उसे पुरुष की दुर्बलता की संज्ञा दी जाए, पर इन सब के साथ साथ वो पुरुष के जीवन की एक महान प्रेरणादायक शक्ति भी है, वह शक्ति जिसके अभाव में शिव भी शव के समान हो जाता है। आज एक नारी के सौंदर्य ने मेरी वीरता और पुरुषत्व को चुनौती दी है। यदि महाराणा की आज्ञा हो तो स्वीकार कर लूं इस चुनौती को।
0: हम आपको यह चुनौती स्वीकार करने की अनुमति देते हैं। मलखान सिंह
2: जी महाराज,
0: राणा हाड़ा को यह शुभ संदेश दे दो कि हमें यह संबंध स्वीकार है। महामंत्री जी।
3: जी महाराणा।
0: सावन चूड़ावत के विवाह का आयोजन राजकीय सम्मान से अति शीघ्र किया जाए।
3: जो आज्ञा महाराज।

0: भैया भाभी बहुत ही सुंदर हैं।
1: सच
0: सच भैया, देखोगी तो पागल हो जाओगी।
1: तनिक अपनी भाभी को हमें भी तो दिखा दो।
0: इतने उतावले क्यों हो रहे हो, थोड़ी देर और ठहर जाओ ना। और हाँ, मेरे मुंह दिखलावनी।
1: ये लो।
0: कितनी अच्छी है ये माला।
1: अब बोल, कहाँ है तेरी भाभी?
2: अरे तारा, कहाँ चली गई?
0: सब भाभी को ही घेर कर बैठी हैं।
1: अच्छा,
0: कोई सुनता ही नहीं। तारा, तारा
2: आई।
0: देख तारा, जरा भैया को ऊपर वाले कमरे का रास्ता दिखा देना, बेचारे थक गए हैं।
2: आइए सामन, ऊपर जाकर विश्राम कीजिए, और प्रतीक्षा भी।
1: प्रतीक्षा? प्रतीक्षा किसकी?
2: चंद्रोदय की। आज आपके शयन कक्ष में पूर्ण चंद्र का आगमन जो होने वाला है।
1: ओ, अब समझा, तुम बहुत नटखट हो।
0: आओ भाभी, इधर आओ, यहाँ बैठो। हाँ, ऐसे
3: यहाँ। यहाँ क्या करना होगा मुझे?
0: ये हमारी कुल देवी हैं, सौभाग्य और यश की देवी।
3: अच्छा,
0: नववधु इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर ही पति के दर्शन कर सकती है। आज के दिन वधु जो कुछ इनसे मांगती है वो उसे अवश्य मिलता है।
3: अच्छा
0: भाभी, मांगो जो भी इच्छा हो।
3: मैं केवल यही मांगती हूँ कि मेरे पति पर कभी भी किसी भी प्रकार का कलंक न लगे, यश और सौभाग्य की वर्षा होती रहे उन पर।
0: धन्य हो भाभी, तुमने वही मांगा जो मांगना चाहिए था।
3: इसके सिवा और मैं मांग ही क्या सकती थी?
0: भाभी, तुम्हारे ये विचार तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। और हाँ भाभी, अब रात अधिक हो रही है, हम सब तो आज रत जगा करेंगी। तुम ऊपर जाओ, आज तुम्हारी मधु यामिनी है ना?
3: ना ना, मैं भी तुम लोगों के साथ रत जगा करूंगी।
0: रत जगा तो करोगी ही, पर ऊपर, यहाँ नहीं। भाभी शर्माओ नहीं, ऊपर जाओ। नहीं जाती? अच्छा ठहरो, मैं भैया को बुलाती हूँ, तुम्हें गोद में उठा कर ले जाएंगे। हाँ,
3: अरे अरे,
0: बुलाओ भैया।
3: मैं जाती हूँ।
0: तारा सुन
3: जी,
0: भैया ऊपर के कमरे में ही है ना?
3: जी हाँ, सामन तो वहाँ पहले से ही हाड़ी रानी की प्रतीक्षा में बैठे हैं।
0: बस अब खूब मजा आएगा।
3: कितना सुंदर कक्ष है ये, पलंग, गुलाब की पंखुड़ियाँ, फूलों के पर्दे, और ये तलवार अवश्य मेरे स्वामी की है, और वो चित्र

0: प्रियतम, कितना तेजस्वी मुख है आज। मेरी चिर संचित अभिलाषा पूर्ण हुई, अब मैं तुम्हारी हूँ और तुम मेरे। जब तुम सामने आओगे तब तो शायद लज्जा के मारे में कुछ बोल भी नहीं सकते। कौन?
1: स्वागत है।
0: ओह, आप यहाँ?
1: हाँ प्रिय, मैं यहाँ कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। पर ये घूंघट किस लिए? मैंने तो तुम्हारे रूप की एक झलक भर देखी है, हृदय नहीं भरा। अच्छा, तो मैं ही इस चंद्रमुख पर से इन घूंघट रूपी बादलों को हटाए देता हूँ। ऐसे
0: ना,
1: हाँ,
0: ना,
1: अब ठीक है। हाँ, देख रहा हूँ रूप का सागर, विधाता के हाथों खड़ी हुई सौंदर्य की प्रतिमा, पवित्रता और कोमलता की प्रत्यक्ष देवी मीनाक्षी, सुहाग बिंदिया और शशि मुख पर ये मोती की नथ, मानो साक्षात भगवती का ही पदार्पण हुआ है मेरे घर में। मेरा अपनापन, मेरा व्यक्तित्व जैसे तुम में विलीन होता जा रहा है। मैं नहीं हूं, मैं और तुम।
0: स्वामी, मेरे देवता,
1: सच
0: मैं तुम्हारी पुजारी।
2: सभी प्रजाजनों को सूचित किया जाता है,
1: तुम सच मुगल बादशाह सुंदर हो,
2: नगर की राजकुमारी
1: चंद्रमुखी,
2: और
1: जी चाहता है कि एक तक तुम्हें देखता ही रहूं।
2: नगर के राजा ने
0: स्वामी
2: हमारे महाराणा
0: से पागलपन
2: सहायता की
0: प्रार्थना की
1: है। महाराणा के तुम कुछ कहती जाओ और मैं सुनता रहूं। मेरी रानी, मैं तुम्हारे सौंदर्य सागर के यौवन रूपी भंवर में फंस गया
0: स्वामी।
1: कमल के कोमल संपुट में बंद भंवर की तरह हैरान हूँ, मुक्त हूँ।
0: सुना आपने?
1: इधर
0: स्वामी।
1: प्रिय,
0: छोड़िए, छोड़िए मेरा हाथ।
1: प्रिय, मुझसे क्या अपराध हो गया है जो तुम इतनी प्रसन्न हो और अचानक दूर खड़ी हो गई?
0: स्वामी, सुनिए नगाड़े की ध्वनि। राजपूत तो इसका मतलब अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए मैं पीछे हट गई।
1: ओह मेरी हाड़ी रानी, मेवाड़ भूमि वीरों से शून्य नहीं है, और फिर मेरे लिए तो राणा जी का विशेष दूत आएगा।
0: जानती हूँ, पर देश की आन पर मर मिटने वाले किसी की प्रतीक्षा नहीं किया करते।
1: प्रियतम,
0: मेरी प्रार्थना है कि आप किसी की प्रतीक्षा न करें और तुरंत अपने कर्तव्य का पालन करें।
1: प्रिय, जीवन में प्रेम का महत्व किसी भी वस्तु से कम नहीं, कम से कम इस मधु यामिनी को तो बीत जाने दो। विधाता भी कैसा क्रूर है, जीवन के इस मधुर हास्य में कठोरता का अट्ठास और संगीत की मधुर लहरी में यह भयानक चीत्कार जैसा क्षण मेरे ही भाग्य में था। तुम्हें जी भर कर निहार भी न सका, एक बार हृदय से लगा भी न सका। सेज पर सजी हुई गुलाब की पंखुड़ियां भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मुरझा जाएंगी।
0: स्वामी, यह केवल आपका मोह और वासना है।
1: रानी,
0: प्रेम प्रेरणा देता है, मोह विचलित करता है।
1: रानी,
0: स्वामी विचलित हो रहे हैं क्योंकि मोह ने प्रेम को बंदी बना रखा है।
1: हाँ रानी, मैं विचलित हो रहा हूँ। मैंने अब तक यौवन के उद्दाम वेग को केवल तलवार की धार पर ही रोक रखा था, पर तुम्हारे रूप और यौवन ने उस वेग को इतना तीव्र कर दिया है कि उसे रोकना असंभव सा हो रहा है। अपने प्राणों को अब तक मैं बर्छों और भालों की नोक पर ही उछालता फिरता था, पर आज जैसी घुटन और उलझन कभी ना हुई थी। क्या करूं?
0: तो ठीक है स्वामी, आप चूड़ियां पहनकर यहां बैठिए और मैं सैनिक वेश में युद्ध भूमि में जाती हूँ।
1: रानी ठहरो,
0: आप इस पुष्पशैया पर बैठकर अपनी घुटन का उपचार करिए

0: मैं आपकी इस कायरता के पाप का प्रायश्चित करने जाती
1: हूँ। ठहरो रानी,
0: ये हरावंश की तलवार है जिसने हर संकट में हमारी रक्षा की है। मैं डरती हूँ।
1: रानी ठहरो।
0: नहीं।
1: रानी सुनो तुम।
0: नहीं सामन, नहीं। मैं जीते जी अपने आप पर ये कलंक नहीं आने दूंगी कि जब सहस्त्रों युवक एक अबला की सतीत्व रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे, उस समय सामंत रंग महल में रंगरेलियां मना रहा था। रूप और यौवन की आंधी में सामंत की वीरता एक तिनके की भांति उड़ गई। अपनी प्रियतमा के केश पुष्पों की सुगंध में मदहोश सामंत तलवारों की खनखनाहट से भयभीत हो गया। नहीं, नहीं सामंत, नहीं। मैं आप पर एक कलंक का टीका नहीं सह।
1: रानी शांत हो और जरा यहाँ बैठो।
0: छोड़िए मुझे, मैं ये तलवार लेकर आलमगीर की सेना पर टूट पड़ूंगी। एक राजपूत बालक के लिए मैं अपने प्राणों की बलि दे दूंगी। कोई पूछेगा तो कह दूंगी कि सामन की वीरता कायरता के बंदी खाने में पड़ी तड़प रही है।
1: नहीं नहीं नहीं, ठहरो रानी, तुम चली जाओगी तो मुझे विदा कौन करेगा।
0: तो फिर शीघ्रता कीजिए स्वामी, आइए मैं आपके बाल पर रक्त तिलक कर दूं। स्वामी विजयी हो और शीघ्र लौटे, यही मेरी शुभकामना है।
1: रण क्षेत्र में भी मैं तुम्हारी मनोहर छवि न भूल सकूंगा। तुम मेरी रग रग में समा गई हो। मैं तुम्हारे इस निर्दोष अछूते और अतृप्त यौवन को देख रहा हूँ। सोचता हूँ यदि मैं जीवित न लौटा
0: ना, ना।
1: तो तुम्हारा ये रूप यौवन
0: ऐसा न कहिए प्रियतम। यदि कहीं कुछ अनहोनी हो गई तो ये दासी स्वर्ग में आपके स्वागत के लिए पहले ही उपस्थित हो जाएगी। आप ऐसे विचार हृदय से निकाल दीजिए और निश्चिंत होकर रणभूमि में जाइए।
1: अच्छा प्रिय, विदा। जय भवानी।
0: जय भवानी। विजय प्राप्त कर शीघ्र आइए, मैं विजय मान लिए आपकी प्रतीक्षा करूंगी। भवानी आपको यह शौर्य विजय दे।

0: कितनी सुंदर है हाड़ी रानी, कितनी मस्ती और अल्हड़पन है उसके अंग संचालन में। पात्र में भरी हुई मदिरा के समान इठलाता हुआ उसका यौवन, जैसे मदिरा की मादकता को भी चुनौती दे रहा हो। एक बार गले से भी न लगा सका, क्या करती होगी इस समय? कदाचित गुलाब की पंखड़ियों से सजी सेज पर बड़ी तड़प रही होगी। अगर मैं जीवित न लौटा तो उसका ये यौवन रूप, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी को भेजना ठीक होगा, कुछ निशानी भी मांग लाएगा। रण सिंह उपयुक्त है इस कार्य के लिए, उसी को भेजता हूं।
1: रण सिंह का प्रणाम स्वीकार हो रानी जी।
2: कहिए रण सिंह जी, क्या समाचार लाए हैं?
1: महारानी, सामंत बड़े विफल हैं। उन्होंने मुझे आपके पास कुछ सेनानी लाने भेजा है, साथ ही ये संदेश भी दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर जौहर व्रत करने से आप ना हिचके।
2: ओ, अभी तक प्रियतम का मोह नहीं टूटा। एक क्षत्रानी अपनी मान मर्यादा की रक्षा करना अच्छी तरह से जानती है। लीजिए, ये मेरे पितृ कुल की तलवार है। निशानी के रूप में उन्हें ये तलवार देकर कहिएगा कि दोनों वंशों की लाज अब उनके हाथ है।
1: जो आज्ञा।
2: तारा, आज 3 दिन हुए, युद्धस्थल का कोई समाचार नहीं मिला।
3: वह रानी जी, जब रणसिंह आते हैं तब आप क्रोधित हो उठती हैं, और जब युद्ध का कोई समाचार नहीं मिलता तब व्याकुल होकर रोने लगती हैं।
2: तारा, तारा देख तो कोई आ रहा है।
3: रणसिंह जी आए हैं।
1: रानी जी, रणसिंह का प्रणाम स्वीकार हो।
2: रणसिंह, युद्ध भूमि का क्या समाचार है?
1: महारानी जी, युद्ध किसी भी समय आरंभ हो सकता है। सामंत ने मुझे

0: अंतिम बार आपसे कुछ सेनानी मांग लाने को कहा है। उनका शरीर रणभूमि में है पर मन आपके ही पास मंडरा रहा है।
1: रण सिंह, एक अबला के सतीत्व को संकट में देखकर भी सामंत मेरे ही बारे में सोच रही है। इस हार जाम की पुतली के मोह में उनकी सारी एकाग्रता नष्ट हो रही है। उनकी इस मानसिक कायरता का कारण मैं हूं, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ करना होगा तो फिर यही ठीक है। रण सिंह, प्रतीक्षा करो, मैं आज तुम्हें अंतिम निशानी दूंगी, ऐसी निशानी जो कभी भी किसी भी पत्नी ने अपने पति को न दी होगी। विजय मार, तारा, तारा,
2: आई, आई रानी जी, आपने मुझे बुलाया।
1: हाँ तारा, मेरी प्यारी सखी, तूने मेरी बहुत सेवा की है ना, आज अंतिम बार मैं तेरी सहायता चाहती हूँ।
2: ये क्या कर रही है?
1: इधर आ, इधर आ, मेरी मांग में सिंदूर भर दे, मेरे केशों को सुगंधित पुष्पों से सजा दे, पैरों में बिछिया पहना और मावर लगा। जल्दी कर, जल्दी कर तारा।
2: रानी जी,
1: रानी जी, मुझे छोड़कर मत जाओ। पगली, रोती है, क्षत्रानी होकर रोती है। शिखा ताकर, रण सिंह मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ला, ला सिंदूर ला। अरे, तेरे हाथ कांप रहे हैं, जरा तनिक ठीक से मांग तो भर दे। हाँ, ऐसे दर्पण ला, दर्पण इधर ला। अरे, अरे वाह, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। जब मेरा विवाह हुआ था तब सब कहते थे कि बहुत सुंदर लग रही हूँ, पर आज मैं कैसी लग रही हूँ ये तो तू ही बता सकती है। बता, बता ना। अरे फिर रोती है। ला, ला तारा, मेरे विवाह का जोड़ा और मुझे पहना दे। सुन तारा, एक बार तूने ही कहा था ना, इस सामंत की विजय माल का सबसे सुंदर पुष्प मैं हूँ। हाँ, आज वही पुष्प बनने में जा रही हूँ। स्वामी के जोड़े कर्वोलत वक्ष पर ये मेरा शेष रूपी पुष्प खूब खिलेगा, खूब खिलेगा। बस बस, अब बहुत विलंब हो रहा है, जल्दी कर, लापरवाह। ठहरिए रानी जी, मुझे आपके चरण स्पर्श तो कर लेने दीजिए। बस अब समय नहीं है तारा, अब समय नहीं है, मेरा भग्न शेष रण सिंह को दे देना। और कहना, कहना रानी ने ये विजय मार समझ के लिए ली है। विजय मार।

0: तुम रो क्यों रही हो?
1: रण सिंह जी, लीजिए, हाड़ी रानी ने सामन के लिए ये विजय माल भेजी है।
0: ये कैसी विजय माल है जो इस तरह थाली में ढांक कर लाई हो?
1: आप स्वयं देख लें और सामन तक शीघ्र पहुंचा दें।
0: ये क्या, ये रानी के शीश की विजय माल? धन्य हाड़ी रानी, तुम्हारा ये बलिदान युग युग तक भारत के नरनारियों को प्रेरणा देता रहेगा। जाता हूं दारा।

0: अभी तक रण सिंह नहीं आया
1: और इधर आलमगीर अपनी विशाल सेना के साथ आगे बढ़ा रहा है। उसे रोकने का कोई उपाय नहीं सूझता। हरी रानी नस नस में बस गई है, क्या करूं?
2: सामंत, क्या मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो सकता हूं?
0: आओ आओ रण सिंह, मैं बड़ी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। कहो, हरी रानी कुशल से तो है? मेरे लिए कुछ सेनानी दी उन्होंने?
2: हाँ सामंत, रानी जी ने आपके लिए ये विजय माल भेजी है।
0: अच्छा,
2: इसे गले में पहनकर आप झूम पड़ेंगे।
0: सच?
2: और जो भी इस अनोखी विजय माल को देखेगा वो अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। इस विजय माल के साथ ही हाड़ी रानी ने एक निवेदन भी किया है।
0: वो क्या?
2: कि इस युद्ध में हम सब का एक ही नारा हो और एक ही लक्ष्य हो, विजय या मृत्यु।
0: हमें सब स्वीकार है, पर सेनानी तो दिखाओ।
2: आगे बढ़िए सामंत, और इस ढके हुए थाल को स्वयं खोलकर रानी की दी हुई इस निशानी से अपने वक्ष स्थल को सुशोभित कीजिए।
0: रणसिंह, ये क्या लाए हो?
3: हरी रानी का भंग ऋषि, ये क्या किया तुमने रणसिंह?
2: मैंने नहीं, आपने ही ये किया। रानी के मोह में अंधे होकर आपने मुझे बार बार सेनानी लाने को भेजा। रानी आपकी दुविधा को पहचान गई और आप पर कोई कलंक न लगे इसलिए।
3: मैं समझ गया, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं ही दोषी हूं। सचमुच मेरा पतन हो गया था, रानी ने मुझे बचा लिया।
1: हरी रानी, तुम साक्षात भवानी थी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। इन लहराते हुए सुंदर केशों की माला बनाकर मेरे गले में पहना दो रण से। मेरी प्रियतमा का शीश मेरी छाती पर लटकने दो। मेरे मृत शरीर को रानी के साथ एक ही चिता पर रखकर भस्म कर देना। अब मेरी आंखों पर से मोह का आवरण हट गया है। भूखे सिंह की तरह हम अपने शत्रुओं पर टूट पड़ेंगे। साथियों, आगे बढ़ो, विजय हमारी है।
2: अच्छा की सेना उल्टे पैर भाग रही।
0: सच रण सिंह, तुम विजयी हुए?
2: हाँ सामंत, सच। मुगल बादशाह भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, शायद वो भी रणभूमि छोड़कर भाग निकला। सामंत,
0: शत्रु भाग गया। जय भवानी, हम विजयी हुए, हम विजयी हुए। मैं चाहता हूँ मेरी प्रियतमा मेरी प्रतीक्षा में होगी।
4: मैं चाहता हूँ। सामंत, आप कहाँ दौड़े जा रहे हैं? सामंत, ठहरिए, ठहरिए।
0: रानी, सुना तुमने, हम विजयी होकर आ गए, हम लौट कर आ गए। आओ हमारा स्वागत करो, टीका लगाओ, आरती उतारो। रानी शीघ्र आओ। तारा, ओ तारा।
5: जी सामंत।
0: रानी जी कहाँ हैं? उनसे कहो कि हम विजयी होकर आ गए हैं, विजय माल लेकर जल्दी आए।
5: सामंत, रानी जी की विजय माल तो आपके गले में पहले से ही सुशोभित है।

विजय माल। अभी आपने रवि शर्मा लिखित ये नाटक सुना, प्रस्तुतकर्ता बी डी माथुर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार श्रोताओं, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से एक मुलाकात। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त यूनुस खान हूं और आज विविध भारती के स्टूडियो में एक युवा अभिनेता हमारे साथ मौजूद हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि युवा अभिनेता, लेखक, गायक और संगीतकार देवेंद्र अहिरवार। बहुत स्वागत देवेंद्र।
3: बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।
2: देवेंद्र, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपकी जो पहचान बनी है वो 120 बहादुर से बनी है।
3: जी जी।
2: ये फिल्म आपको कैसे मिली थी?
3: ये फिल्म के पहले एक बहुत लंबी कहानी है। इस पहचान तो ऐसे नहीं है कि इस फिल्म से बनी है, क्योंकि मैं लगातार थिएटर कर रहा था। लगभग 15-20 सालों से मैंने काम किया है। मैं काफ़ी छोटा तब से काम कर रहा हूँ और एक ऐसे बोल सकते हैं कि एक बहुत एक बड़ी ऑडियंस को जानने का मौका मिला कि
2: Correct.
3: इस नाम का कोई बंदा है कुछ काम करता है। तो ये फिल्म मुझे जैसे सबको मिलती है, क्योंकि हम बाहर के लोग हैं तो ऑडिशन से ही मिलती है। सो मैं ऐसे म्यूजिक में हूँ, मेरा गाने गाने का काम है, या मैं एक्टिंग करता हूँ या नाटक बनाता हूँ। तो कास्टिंग डायरेक्टर जो अनमोल आहूजा है, उनको मालूम था कि मैं गाना गाता हूँ। तो एक कैरेक्टर था 120 बहादुर के लिए, ऑडिशन हुआ कि एक गाना गाने वाला लड़का चाहिए। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन लिया, पर उस कैरेक्टर के लिए मैं बाद में फिट नहीं बैठा, मेरा लुक नहीं जा रहा था और मेरा काम, मेरा ऑडिशन अच्छा हुआ था। तो उनको लगा कि इसको हम फिल्म में इस वाले कैरेक्टर के लिए नहीं रख सकते हैं। फिर उन्होंने मुझे एक दूसरे कैरेक्टर के लिए टेस्ट किया जिसका नाम था बैंगन। तो उस बैंगन कैरेक्टर के लिए फिर मैं फाइनल हुआ। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, खासकर बुंदेलखंड के पूरे एरिया ने, मध्य प्रदेश के पूरे एरिया ने और पूरे देश के लोगों ने फिर बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ।
2: बिल्कुल, लेकिन आपकी यात्रा यहाँ से शुरू नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि सीधे चलते हैं बुंदेलखंड की तरफ। आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपका बचपन कैसा था, और अपने माता पिता के बारे में बताइए।
3: जी जी। सो मैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे गाँव का नाम है पहरा।
2: क्या बात।
3: सो मैं बहुत छोटा था तब मैंने एक रेडियो पे गाना सुना था कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, इश्क और भी गहरा हुआ है। तो मैं काफी छोटा था और मैं सोचता था मेरे गांव का नाम फिल्मों में आता है। मेरे गांव के नाम पे गाने बने हुए हैं। हाँ। तो तभी मैंने सोचा था कि मैं, बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आया कि चलो मैं फिल्मों में जाऊंगा।
2: अरे,
3: और मुझे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है, सच में ऐसा होने वाला है। तो एक ऐसी छोटी सी कहानी है, और मैं रेडियो लगातार सुनता था, विविध भारती लगातार सुनता था, छतरपुर आकाशवाणी मैं बहुत सुनता था, हेलो फरमाइश मैं सुनता था, रेडियो मेरे साथ ही रहता था।

0: मेरा दोस्त हुआ करता था एक तरीके से, क्योंकि मेरे पापा भी गाना गाते थे तो उनको भी शौक था।
1: वाह,
0: देशराज पटरिया के गाना, उर्मिला पांडे जी के गाने,
1: अरे
0: और भी
1: क्या
0: बहुत सारे
1: बात
0: लोगों के
1: है,
0: गाने मैं सुनता था। तो ऐसा एक जीवन बीता। और मेरे घर के बाहर एक चबूतरा था, चबूतरे पे शाम को लोग अपने खेतों पे खाना खाने के पहले, डिनर करने के पहले वहाँ पे बैठते थे, और फिर वो वहाँ पे कुछ गाने गाते थे 1-2 घंटे, और फिर अपने खेतों पे जाते थे सोने के लिए कि जानवर उनके खेतों में ना घुस पाए। सो पूरा किसान परिवार, एक छोटी सी बस्ती, मैं आप समझ सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। सो उन लोगों में मैं और मेरा भाई लखन भी, दो छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे जो बैठते थे, और कई दफ़ा लोग हमसे इरिटेट भी होते थे कि बच्चे बहुत ज़्यादा बैठते हैं, पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं हैं। तो फिर क्या हुआ कि मंडली ने सोचा कि इस मंडली को थोड़ा बड़ा करते हैं। तो उस समय ऐसा होता था कि कोई गलत करता था तो उससे वो लगाते थे, जुर्माना लगाते थे।
1: अच्छा,
0: तो ऐसा करके होता, तो किसी ने कुछ गलत किया होगा तो उन्होंने कुछ पैसा दिए, 8-10 हज़ार रुपये उधर से आए। तो उन्होंने सोचा इस पैसे का क्या करें, तो उन्होंने
1: हाँ,
0: सोचा अब हारमोनियम ले लेते हैं।
1: अरे वाह वाह,
0: तो उन्होंने हारमोनियम ले लिया, पर हारमोनियम बजाना तो किसी को नहीं आता था, तो अब
1: ओके,
0: बड़ा असमंजस हो गया। तो रात को बैठते थे पर हारमोनियम रहता था, बजा तो कोई नहीं था। तो फिर वो हमारा घर जस्ट बगल में था, तो हमारे घर में रखते थे वो हारमोनियम। तो मैं और मेरा भाई स्कूल से आके हम 2-2, 3-3 घंटे एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। वो ढोलक बजाता था, मैं हारमोनियम बजाता था, और ऐसे बजाते बजाते बजाते बजाते सडनली थोड़ा थोड़ा गाने के आसपास में दिखने लग गया लोगों को कि
1: अरे
0: गाने के
1: वाह।
0: आसपास से, गाने के आसपास है, कोई भी गाना गाता है तो उसके आसपास ही बजा लेता है। तो ऐसे करके मैं उस पहला जो मेरा ग्रुप था, जो मेरा पहला परफॉर्मेंस था, वो गांव के जो फोक आर्टिस्ट हैं, जो मंडली है जिनमें मेरे
1: अपने घर के
0: पिताजी
1: ही
0: भी थे,
1: चबूतरे में हुआ,
0: चबूतरे पे ही मैंने उसको एकदम से ऐसे शुरू किया, और फिर स्कूल में गाने गाने शुरू किए।
1: वाह वाह।
0: सो मैं ये बोलूँगा कि मेरे पिताजी भी किसान हैं, मेरी माँ भी किसान है, और मैं बहुत ही प्राउडली ये कहना चाहता हूँ, मैं बहुत किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। जिस तरह से हम प्राउडली बोल पाते हैं ना कि हम फौजी खानदान से हैं, ऐसे जय
1: हाँ,
0: जवान जय किसान वाले जो पूरी बात है, अगर हम उन साथ में बोलें तो हम, बहुत सारे लोगों को एक क्राइसिस रहता है कि बोलने में कि हम किसान परिवार से, तब मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं किसान परिवार का एक लड़का हूँ।
1: कितने दूर है छतरपुर से ये गांव?
0: छतरपुर से 24 किलोमीटर दूर है ये, बसारी पन्ना रोड पर पड़ता है, तो बसारी के
1: अच्छा,
0: आगे है पहरा।
1: ओके, तो
0: बहुत ही छोटा सा गाँव है सर, बहुत ही।
1: कितनी क्लास तक वहां पढ़े आप?
0: मैं वहाँ पे पढ़ा 8वीं क्लास तक, उसके बाद मैं 12वीं तक पढ़ा बसारी में। बसारी में पढ़ते हुए एक फिल्म आई थी उस समय जिसका नाम था जीजाओरे, बुंदेली फिल्म थी।
1: हाँ,
0: उसमें एक एक्टर थे हिमालय यादव जो उसी गांव के थे, तो वो वो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस फिल्म से। उस फिल्म को बहुत प्यार मिला, हर घर में सीडी हुआ करती थी उस समय तक,
1: अरे वाह,
0: जीजाओरे की सीडी, झूमो नाचो गाओ रे, खुशियां मनाओ रे, पता नहीं आओ रे भैया जीजाओ रे, ऐसा कुछ गाना था उसका,
1: क्या
0: टाइटल
1: बात है।
0: सॉन्ग था
1: अच्छा,
0: उसका।
1: जब ये सब बातें हो रही हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि वो जो चबूतरे पर गाने होते थे उसमें से कोई गाना याद है,
0: उस
1: लोकगीत?
0: पे ऐसे कुछ कुछ भी गम्मतें होती थी, गाने होते थे, लाइक फागे होती थी,
1: हाँ,
0: तो उसी तरह से कि कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, ये पहाड़िया के बड़े बड़े पत्थरा, उपटा लगत उंगरिया मेरे, कहाँ ले आए
1: उपटा लगत उंगरिया,
0: उंगरिया,
1: क्या
0: मतलब
1: बात
0: ना
1: है,
0: कहाँ ले आए राजा
1: क्योंकि
0: कुमारिया में,
1: मतलब
0: लाइक
1: बुंदेलखंड।
0: कोई लव मैरिज करके किसी को डिफिकल्ट शहर में ले जाए, ये गाना मतलब इनडायरेक्ट रूप से वैसा है। ये
1: हाँ,
0: पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, ये पहाड़िया को बड़ो बड़ो चारो, लंपा लगत चुनरिया मेरे, कहाँ ले आए, कहाँ ले आए राजा पहाड़िया मेरे, कहाँ ले आए। सो वही है, लाइक मैं किसी लड़की को प्रॉमिस करूं कि मैं तो बंबई रहता हूं और फिर मैं वहां छोटे से कमरे में रख दूं, तो उसी सिचुएशन को एक अलग तरीके से कवि, बुंदेली बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो
1: हाँ,
0: लोग कवि हैं, लोग गायक हैं, वो कैसे उसको कैप्चर करते हैं और कैसे उसको करते हैं,
1: तो
0: तो
1: मजा आ गया मुझे सुन
0: बहुत ही
1: के
0: मजा आ गया, वो तो बहुत
1: तो
0: मजा आ गया। तो
1: हाँ,
0: यही था फिर बुंदेली, फिर जब बसारी में पढ़ता था, हिमालय भैया से मिलना हुआ, हिमालय यादव जी से मिलना हुआ, उस समय बसारी में एक फेस्टिवल होने लग गया था, उसका नाम था बुंदेली उत्सव। तो बुंदेली उत्सव बहुत बड़ा फेस्टिवल होता, फरवरी में लगभग 1 महीना 21 दिन चलता था वो।
1: अच्छा,
0: और उस समय तो क्योंकि जो वो कराते थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला जी, मुन्ना राजा जी कराते थे उसको, तो पूरे MP के फोक आर्टिस्ट सेलिब्रिटी आते थे उधर। तो वो पहली बार मैंने एक नाटक किया उस ग्रुप में जुड़ के, हिमालय भैया के ग्रुप में जुड़ के, और नाटक का नाम था ददुआ भाव दिल्ली में बर्बाद,
1: अरे
0: और मैं
1: बाबा
0: नाइन्थ
1: रे,
0: क्लास में पढ़ता था उस समय।
1: ठीक
0: उस
1: है,
0: नाटक में मैं रेल का डिब्बा बना था, हम ऊपर छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे हमारे,
1: हाँ,
0: छोटे छोटे डायलॉग हुआ करते थे,
1: तो
0: लाइक
1: बुंदेली में था ये।
0: हाँ बुंदेली में नाटक था। अब मुझे कोई भी डायलॉग याद नहीं है क्योंकि मैं एक तो मैं पहला नाटक था मेरा, तो उस ग्रुप से जुड़ गया और फिर मुझे बहुत मजा आया। और मैंने

0: आपसे बात भी किया इस तरह का, जो जो मुझे वो सर्कल में बैठते थे लोग, एक दूसरे की आंखों में बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, उस तरह का एक भाव मुझे लगता था। तो मुझे पता चला कि मैं शायद इस फील्ड में ही जाना चाहता हूँ।
1: वाह।
0: तो फिर ऐसे ही शुरू हुआ सर, मैं जल्दी से इसको वो कर लेता हूँ। फिर खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, हमारे घर के पास ही है खजुराहो, 30 किलोमीटर दूर ही है। सो खजुराहो में एक वर्कशॉप हुई, राष्ट्रीय नाट विद्यालय NSD की एक वर्कशॉप थी, और उसको डायरेक्ट करने आए थे इश्तियाक आरिफ खान, जो कि काफ़ी
1: ओ
0: बड़े
1: वो तो
0: एक्टर
1: पन्ना
0: हैं,
1: के ही
0: जो
1: है।
0: पन्ना के ही हैं। तो
1: हाँ
0: वो NSD से पास आउट होने के बाद वो वर्कशॉप के लिए आए थे। हमको पूछा गया कि खजुराहो में वर्कशॉप हो रही है, तो खजुराहो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि भाई खजुराहो, अंग्रेज़ आते हैं, गोरे, 5 स्टार होटल, तो हमें उधर पहुंचना है कुछ भी करके। तो घर में बोला कि एक वर्कशॉप हो रही है, तो उनने बोला क्या क्या चाहिए पड़ेगा। तो हमने बोला कि उन्होंने बोला 2 2 किलो चावल लेके चलना है, 1 किलो दाल लेके चलनी है, थोड़ा नमक लेके चलते हैं, हल्दी मिर्ची लेके चलनी है, क्योंकि वहाँ पे 1 महीने रहना है।
1: हाँ
0: तो शिल्पग्राम में एक वर्कशॉप हो रही थी, और उसमें हमने काम किया, और वो एक नाटक उन्होंने कराया, इश्तियाक जी ने। इन्हें कहीं देखा है,
1: अरे
0: इन्हें कहीं
1: वाह।
0: देखा है, तो एक ऐसे कैरेक्टर जिनको हमने कहीं ना कहीं देखा है, उसका नाटक उन्होंने बनाया था, और वो नाटक बहुत अच्छा बना, और मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि इतने छोटे से हैं, वो क्यूट से हैं, और उन्होंने इतने 20-25 लोगों को, पूरे देश के लोगों को एक नाटक में पिरो दिया, और इतना अच्छा काम निकल के
1: और
0: आया।
1: इश्तियाक भाई की एक खासियत और है कि वो बहुत म्यूजिकल आदमी है।
0: हाँ, और म्यूजिकल प्ले था वो, और म्यूजिक में मेरा रुझान भी था, तो वो भी मेरे से काफ़ी खुश थे। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी हो जाए, उनसे पूछा कि सर आपने, मैं मुझे ये करना है, या मैं कहाँ सीखूँ। तो उन्होंने बोला था कि मैं NSD से पढ़ा हुआ हूँ, तुम भी NSD जाओ अगर तुम्हें करना है। तो फिर मैंने तब लिख लिया था डायरी में कि मुझे कुछ भी करके NSD पहुंचना है।
1: डायरी में लिख गया।
0: हाँ, तो मैं लिख
1: अरे
0: लिया कि
1: क्या
0: अभी
1: बात
0: है,
1: है।
0: मुझे पहुंचना है NSD। तो फिर वहाँ
1: अभी
0: से,
1: आगे की कहानी थोड़ा आगे सुनाएंगे।
0: जी,
1: यहां एक फिल्मी गाने की जगह बनाते हैं।
0: हाँ जी, हाँ
1: तो
0: जी,
1: जिस दौर में हम हैं, जिस दौर में आप ये सब कर रहे थे कि आप वो बड़े गांव में गए और उसके बाद खजुराहो हो गए, उस दौर का कोई गाना याद आता हो तो वो गाना यहां बजाया
0: एक फिल्म थी वो शोला और शबनम,
1: जाए। गोविंदा
0: गाना
1: की
0: गाना सुनता,
1: फिल्म।
0: तू पागल प्रेमी आवारा, दिल तेरी मोहब्बत का मारा, तुझे पहचान लिया रे, अपना तुझे मान लिया रे। फिर म्यूजिक आता जो आप कह रहे थे ना,
1: हाँ
0: ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए ओए
1: क्या बात
0: ओए।
1: है।
0: तो ये कुछ कुछ गाने जो ऐसे उस समय के याद है मुझे,
1: बिल्कुल, वो एक जहन में बसे
0: बहुत
1: होते
0: ही,
1: हैं और ये उस दौर की याद लेके
0: जी
1: आते
0: जी
1: हैं।
0: जी हमने
1: बातचीत
0: बहुत देखा है
1: करेंगे।
0: फिल्म को,
1: वाह।
0: बहुत देखा है फिल्म को हम, मैं तो करण अर्जुन बहुत देखी, ये देखा, पता नहीं मिथुन की फिल्में देखी, टड़ी पार जैसी फिल्में देखी,
1: हाँ,
0: गुंडा,
1: क्या
0: जो
1: बात
0: भी
1: है।
0: CD पे जो भी मिलता था देखते थे, जो भी मिलता था देखते, वो हमारे लिए बेस्ट फिल्म होती थी।
1: वाह, ये
0: हाँ
1: गाना सुनते
0: जी।
1: हैं।

0: देवेंद्र, आपसे बातें हो रही हैं और हम तकरीबन 90s के जमाने में हैं और ये वो दौर है जब आप एक नाटक करते हैं बुंदेलखंड फेस्टिवल में और फिर इश्तियाक आरिफ खान साहब से आपका परिचय होता है, जो तब तक NSD में हैं और तब तक बंबई आके उन्होंने अपने जलवे नहीं दिखाए और वो एक शिविर लगाते हैं और वहां से आपको एक राह दिखती है।
1: जी जी।
0: एक लड़का जो पहरा गांव का है और जिसको बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा, जिसका परिचय नहीं है, उसका परिचय इन सब चीजों से होता है और वो अपनी डायरी में लिख लेता है कि मुझे कैसे भी करके
1: यहाँ पहुंचना है।
0: उसके आगे क्या होता है?
1: उसके आगे मैं फिर स्कूल के बाद कॉलेज में पहुंचता हूँ तो अब मुझे तो कोई लोग चाहिए कि भाई ये काम करने वाले लोग कहाँ हैं, अभी मुझे 3-4 साल और पढ़ना पड़ेगा है ना, तब जाके मैं वहां पे जाऊंगा। क्योंकि मैं वर्कशॉप के निकलने के बाद मैं दिल्ली आया घूमने के लिए कि मुझे पहले वो जगह देखनी है जहां मुझे पढ़ना है।
0: तो मंडी हाउस चले
1: मैं पहले किसी दोस्त के साथ जो किसी बस्ती में रहता था, मजदूर फैमिली का, मजदूरी करने जाते थे उनके पिता जी, तो मैं उस दोस्त के साथ दिल्ली आया और दिल्ली में ढूंढते ढांढते उस बच्चे के साथ में, और मैं खुद बच्चा हूँ अभी, मैं 9th-10th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं NSD की तरफ बढ़ते बढ़ते मैं वहां पहुंचा। उसमें मेट्रो बन रही थी और मैंने पहली बार देखा कि वो ऐसी सीढ़ी है जिसपे पैर रखते अपने आप ऊपर पहुंचा देती है। मेरे लिए बड़ा चमत्कार था। मैं घर जाके लोगों को बता रहा हूँ कि भाई ऐसी सीढ़ी बन चुकी है धरती पे कि आपको चढ़ना नहीं पड़ता, आप अपने आप ऊपर पहुंच जाओगे। और मैं ऐसे हो गया। फिर मैं NSD के गेट पे पहुंचा और मैं NSD मैंने देखा कि ये लिखा है राष्ट्रीय नार विद्यालय, मतलब ये वो जगह है। और मैंने वहां से निकलते हुए लड़के लड़कियों को देखा और वो बहुत ही फ्रेंडली है, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, कोई डायलॉग पहन रहा है, कोई कॉस्ट्यूम पहन के घूम रहा है। और मैं देखा कि भाई ये तो अलग दुनिया है, ये तो कमाल की दुनिया है। तो मैं गेट में घुसने को हुआ तो एक उस समय एक गार्ड हुआ करते थे, उनका नाम था धुरंधर जी, रिटायर्ड फौजी थे वो
0: जी।
1: तो मैं घुसने लगा, उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने बोला कि मेरे को यहाँ पढ़ना है। बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैंने कि मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ। तो कह रहे हैं यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने कहा अरे अब तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा यार। तो मैंने बोला कि मैं यहाँ पे पढ़ूंगा। तो उन्होंने बोला कि अरे ऐसे बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, पहले अभी 10th क्लास में पढ़ता है, अभी तू ग्रेजुएशन करेगा फिर तेरा मन बदल जाएगा, पता चला कुछ हो जाएगा, तू नौकरी लग जाएगी तो तू नहीं आएगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर मैं आऊँगा। मैंने बोला कि मैं आऊँगा, मुझे आना ही है इधर। तो मेरे पास उस समय नोकिया 2626 फोन हुआ करता था,
0: वो छोटा वाला
1: फोन, तो उसमें 1 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे क्या क्या करके आना है,
0: बस
1: रिकॉर्ड कर दो, मेरे पास में इससे ज्यादा टाइम नहीं मेरे पास में। तो उन्होंने मुझे बताया कि 6 नाटक चाहिए जिसमें तूने एक्टिंग की हो, बैकस्टेज किया हो, 3 बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम किया होना चाहिए, जिनके लेटर्स लिखा होगे, जिनमें लिखा होगा कि वो तुमको जानते हैं, तुमने उनके साथ काम किया है और वो तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं।
0: अरे गजब।
1: और तुम अनुशासित हो। उसने
0: 1 मिनट में सब
1: बता दिया, ये करके आना पड़ेगा तब तुम फॉर्म डाल सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग लेके, मैं रोज सुनता था मुझे ये करना है। मैं वापस आया, मैंने अपनी पढ़ाई की, कॉलेज गया। फिर मैंने सोचा यार यहाँ पे कोई नाटक ही नहीं करता उस तरह से, तो मैं ही नाटक करूंगा।
0: तो मैंने कॉलेज में, इस शहर में था
1: ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में महाराजा कॉलेज, तो वहां पे मैंने एक ग्रुप बना दिया और छोटे मोटे नाटक करने लगा, यूथ फेस्टिवल में नाटक करने लगा। और पता चला कि छतरपुर में कोई इफ्टा नाम का एक संस्था है जो एक्टिव है, जो उस समय शिविन शुक्ला जी चला रहे थे, अभी भी वही संभालते हैं उसको। तो उनसे जुड़ गया, फिर उनने जो भी नाटक कराया उनमें नाटक करने लग गए, बकरी नाटक किया, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नाटक किया, और भी नाटक जो भी वो कराते थे उससे जुड़ गए। और वो रिकॉर्डिंग सुनता रहता था कि ये तो करना ही भाई, अभी एक नाटक हुआ है, वो नाटक हुआ। फिर ये भी सोचता था कि जिस लेवल के हम नाटक कर रहे हैं, इस लेवल के नाटक के उसमें काउंट होंगे, हम तो कुछ भी कर देते हैं,
0: बिल्कुल
1: कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कहीं बोल दिया ये इम्प्रोवाइज करके कर दिया, बुंदेली में कुछ भी बोल दिया कर दिया। तो फिर सोचा ग्रेजुएशन के दौरान कि भाई ऐसे चलेगा नहीं, भोपाल निकलना पड़ेगा।
0: अच्छा।
1: कुछ भी करके अब इस जगह से निकलना पड़ेगा, अब भोपाल जाने के लिए किसी से मिलना पड़ेगा, आपको कोई जानता हो? आपको कोई भी नहीं जानता सर, एक बंदा नहीं है जिससे थिएटर आया आर्ट फील्ड से जिससे भोपाल में किसी को जानता हो। तो एक उसी जो वर्कशॉप हुई थी इश्ताक जी वाली, उसमें एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे हरीश भैया, हरीश विश्वकर्मा उनका नाम था, उन्होंने एक नंबर दिया कि हेमंत देवलेकर नाम के एक बंदे हैं, हेमंत भाई
0: बिल्कुल
1: आप जानते होंगे, बहुत बड़े कवि हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल, विहान ग्रुप,
1: हाँ विहान ग्रुप अभी वो चलाते हैं, कि एक मेंबर हैं वो, और उनका नंबर दिया उन्होंने और उन्होंने बोला कि ये तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं क्योंकि यही सज्जन पुरुष हैं। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने उनको फोन करता था, वो मैं पागल कर देता भैया मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज मुझे निकलना है। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है तुम आ जाओ, और मैं एक डायरेक्टर है अलख नंदन सिन्हा जी, मैं अलग दादा से उनसे मिलवा दूंगा, पर वो तुम्हें रखेंगे नहीं रखेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर मैंने एक समय ग्रेजुएशन करने के तुरंत बाद मैं MA के लिए मैंने अप्लाई किया था और मैं भोपाल की बस में बैठ गया रात को। शादियों का सीजन था, बहुत बहुत ढोल बज रहे थे, बस निकल नहीं पा रही थी शहर से, और मैं बस में बैठा हूं और मेरे घुटने कांप रहे हैं और मैं सोच रहा हूं कि मैं एक बंदे का नंबर

0: पर जान है, सिर्फ मेरा उसकी शक्ल भी नहीं देखी, और वो किस तरह के होंगे, किस तरह का व्यवहार होगा उनको, और मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं हूँ, और मैं वैसे ही जा रहा हूँ, मेरे घुटने कांप रहे हैं, और बारात की वजह से बस धीरे धीरे चल रही है, मैं सोचूँ कहीं ये भगवान का संकेत तो नहीं है कि अभी मौका है उतर ले, है ना। और मैं फिर बस से नहीं उतरा और मैं पहुंच गया उधर 5 बजे मॉर्निंग में, और मैं 5 बजे से उनको फ़ोन कर रहा हूँ, अभी 5 बजे कोई कोई फ़ोन उठाएगा,
1: बिल्कुल
0: वो तो उठे, जब उठे 10 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने बोला कि वो रोशनपुरा चौराहे पे 12 बजे मिलेंगे। मैंने कहा 12 बजे तक मैं क्या करूँगा, मैं जाके कहीं, मैंने कुछ पोहा हुआ खाया, नाश्ता वास्ता किया, और मैं डिवाइडर पे खड़ा होगा 2 घंटे के लिए। मैंने कहा, मैं उनको बोल दिया कि मैं बीच डिवाइडर पे खड़ा रहूंगा भैया, ऐसा ना हो कि मेरा फ़ोन बंद हो जाए या आपका फ़ोन कुछ बंद हो जाए, मैं रिस्क नहीं ले सकता, तो मैं डिवाइडर पे खड़ा रहा। और फिर एक बंदा
1: रोशनपुरा चौराहे
0: हाँ
1: पर,
0: एक एक बंदा शरीफ सा बंदा, एक हाथ में झोला लेके एक बंदा मेरे पास आए, और मैं वो उनको देखा मैंने कि मेरे को भगवान आ गए मेरे लिए, ये मेरे को रास्ता दिलाएंगे, ये एक पहला इंसान है जो मुझे कहीं पहुंचाएगा, और वो मुझे मिले, मैंने उनको देखा, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैंने उनके पैर छूए, उन्होंने बोले कि पैर वैर नहीं छूते, मैंने बोले हमारे यहाँ तो बड़े बड़ों के पैर छूते हैं, उन्होंने बोले नहीं नहीं पैर नहीं छूते क्योंकि लोग अजीब के होते हैं, तो उन्होंने मुझे समझाया। और कट्टू फिर वो मुझे एक डायरेक्टर के घर में ले गए, अलग दादा के घर में, और हम बैठे हुए हैं, और 1 घंटा हो गया।
1: पहले हेमंत आया,
0: हेमंत दादा आए पहले, और अच्छा। उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है भाई, मैं किसी ग्रुप में काम करता हूँ, मैं डायरेक्टर को मिलवा दूंगा, और क्योंकि वो उनका ग्रुप का नाम नटबुंदी ले, और तुम बुंदेलखंड से हो तो हो सकता है तुम्हें रख ले, और तुमने बोला तुम गाने आना गाते हो सकता है तुम्हें म्यूजिक बंदों को रख ले। और मैं अतरंगी था सर, बेल बॉटम पैंट पहना हुआ है, लाल पीली कलर की शर्ट पहनी हुई है, बाल मेरे तेरे नाम जैसे हैं, बड़े बड़े मैंने बाल रखे हुए थे। तो मैं वहां पहुंचा, लगता कि उधर रहते थे प्रोफेसर कॉलोनी में, तो उनके घर के बाहर हम बैठे हुए हैं, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, बैठे बैठे पानी आया चाय आई हम पी के बैठे हुए हैं, और मैं पूछूं कि क्या हुआ, तो बोले कि दादा कुछ पढ़ रहे हैं, और मैं सोचूं कि ऐसी क्या पढ़ाई है कि लोग घर में आके बैठे हैं बंदा पढ़ ही रहा है आ ही नहीं रहा है। फिर मुझे पता चला कि लोग इतने डिसिप्लिन होते हैं कि अपना पूरा काम करके आएंगे वो, उन्हें बैठना है तो बैठो। फिर अलग दादा एक आए, अंदर से एक बूढ़ा सा आदमी आया, और उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने बोला कि कौन है ये, उन्होंने बोला किसको लेके आ गए, कौन है, मेरी शक्ल देख के। अरे मैंने कहा सर मैं देवेंद्र हिरवार, और मैंने बहुत नाटक किए हैं छतरपुर में, मेरा बहुत नाम है, मेरे कॉलेज में पूरे लोग जानते हैं, आपके ग्रुप को मैं बहुत बढ़िया कर दूंगा सर, मैं बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे को, ये ताकत लगा रहा था क्योंकि मैं डरा हुआ भी था, तो मुझे और ताकत लगा, मरता हुआ आदमी और हाथ पे चलाता है, तो मैं हाथ पे चला रहा था। उन्होंने बोला भाई इससे हो ही नहीं पाएगा, उनको देखे इसको भगाओ, इससे हो नहीं पाएगा। तो मैंने बोला सर ये ऑप्शन ही नहीं है, मैं जा ही नहीं सकता, मुझे कहीं जाना है और मैं उसके लिए आया हूँ, मैं जा ही नहीं सकता, लौट नहीं सकता मैं। तो फिर उन्होंने मेरी जिद देखी, उन्होंने बोला कि यार ये लड़का पता नहीं, उन्होंने बोला कि देखो ऐसे लड़के जो घर से पैसे मांगते हैं उनको हम अपने ग्रुप में रखते नहीं है, और हम अपने ग्रुप में तुरंत जुड़े हुए नए बंदे को पैसे देते भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे। मैं सर कुछ भी करूंगा, मैं आप मुझे बोलो मैं कुछ भी करूंगा, आपकी रिहर्सल से साफ कर दूंगा, आपको कुछ भी कर दूंगा मैं। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो हम तुमको रहने के लिए बस व्यवस्था कर सकते हैं, आपको बाकी चीजें आप खुद से देखनी पड़ेंगी। तो जिस रिपेटरी कंपनी में उनका सामान रहता था, हाथा एक जगह थी श्यामला हिल्स पे, उसमें मैं हेमंत देवलेकर भैया और एक और जितेंद्र भाई एक थे जो कि पत्रकार थे वो रहते थे, तो ये लोगों के साथ रहना हुआ मेरा पहली बार। और ये पढ़ने लिखने वाले लोग थे, भोपाल के साहित्य के लोग आते थे उस कमरे में, वहां पे एक छोटी सी लाइब्रेरी भी थी, और उनके साथ रहना, कविताएं सुनना, हेमंत भैया को सुनना। और फिर मैं हिम्मत करके मैंने बोला कि भैया एक बार मैंने बोला कि मैं भी लिखता हूँ, तो उनने बोला कि अच्छा अच्छा, तो एक महफिल थी, मैंने हिम्मत करके बोल दिया, उन्होंने बोला कि क्या क्या लिखा, तो तुम चाहो तो पढ़ सकते हो देवेंद्र, क्योंकि बहुत ही प्यारे काइंड थे, और मुझे लगा कि सच में वो मेरे लिए भगवान जैसे ही हैं, अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने एक बुंदेली कविता लिखी थी जो कि मेरी एक तरीके से पहली कविता थी, और मैंने उनको फिर सुनाई उस महफिल में, सुनाई पहली बार। मैं इधर सुना दूं आपको?
1: जरूर।
0: तो कविता बुंदेली में ही है कि दद्दा मोखा मेला जाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, ऊंचे ऊंचे गड़े हिड़ोरा बिचरी खूब बराई, और मेला में मिल जे है दद्दा मोखा मम्मा माई, वो पुत्रा और पुतनिया हल्के कक्का से लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने, घूमत घूमत जो दद्दा मोखा मौसी मिल जे है, कईया लेके बड़े प्यार से हल्के मुन्ना के है, मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने,
1: वाह वाह,
0: मोखा अपने मौसिया से गुब्बारो लिबवाने, आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मिला जाने,
1: क्या बात है।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, ये उसके दोस्त हैं,
1: बिल्कुल।
0: हरिया बूठा गिद्दा फद्दा बन के गए जे गुंडा, जिनके संगे बड़ी रहान में खेलो गिल्ली डंडा, जो मेलाना जा पाहो उनखा आके तिनगाने,
1: वाह वाह,
0: आज से 5 रुपया दे दे गड़गड़िया है लाने, दद्दा मोखा मेला जाने।
1: वाह वाह।
0: आखिरी बंदे की दद्दा धीरे से मुस्काए, ढीले दोई बेला और नए तंगड़ी।

0: या बंठन के गए दोई घूमबे मेला, फिर मेला में फिर दद्दा ने एक गड़गड़िया लेवाई और कंधे पे बैठा के पूरा मेला दो घुमाई। कहते हैं देवेंद्र जे बचपन हमें भूल नहीं पाने, और आज ते 5 रुपया दे दे गड़गड़िया हिलाने, दद्दा मुखा मेला जाए।
1: कहते हैं देवेंद्र
0: उस समय ये बुंदेलखंड की कभी गानों में कभी जो राइटर होता था उसका नाम छाप बोलते थे उसे, छाप है तो छाप लगा के ही मैंने पहली कविता लिखी थी, मेरी बुंदेली कविता थी। और वहां से ही मेरा साहित्य के बारे में शेक्सपियर पढ़ना शुरू किया, ब्रेक्ट पढ़ना शुरू किया, चेखव पढ़ना शुरू किया, मोहन राकेश पढ़ना शुरू किया, गिरीश कर्नाड पढ़ना शुरू किया, विजय तेंदुलकर पढ़ना शुरू किया, बादल सरकार पढ़ना, तो वो साहित्य से जुड़ना शुरू हुआ।
1: उस समय खर्च निकालने के लिए क्या करते थे आप?
0: खर्च तो मेरा कुछ था ही नहीं, मैं तो आटा तो मैं घर से ले गया था, और 10 रुपए का 5 रुपए का नमकीन का एक पैकेट आता है, भुजिया बोले ली और रोटी बना के, और रोटी में घी लगा के, घी और ये दोनों चीजें घर से ले गया था, और रोल बना के उसमें नमकीन डालता था और उसको ऐसे खाता था। खर्च कुछ था ही नहीं,
1: बस खाना हो गया,
0: खाना हो गया। और वहां से रिहर्सल के लिए वॉक करता था, तो वॉक करके वहां पे जाता था, रिहर्सल करता था, टाइम से पहले पहुंचता था, तो रिहर्सल स्पेस साफ करता था, ये ड्यूटी थी मेरी, रिहर्सल स्पेस साफ करना है, चराइयां बिछानी है, डायरेक्टर की कुर्सी लगानी है, पानी की बोतलें भरनी है। तो मैं और मेरे दो दोस्त और थे, एक दर्शित जो अभी कास्टिंग करता है कास्टिंग में, और एक मेरा दोस्त था सिद्धार्थ पांडे जो कि मेरा पहला दोस्त बना, कि उस तरह से भोपाल का पहला बेस्ट फ्रेंड मेरा बना। और हम तीन लोग जाते थे, हम पहले पहुंचते थे, हम सब कुछ काम करते थे, डायरेक्टर आते थे बैठते थे, बड़े बड़े लोग एक्टिंग करते थे ग्रुप में, और मैं देखता था भाई ये तो बहुत अच्छे पढ़ते हैं, मेरी भाषा का बहुत खराब था। एक नाटक कर रहे थे तांबे के कीड़े, और दादा मुझे और मेरी भाषा बहुत खराब थी, तो उसमें थे एक पत्ती एक पत्थर एक शब्द, ऐसे कुछ डायलॉग हुआ करते थे। वो भुवनेश्वर का नाटक था, एब्स्ट्रैक्ट नाटक था, और पहला नाटक ही मुझे वो करने को मिला। मैं कुछ ऐसे अजीब से नाटक करने के बाद अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट नाटक करने लग गया, तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो उसमें एक डायलॉग था, ले लो कांच के बीच, तो मैं बोलता ले लो कांच के बीच, तो बोलते ले लो नहीं, वो मुझे सिखाते थे ले लो नहीं ले लो, और मैं बोलता था ले लो, और मैं बोलता था कि मैं वही तो बोलता हूँ, और मुझे इस बात पे गाली मिलती थी। और वो बोलते थे तुम बुंदेली फोड़ रहे हो, तो यार मैं समझ नहीं आता, मैं वही तो बोलता हूँ। फिर मेरे दोस्त मुझे समझाते थे, मुझे पता चला कि मेरे को भाषा पे कितना काम करना पड़ेगा। सर मुझे अच्छे से याद है कि वो दादा के साथ काम करते करते ड्रामा स्कूल खुला भोपाल में, एक एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा, और मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो मैं पैसे मैं कमा नहीं सकता, और ग्रुप में पैसे मिलते नहीं, तो मुझे अब इस इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जहाँ पे साल में इतने सारे लोग आएंगे नाटक कराने के लिए, वो खुले ही था। तो मैंने फिर एमपी स्कूल ड्रामा के लिए एग्जाम दिया, पहला राउंड में मेरा सिलेक्शन हुआ, इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर वर्कशॉप में मैं गया, फिर वर्कशॉप में चल का एक माहौल। सो भोपाल में मैंने देखा कि एक नाटक कर रहे थे कि मैं कैसे मैंने म्यूजिक बनाना समझा, मैंने सीखा तो किसी नहीं है, मैंने हारमोनियम सीख लिया था, पर म्यूजिक बनाना मैंने कैसे समझा, कि एक नाटक कर रहे थे हम लोअर डेप्थ, त्रिपुराई शर्मा मैम जो कि हम उनको डायरेक्ट करने आई थी, जो कि हमारे बीच में नहीं है, पर मैम का बहुत बड़ा योगदान है मेरे को सब चीज़ों के लिए, काफ़ी एनर्जी में भी जाने ले जाने में उनका बहुत योगदान है। तो मैम का नाटक था और हम उसको कर रहे थे, और संजय उपाध्याय सर जो कि बहुत बड़ा नाम है म्यूजिक इंडस्ट्री में और थिएटर की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, SNA अवार्ड ही हैं वो, और मेरे गुरु हैं, मैं उनको बहुत प्यार से उनसे सीखा है मैंने। तो एक नाटक कर रहे थे, तो उस नाटक में हम उज्जैन में, हमारी वर्कशॉप लगी हुई थी और उज्जैन में हम एक महीने के लिए वहाँ पे थे, तो सर ऐसे मेरे सामने ही गाने बना रहे थे। हारमोनियम बजाना मुझे आता था पर मैंने गाने नहीं बनाए थे, तो उन्होंने गाना बनाया मेरे सामने ही, और वो गाना मुझे ही गाना था, तो मेरे सामने बना रहे थे, क्योंकि मैम पूछती थी कि संजय क्या हुआ, तो बताते थे मैम हम कर रहे हैं। तो एक गाना उन्होंने बनाया, एक कविता थी, दिखती है आस क्यों पाक पसारे, सही में है मन क्यों क्यों रूठे किनारे। तो उन्होंने इस गाने को कंपोज किया, सर देखिए छोटी सी बात है पर उन्होंने मेरे सामने कंपोज किया, और मैं ऐसे इंस्पायर हो, इनलाइट हो गया, मुझे लगा कि भाई ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो गाना ऐसा कुछ था।

0: क्यों रूठे किनारे। तो ये गाना मुझे लगा कि भाई ये तो इतना बढ़िया काम है। तो फिर मैं आया उधर से वर्कशॉप के बाद, मैंने कुछ दिनों में कुछ 4-5 गाने बनाने की कोशिश की है और लिखने
1: क्या
0: भी शुरू
1: बात
0: किए,
1: है।
0: क्योंकि मैं पढ़ता था भावे में, लाइब्रेरी में पढ़ता था, बहुत सारे कवियों को मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने कुछ कुछ गाने लिखने शुरू किए।
1: कंपोज करना शुरू किया या लिखना शुरू
0: लिखने
1: किया?
0: भी लिखना दिखता तो मैं कविताएं था ही, पर मैंने कंपोज किए फिर 4-5 गाने। और फिर मैंने भोपाल में आके स्कूल के बाद मैंने बोला सर से कि सर मैं एक 5-6 गानों का, 7-8 मिनट का, 15-20 मिनट का एक शो करना चाहता हूँ।

0: हूँ। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पर ये ऐसी परंपरा बनाओ कि हर सैटरडे को कोई एक बंदा परफॉर्म करेगा। तो मैंने कहा हाँ, तो सर उसकी शुरुआत मैं ही करता हूँ अगले।
1: रुको, यहां एक गाने की जगह बनाते हैं, क्योंकि बहुत दिलचस्प दास्तान है। एक गाना सुनते हैं, उसके बाद ये दास्तान
0: हाँ
1: सुनेंगे।
0: पक्का चलेगा
1: तो
0: सर।
1: बताओ यहां कौन सा गाना होना चाहिए देवेंद्र?
0: ओ साथी रे,
1: क्या बात है,
0: ओमकारा का गाना,
1: ओमकारा का गाना
0: ओमकारा
1: है।
0: का गाना है
1: बहुत
0: कि बहुत ही
1: शानदार
0: सुंदर
1: गाना है,
0: गाना है, बहुत ही
1: बहुत शानदार
0: सुंदर
1: गाना
0: गाना
1: है।
0: है।

0: ये गाना हमने ओंकारा फिल्म का सुना देवेंद्र, आप बता रहे थे कि हर शनिवार को ये परंपरा शुरू करो कि कोई परफॉर्म करेगा।
1: हाँ,
0: तो इसके आगे क्या हुआ?
1: तो मैंने कुछ गाने बनाए और मैंने परफॉर्म किया, तो वो गाने परफॉर्म करने के बाद कुछ बुंदेलवी गाने थे, कुछ ऐसे कुछ गाने थे, और वहां पे अगले नाटक को डायरेक्ट करने के लिए एक डायरेक्टर आए हुए थे, उनका नाम था वीके शर्मा। तो वीके सर ने मेरे को देखा परफॉर्म करते हुए, तो उन्होंने कुछ नहीं सोचा, उन्होंने मेरे शो के बाद बोला कि अगला मेरा जो शो होने वाला है उसका म्यूजिक तुम करोगे। तो वो मेरा पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उस नाटक का नाम था अपना अपना भाग। हाँ, अपना अपना भाग का मैंने पहला गाना है, वो ऐसा कुछ गाना था, एक सुना देता हूँ ऐसे करके। सुबह का भोला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, सुबह का भूला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, फिर से जन्म हुआ है उसका, फिर से मिला एक मौका है, मेहनत करके भाग्य जगा ले तुझको किसने रोका है, सुबह का भूला जीरो का दिल हीरो बन के लौटा है। तो एक फेलियर आदमी की कहानी थी कि वो फेल हो गया था, फिर वो कैसे हीरो बन के लौट के आया है, उसके ऊपर हमने ये नाटक, और ये पहला नाटक था जिसके लिए मैंने म्यूजिक बनाया था, उसके बाद तो ये लंबा सिलसिला है और फिर
0: म्यूजिक का सिलसिला
1: चालू हो गया। फिर उसके बाद मैं पास आउट हुआ, और फिर वीके सर ने बोल दिया कि भाई तू पास आउट होके दिल्ली आ जाना, मेरे ग्रुप में काम करना।
0: अच्छा,
1: तो एक ब्रिज में लिया कि मुझे दिल्ली जाने का मौका मिल गया, क्योंकि मुझे दिल्ली ही पहुंचना है
0: डेस्टिनेशन। वो बोर्ड
1: वो तो छूटे नहीं है, वो रिकॉर्डिंग तो छूटे नहीं है।
0: हाँ,
1: वो तो मैं मुझे जाने थे स्कूल, उधर हुआ नहीं है। जिस समय मैंने एमपी स्कूल ड्रामा के लिए ऑडिशन किया था, उस समय मैंने एनएसडी का भी ऑडिशन किया था, पर एमपी स्कूल ड्रामा मेरा हो गया। और देने गया इंटरव्यू, तो उन्होंने बोला कि भोपाल में खुद एक ड्रामा स्कूल खुला है, भोपाल में काम करते हो, तो भोपाल में आपने नहीं दिया? मैंने बोला मैंने दिया था। तो उन्होंने क्या हुआ? मैंने कि हो गया। तो उन्होंने बोला पहले वहां पढ़ के आओ।
0: अरे
1: मैंने कहा अरे यार। तो फिर मुझे पढ़ने को वहां पे मौका मिला, और फिर मैं जुलाई में पास आउट हुआ था। 4 अगस्त 2012 को मैं दिल्ली आ गया था वीके सर के ग्रुप में काम करने के लिए, और फिर मेरे को 14 में मेरा सिलेक्शन हुआ।
0: ओके।
1: और तो उसके बाद मैंने दिल्ली में लगातार काम किया, दिल्ली में काम किया।
0: 14 में एनएसडी में सिलेक्शन
1: हो गया,
0: और वहीं वो
1: धुरंधर जी से मिलना हुआ मेरा।
0: मिले धुरंधर जी?
1: धुरंधर जी उस समय तक थे, धुरंधर जी पर वो मुझे भूल चुके थे तब तक।
0: हाँ।
1: मैंने बोला आपको याद है एक बच्चा आया था, आपने मुझे बोला था कि तेरा नहीं हो पाएगा, ऐसे मनगढ़ंत कहानी सुना रहे। वो प्यार करते थे, वो थोड़ा सीनियर जैसे थे ना, जैसे बुजुर्ग कैसे होते हैं, तो ऐसे थे वो, क्योंकि वो ऐसा कल्चरल ग्रुप है, एक्टिविटी है, तो वहां पे गार्ड गार्ड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता जैसे दुनिया में होता है
0: जी।
1: तो वो ऐसे होता है कि अरे आप दादा हो, मतलब प्यार मिलता, परिवार के सदस्य हैं, सीनियर सदस्य हो आप, तो उस तरह से। तो धुरंधर जी से काफी लंबा समय तक उनसे प्यार रहा है, और फिर वो रिटायर्ड हो गए, तो अब मिलना कम होता है, पर मैं दुआ करता हूँ जहाँ भी हूँ, बहुत ही अच्छे थे वो।
0: एनएसडी ने आपकी दुनिया को कितना बदला?
1: सो एनएसडी में भी मैं एक्टिंग करने गया था, मैंने एक्टिंग करनी थी मुझे, और मुझे शौक था एक्टिंग करने का, और मैंने पहला एक बड़ा नाटक मैं लीड रोल किया। उसके पहले तो क्योंकि मेरी भाषा बहुत खराब थी, एमपी स्कूल ड्रामा में मैं नाटकों में रोल करता था, एक नाटक में 6 रोल करता था, और मेरे डायलॉग किसके कैसे होते थे, छोटे छोटे रोल होते थे, बंदूक किसके पास है, मैं बोलता राजगुरु के पास, मैं डायलॉग खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरा रोल भी खत्म, मेरी भाषा इतनी खराब थी।
0: अच्छा,
1: क्योंकि मेरे
0: लेकिन ये फिर भाषा पर काम कैसे किया? ये
1: हाँ,
0: बहुत
1: मैं बता रहा हूं कि मैं ये कविता पढ़ते पढ़ते मैंने पहली बार शामिल बोलना शुरू किया था। शामिल बोलना शुरू किया पहले, क्योंकि मैं शामिल बोलता था, शेक्सपियर बोलता था।
0: हाँ।
1: तो लोग हंसते थे।
0: हाँ।
1: तो मुझे लगा कि अरे यार ये तो मैं बहुत बड़ा मसला है।
0: हाँ।
1: तो मैंने भाषा पे काम किया, दोस्तों ने मुझे हेल्प की। हाँ। मुझे लगातार टोका, मुझे समझाया, और फिर मैं कॉन्शियस हो गया उसको लेके।
0: हाँ।
1: मैं उसको लेके कॉन्शियस हो गया कि भाई अच्छा अच्छा मैं गलत बोलता था।
0: शक को सा बोल रहे हो,
1: हमेशा ही बोलता था। तो पहली बार मैंने ये कविता जो राजेश जोशी की बहुत पॉपुलर कविता है, बाद में मैंने उसको कंपोज भी किया।
0: हाँ।
1: जो हमारे बैंड का मंडी हाउस द बैंड, हमारा जो बैंड है उसमें गाना है ना।
0: हाँ।
1: जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे।
0: हाँ।
1: तो शामिल मैंने पहली बार शब्द बोला था जिसमें मैंने सा को सही बोला था।
0: हाँ।
1: शामिल बोला था, मेरे दोस्त चौंक गए थे कि भाई बोल दिया, यही तो बोल रहा था इतने दिन से तुमसे, यही तो बोलवाना चाह रहे थे हम।
0: ओके ओके।
1: तो ये पहली बार ऐसे भाषा पे काम किया, और जब मैं पहली बार इसमें एनएसजी आया और मैंने एक बहुत बड़ा रोल किया लोअर डेप नाटक में, दोबारा हुआ एनएसजी में, और उसमें मैंने साचिन का रोल किया, और डायरेक्ट कर रहे थे अनुरुद्ध खुटवर सर, और मेरा बड़ा नाम हुआ उस नाटक से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोई लड़का आया, और 2-2.5 घंटे के नाटक में 1.5-2 घंटे कम से कम स्टेज पे है, और लगातार बोलना है, और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट, कुछ भी चीज जो मैं नहीं करता था सब उसको करना है, मैनरिज्म पकड़ने की कोशिश की, और लंबे अंतराल के बाद वो नाटक बहुत अच्छा

0: हुआ, पर जैसे ही मैं सेकेंड ईयर में गया और उस समय मुझे समझ में आया कि यार मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जिन लोगों से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर मैं एक्टिंग मैंने ले ली तो उनकी कहानियाँ कौन कहेगा। तो फिर मैंने वहाँ से अपना रुझान बदला और मैंने डिज़ाइन एंड डायरेक्शन में अपने आप को कोर्स लिया। सेकेंड ईयर से आप स्पेशलाइजेशन करते हो तो वो लिया और फिर मैं उस तरफ आ गया। और फिर मैंने अपनी कहानियाँ लिखनी शुरू की, अपनी बात लिखनी शुरू की, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ उस ज़मीन की सच्चाई को लिखना शुरू किया, सोसाइटी के पे क्वेश्चन करना शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैंने ठीक किया, क्योंकि मैं अभी भी एक्टिंग तो मैं कर ही लेता हूँ, मेरे को लोग प्यार करते हैं और मेरे को पता ही है कि मैं डायरेक्शन के हिसाब से जो मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्रेशर नहीं रहता क्योंकि मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो मैं एक्टिंग भी बहुत सरल तरीके से करता हूँ। लोग मेरी एक्टिंग की तारीफ भी कर देते इस बहाने कि भाई तुम लोड नहीं लेते,
1: बिल्कुल।
0: तुम्हारी एफर्टलेस का मैं दिखती है। तो ऐसे करके शुरू हुआ पूरा
1: तो
0: पूरा।
1: फिर दिल्ली में कौन से बड़े नाटक इस दौर के बाद किए आपने?
0: अभी दिल्ली पहुंचा उस दौर के बड़े नाटक हुए थे, विरासत एक नाटक किया था अनुराधा कपूर मैम ने, बहुत बड़ा लेवल पे वो नाटक किया था जिसका बहुत नाम हुआ। उस समय बंसी दादा भी नाटक करते थे,
1: बंसी कॉल।
0: बंसी कौल जी भी नाटक करते थे, एनएसडी में भी उनके साथ मैंने एक नाटक किया जिसका नाम था खेल मंडी खेल, उसका म्यूजिक मैंने बनाया।
1: मुखौटा।
0: हाँ, तो वो मूवमेंट थिएटर करते थे, लार्ज एंड लाइव थिएटर करते थे, और वो फार्स कॉमेडी करते थे, वो कन्विक्शन के साथ कराते थे, वो बहुत बढ़िया काम था। तो उनके साथ भी काम करने का मन, त्रिपुराई शर्मा जी का नाम उस समय बहुत था और बहुत उनके साथ नाटक किए हम लोगों ने और बहुत नाटक देखे उनके, और बाहर भी दिल्ली के जो ग्रुप्स थे उनके साथ भी काफ़ी नाटक देखे। एक नाटक देखा था मैंने वाटर स्टेशन, जो कि साउथ का नाटक था, और उस समय भारंगम होते थे तो भारंगम से भी बहुत सारे नाटक आते थे, दुनिया के सारे नाटक, बहुत सारे नाटक उस समय
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: देखे हमने। अभिलाष पिल्लई सर के नाटक देखे थे हमने, और बहुत अलग अलग तरीके के, बहुत इंटरनेशनल लोगों से मिलना हुआ, पूरे देश के अलग अलग जगह के लोगों के, अलग अलग भाषाओं के लोगों से मिलना हुआ, और पावरफुल लड़कियों से मिलना हुआ जो कि अपनी बात बहुत स्ट्रांगली कह पाती हैं और जो सोसाइटी में स्ट्रांगली अपनी प्रेजेंस को प्रूव करती हैं और वो दिखाती हैं कि वो किसी से कम नहीं है, इंटेलेक्चुअली और क्रिएटिवली भी वो किसी से कम नहीं है। तो उन टीचर्स से ज़्यादा हम बैचमेट्स से सीखते हैं। तो
1: वहां
0: हमने,
1: से फिर मुंबई कैसे आना हुआ?
0: मैं पास आउट हुआ 17 में, और फिर मेरे पास एक कॉल आया बहुत बड़े डायरेक्टर का, क्योंकि मैंने उस समय मेरा डिप्लोमा हुआ था, डिरेल मैंने किया था, वो नाटक उस साल का बहुत बड़ा नाटक बन गया और वो थिएटर ओलंपिक हुआ, उसकी क्लोजिंग में हुआ, वो इतना बड़ा नाटक था, उसके 1,000 लोग देखते थे, और वो मैंने ही लिखा था, डायरेक्ट किया था, डिज़ाइन किया था, और एमपी छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे वो मैंने बनाया एक नाटक कि वहाँ से एक रेल की पटरी निकलती है और वहाँ पे एक गार्ड रहता है और वहाँ पे एक फाटक है और उस बंदे ने किसी बंदे को किडनैप कर रखा है, उसकी कहानी थी पूरा, ऐसे ओपन स्पेस में करता था मैं। तो उस नाटक में एक गाना था, तो वो गाना और उसके काफ़ी गाने ऐसे पॉपुलर हुए और वो मैंने रिकॉर्ड किया, तो दोस्तों ने मुझसे मांगे तो मैंने दे दिए किसी को, तो कुछ पत्रकार दोस्तों को भी दे दिया, उन्होंने एक गाना किसी डायरेक्टर को सुना दिया, काफ़ी बड़े डायरेक्टर थे, उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैंने उनके साथ फिर काम नहीं हो पाया, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि तू बम्बई आ जा और मैं हम काम करेंगे। वो बहुत बड़ा नाम था वो डायरेक्टर का, और मैं ऐसे चमक गया। रात का टाइम था, 12 बजे के आसपास एनएसडी से पास आउट होने के पहले की बात है, कुछ दिन बचे हैं, 15 दिन बचे हैं, और मेरे पास एक कॉल आता है, कुत्ते भौंक रहे हैं, हेली रोड पे मैं चल रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ में, और एक कॉल आया, उन्होंने बोला कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, मैंने बोला कि मैं सर मैं समझा नहीं हूँ, उन्होंने बोला फलाना फलाना बोल रहा हूँ, सर सर वे कुत्तों की बहुत भौंकने की आवाज़ म्यूट हो गई है, मेरे दोस्त आगे निकल चुके हैं, आगे निकल चुके हैं और मैं वहीं खड़ा हुआ हूँ, कुत्ते मेरे आसपास पहुंचे, मैं सुनाई देना बंद हो गया मुझे वो, मैंने कहा अरे हाँ सर, अरे सर मैं तो मर जाऊंगा सर, क्या हो गया सर, मैं आप बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ, तो आ जाना मुंबई और अपन मिलते हैं, कुछ काम करते हैं। फिर मैं आया मुंबई, उनसे मिलना हुआ, पर वो काम नहीं बन पाया, अभी तक मैंने उनके साथ काम नहीं किया, पर उम्मीद है कि कभी ना कभी काम करेंगे। पर फिर ऐसे में मुंबई आ गया।
1: और यहां से फिर मुंबई में काम का सिलसिला शुरू हुआ।
0: हाँ, मुंबई में काम का सिलसिला तो सर ऐसे ही शुरू होता है कि 3 महीने तो मैं समंदर पे जाके बैठा, क्योंकि पहली बार समंदर देखा था और पता ही नहीं रहता था जाना किधर है, पर ये बता था कि वहाँ हर हाल में पहुँचना है, जहाँ जाने का ख्वाब देखा है, तो उसी तरफ बढ़ने की कोशिश करते थे, निकलते थे। फिर एक नाटक बना लिया, क्योंकि कोई काम नहीं देगा तो क्या करोगे, फिर मैंने एक नाटक बना लिया कांजी हाउस, जो मैंने ही लिखा था, और वो भी उसी बुंदेलखंड पृष्ठभूमि पे, वो शुरू ऐसे होता था, एक आकाशवाणी का छत्र वो केंद्र है। हाँ, वो क्योंकि रेडियो का बंदा था, तो रेडियो पे कोई न्यूज़ चल रही है और आज शाम को 4-7 बजे उसका मैंने अनाउंसमेंट ऐसे बनाया था, इतने बजे नाटक होने वाला है जिस इस पृष्ठभूमि पे है, ऐसे करके उसमें ये अभिनेता काम कर रहे हैं, ये उसमें इस तरह के गाने, इस तरह का म्यूज़िक है। तो कांजी हाउस में उसको बहुत प्यार मिला, मैंने उसके 25 शो किए, और वो फिर कोविड लग गया, हम पृथ्वी करने ही वाले थे, कोविड लग गया, फिर वो पूरा का पूरा बंद हो गया नाटक। फिर अभी बहुत समय बाद मैंने एक बड़ा नाटक, मतलब कम लोगों के साथ में एक बड़ा नाटक बनाने की, बड़ी बात के साथ बनाने की कोशिश की है, जिसका नाम है बहुत ज़ोर से प्यार लगा।

0: है जो अभी लगातार हो रहा है, और
1: उसका एक गाना सुनाओ यार।
0: उसका टाइटल सॉन्ग सुना दूंगा मैं आपको।
1: बिल्कुल
0: हाँ, सुनाता हूँ मैं आपको। उसका एक गाना है जो टाइटल सॉन्ग है, मैं एक इसकी छोटी सी गंभीर बात आ देता हूँ कि
1: बिल्कुल
0: एक छोटा सा सेंटेंस जिस उम्र में मैं पढ़ता हूँ, छोटी उम्र में, लाइक मैं अगर 13-14 साल का हूँ, 12-13 साल का हूँ, उस समय कोई एक कोई इंसान, ऐसा इंसान जिसके होने से आप चमकते हो, जिसके होने से आपको खुशी होती है, जिसके बगल से गुजरने से आपको कोई आपका क्रश है, और वो कोई एक ऐसी बात कह दे, एक सेंटेंस ऐसा बोल दे, उस सेंटेंस का असर कितना समय रहता है और वो सेंटेंस आपकी पूरी दुनिया कैसे बदल सकता है, वो एक सेंटेंस की कहानी है ये एक तरीके से। अगर वो नहीं होता तो ये लड़के की जो जिंदगी है, जो गुड्डू नाम का जो कैरेक्टर है, उसकी जिंदगी कुछ और ही होती। उस घटना ने उसकी जिंदगी बदल के रख
1: बदल
0: दी,
1: दी।
0: बदल दी। उस पर एक कहानी है। हर किसी की जिंदगी में ऐसा होता है। एक संवाद कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, भाषा में कितना पावर है, और अगर वो मीन करके, अगर वो सच में इंटेंसिटी के साथ बोला गया सेंटेंस है, संवाद
1: वो
0: है,
1: क्या कर
0: तो वो
1: सकता है।
0: क्या बदल सकता है, वो तबाही ला सकता है। तो वो कहानी है। अब ये गाना तो थोड़ा कमर्शियल गाना है क्योंकि हमारा नाटक भी कमर्शियल है, पर बात वही है कि वो फोक से शुरू होके ऐसे कमर्शियल की तरफ बढ़ता है, क्योंकि
1: ओके
0: वो कैरेक्टर भी ऐसे छोटे गांव से निकल के कहाँ कहाँ पहुंचता है, उसकी कहानी है। सो गाना है। अब कंट्रोल नहीं होता, अब बर्दाश्त के बाहर है, इसको कोई रोक सके, किसमें इतना पावर है, सीने के इस पार से लेके सीने के उस पार लगा है, बहुत जोर से प्यार लगा है,
1: क्या
0: पै
1: बात
0: पै
1: है।
0: पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, पै पै पै पै पै, बहुत जोर से प्यार लगा है, सीधे लड़के के हाथों में इलीगल हथियार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है,
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जहन की हर एक चोट थी गायब, उन होठों में होठ थे गायब, हाथ थे गायब, बात थी गायब, दुनिया की औकात थी गायब, गायब पूरा बदन हुआ था, मैं तो उसका कफन हुआ था, बचने को बस सांस बची थी, फिर भी आधी रात बची थी,
1: वाह,
0: सुबह उठा तो कान के नीचे, सुबह उठा तो कान के नीचे, गर्दन पर स्कार लगा है, बहुत जोर से जोर से जोर से प्यार लगा है, पा पा पा पा पा, बहुत जोर से प्यार लगा है।
1: क्या बात है,
0: ये
1: क्या
0: टाइटल
1: बात
0: सॉन्ग
1: है,
0: है।
1: बढ़िया गाना है।
0: जी जी
1: कैसा
0: जी
1: रिस्पॉन्स है इस नाटक का?
0: सर, जो भी देख रहा है उनको बहुत पसंद आ रहा है, और क्योंकि म्यूजिकल है तो लोग उससे और जुड़ते जा रहे हैं, और अभी हमने लगातार 5-6 शो किए हैं, हाउसफुल शो किए हैं, और हमें भी बहुत शो करने हैं, पूरे हिंदुस्तान घूमना है। तो जो भी श्रोता जो सुन रहे हैं हमें, अगर वो चाहें तो हमें बुला सकते हैं, और दो परफॉर्मेंस हम लगातार कर रहे हैं। एक तो हमारे मंडी हाउस बैंड है जो कि ऐसे गाने हैं, वो सारे गाने ओरिजिनल गाने हैं, इतने बड़े बड़े गाने हैं जो आपने फिल्मों में भी नहीं सुने होंगे, और रोहिणी ने ऐसा बोला हुआ है, मैंने नहीं बोला हुआ है तो बहुत अच्छे गाने हैं और बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं, और इसे कोम्यून ने प्रोड्यूस किया हुआ है, और हमें इसे बहुत करना है, और अभी हम कर रहे हैं, अभी आगे हमारे शो हैं, हम पृथ्वी में भी करने वाले हैं, NMACC में भी कर रहे हैं, तो अभी बहुत प्यार की उम्मीद है, अभी बहुत प्यार चाहिए सर, बहुत नाम चाहिए, क्योंकि एक ऐसी जगह से निकलना है ताकि बहुत सारे लोगों को ताकत मिले और एक थोड़ा एग्जाम्पल बने कि हाँ कहीं से भी सपने देखे जा सकते हैं।
1: अभी वेब सीरीज आई थी बैंड वाले,
0: जी जी
1: वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? स्वानंद है उस वेब
0: जी
1: सीरीज
0: जी
1: में।
0: स्वानंद दादा हैं, और अंकुर तिवारी जी ने को डायरेक्ट किया है, को क्रिएटर है वो, और अक्षय वर्मा जी ने उसको डायरेक्ट किया। उसमें मेरे कैरेक्टर नाम है जिगी। जिगी एक कैरेक्टर है जो एक लड़की को प्यार करता था, पर वो लड़की प्रोफेसर की बेटी थी, इसलिए प्रोफेसर को पता चला कि मेरी लड़की को के पीछे पड़ा हुआ है ये, तो उस लड़की को अपने घर बुलाया राखी वाले दिन और
1: हाँ
0: उससे राखी बनवा दी। तो वो जिगी कैरेक्टर ऐसा है कि वो राखी भाई बना हुआ बेचारा, अब
1: बेचारा।
0: वो क्या करे, उसके दिमाग में बहुत है, वो प्यार भी करता है पर उसको बहन मानता है वो, अब उसको वो पीछे घूमता रहता है 24 घंटे, वो अपनी थार से
1: हाँ
0: उसके पीछे घूमता है, बहुत मतलब लोगों ने मुझे बहुत उसके लिए प्यार इसलिए दिया क्योंकि लोग उसमें कह रहे हैं कि तुमने उसमें बिल्कुल एक्टिंग नहीं की,
1: हाँ
0: क्यों, क्योंकि मेरे को लगा कि मैं उसमें क्या ही एक्टिंग करूंगा, वो मैंने उसको समझा बस कैरेक्टर को, क्योंकि समझाने वाले लोग भी अच्छे थे, स्वानंद दादा भी थे, अंकुर जी भी थे, अक्षय वर्मा जी भी थे, और आसपास के लोग, रोविंद सर उसमें काम कर रहे थे, हमारे गुरु जी रोविंद सर
1: बिल्कुल
0: काम, आशीष विद्यार्थी जी भी उसमें काम कर रहे हैं,
1: वाह,
0: तो काफ़ी लोग उसमें थे, तो उसमें बहुत ही अच्छा था, और उसमें मेरा एक गाना भी था, मैंने गाने बनाने के लिए पहले उससे जुड़ा था, गाना उसमें सब मोह माया नाम का एक गाना मैंने बनाया था।
1: सुनाओ ना।
0: अच्छा, वो गाना कुछ ऐसा था, वो देखो सब लूप में फंस गए, सभी लिटिल विट चूक में फंस गए, रोटी से परहेज किया है।

0: पिज्जा बर्गर सूप में फंस गए, वो देखो सब लूप में फंस गए। बुजुर्गों ने फरमाया है प्यारे सब मोह माया है। अरे टैटू भी गुदवाया है, डूड सब मोह माया है।
1: वाह वाह,
0: बाकी काफी ऐसे फन सॉन्ग है, आम आदमी का गाना है कि बेचारा क्या
1: बिल्कुल
0: चाय
1: बिल्कुल,
0: चढ़ा के दूध में फंस गए,
1: वाह वाह
0: पी के कई तो फूंक में फंस गए,
1: वाह,
0: पिचकारी से खेल रहे थे नजरों की बंदूक में फंस गए।
1: क्या
0: उसके
1: सुंदर,
0: लिरिक्स ऐसे हैं, मतलब
1: वाह वाह वाह। देवेंद्र, बहुत अच्छा लगा आपसे बात
0: मेरे
1: करके,
0: को बहुत खुशी
1: और
0: हुई
1: सबसे
0: आपसे।
1: अच्छी बातें वो होती हैं जिनमें आगे के लिए हमेशा गुंजाइश छोड़ दी जाए।
0: जी जी जी
1: तो फिर कभी मिलेंगे
0: हंड्रेड
1: और
0: परसेंट सर,
1: आगे और बहुत सारी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती
0: बहुत
1: बनाने
0: बहुत
1: के लिए।
0: शुक्रिया। मेरे रेडियो का मेरी जिंदगी में बहुत ही योगदान रहा है, और आप यकीन नहीं मानोगे मैंने बहुत सुना है विविध भारती। मैंने सुनता था आकाशवाणी का टाइम खत्म होता था, फिर बोलते थे आप विविध भारती से कनेक्ट करते हैं, कर
1: हाँ
0: दिया जा रहा है आपको, फिर वहां से आप सुनते थे प्रोग्राम लगातार। और
1: बिल्कुल,
0: बहुत ही एक सादगी है, एक सरलता है, एक मोहब्बत इतना नहीं एक रेडियो में, और
1: बिल्कुल
0: मैं बड़ा मिस करता हूँ इसको। और मैंने तो सुना ही, मैंने बताया कि वो रेडियो के गाने मेरे जहन में चलते रहते थे, बैरन होगी जिंदगी मैं कहाँ से कहूँ, जैसे गाने मैंने सुन सुन
1: क्या
0: के बड़ा
1: बात,
0: हुआ हूँ मैं। सो मेरे साथ एक बड़ी खासियत जुड़ जाती है मेरे साथ, कि मैंने थोड़ा म्यूज़िक और जो लोक है, जो फोक है, वो काफ़ी मैंने जिया है और मैंने उसको महसूस किया है। और दूसरा, मैं शहर भी रहा हूँ, तो मैंने हर तरह की शहर से होके पानी पी के आया हूँ, तो मेरे लिए ये काम कर जाता है। और रेडियो का मेरे लिए बड़ा योगदान है, कि वो
1: क्या
0: गाना
1: बात
0: नहीं
1: है,
0: सुनता, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है तो मेरे ख्याल ही नहीं आता दिमाग में, और मैं आज आपके
1: वहां
0: साथ
1: से
0: बैठा
1: यहां
0: हुआ
1: तक
0: था।
1: का
0: और
1: सफर है।
0: हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है अच्छे लोगों से बात करके। और आपको तो मैं पढ़ता आया हूँ, मैं आपकी किताब भी पढ़ी है शैलेंद्र के ऊपर, और मुझे स्वानंद दादा ने दी थी वो पढ़ने के लिए, तो मैं उसको भी पढ़ता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपसे लगातार जुड़ा रहूंगा, आपसे बात करता
1: बिल्कुल
0: रहूंगा, विविध भारती से जुड़ा रहूंगा।
1: शुक्रिया।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
1: यूपी वाले

आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता देवेंद्र अहिरवार से यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिंदल, संपादन सहयोग रीमा जोशी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही पलों में शाम के 5 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। वे आज अमेरिका से कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मशीनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। श्री मोदी ने कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नव नियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का अथक प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। वहीं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ

0: स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। हालांकि भारत दुनिया की एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जिसने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावट के शुरुआती 76 दिनों के दौरान खुदरा ईंधन की कीमतों को लगभग अपरिवर्तित रखा है। सूत्रों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के बीच भारत वैश्विक तेल संकट का असर स्वयं पर लेता रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है। लखनऊ में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। सबसे पहले आइए सुनते हैं बेटा फिल्म का गीत, जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण ने। समीर के बोल और संगीत है आनंद मिलिंद का।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: इस समय आकाशवाणी चंडीगढ़ से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए अब सुनते हैं आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में सागर फिल्म का गीत। जावेद अख्तर के बोल और संगीत है, आर डी बर्मन का

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। वर्कप्लेस के टॉक्सिक माहौल को ऐसे करें दूर, मेंटल हेल्थ रहेगी बेहतर। खराब माहौल से कर्मचारियों के काम पर भी बहुत असर पड़ता है। वर्कप्लेस में बढ़ते टॉक्सिक माहौल का मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। खराब माहौल से तनाव को दूर रखने के लिए ऑफिस में फन एक्टिविटीज में भाग ले। मन को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। इस भागम भागी वाली जिंदगी में हर कोई कभी न कभी तनाव के दौर से जरूर गुजरता है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कॉम्पिटिटिव स्तर पर तनाव लेना अच्छा होता है, लेकिन यदि तनाव ज्यादा दिनों तक रहे तो यह आपके लाइफस्टाइल को बुरी तरह से प्रभावित करता है। बदलते दौर में कई बार ऑफिस के काम के चलते भी लोगों में तनाव आ जाता है और वर्कलोड का स्ट्रेस मेंटल हेल्थ पर असर डालने लगता है। अगर आप मानसिक तौर पर मजबूत नहीं रहते तो इससे आपके ऑफिस वर्क पर भी सीधा असर पड़ता है। पिछले कुछ समय में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां तेजी से बढ़ी है। मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिस पर खुलकर बात करना जरूरी है। अगर वर्कप्लेस में मानसिक स्वास्थ्य की बात की जाए तब ये और भी अधिक जरूरी हो जाता है। सभी कार्यस्थल पर एक ऐसा माहौल बनाने की जरूरत है जो मानसिक तौर पर कर्मचारियों को रिलैक्स फील करे। अगर वर्कप्लेस का माहौल बेहतर है तो काम का प्रेशर भी आसानी से फेस किया जा सकता है। वर्कप्लेस का खराब माहौल मेंटल हेल्थ पर असर डालता है और इससे आप स्ट्रेस, एंग्जाइटी और चिंता का शिकार होने लगते हैं। हालांकि कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे वर्कप्लेस पर मेंटल हेल्थ का ध्यान रखा जा सकता है। हेल्थी बाउंड्रीज क्रिएट किए जा सकते हैं, जैसे आपको हर काम या फिर हर बात पर हाँ कहने की जरूरत नहीं है। आपको ये सीखना होगा कि आप कैसे शांत स्वभाव से दूसरों को कब और कैसे एक प्रोफेशनल की तरह न बोल सकते हैं। दैट मीन्स यू हैव टू लर्न टू से नो, न बोलना सीखे। ये एक बेहद जरूरी स्किल है। काम के बीच ब्रेक जरूर ले दोस्तों। कई लोग ऑफिस में काम के प्रेशर में लगातार घंटों बैठकर काम करते हैं। इसका मेंटल हेल्थ पर सीधा असर पड़ता है। इसीलिए जरूरी है कि काम के बीच में माइक्रो ब्रेक जरूर ले और इस दौरान कुछ शारीरिक गतिविधि करें। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ जिम्मेदारी मिलते ही लेकिन वह उस काम को ठीक से नहीं जानते हैं और इस वजह से वह इसे लेकर तनाव में रहते हैं। ऐसी स्थिति में आप किसी से मदद मांग सकते हैं। मदद मांगने से आप कमजोर साबित नहीं होंगे, हालांकि इससे आपके लोगों के बीच में मेलजोल जरूर बढ़ेगा जो आपको भविष्य में मदद करेगा। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। बीइंग कॉन्फिडेंट, सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भरता, ये बेहद जरूरी है कि इस भागम भागी और जिम्मेदारी भरी जिंदगी में अपने लिए समय जरूर निकाले। कई लोग काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपने बारे में सोचना ही बंद कर देते हैं। हर दिन कुछ घंटे खुद के लिए निकाले। फन एक्टिविटीज में भाग ले। पार्टिसिपेट इन सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अपार्ट फ्रॉम योर प्रोफेशनल वर्क। कई लोग वर्कप्लेस में काफी रिजर्व होते हैं। ऐसी आदत कई बार कर्मचारियों को अकेला बना देता है। तनाव को दूर रखने के लिए ऑफिस में फन एक्टिविटीज में हिस्सा ले। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे।

मानसिक तौर पर मजबूत रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे। आप खुद में ऐसी आदतों को डालें जो आपको आत्मनिर्भर बनाए। अच्छी फिटनेस के लिए जरूरी है कि हर दिन एक्सरसाइज या फिर योगा, मेडिटेशन, ये सब कर सकते हैं। एरोबिक एक्टिविटीज है, स्विमिंग है, डांस है, म्यूजिक थेरेपी है, ये सब आप अपनाएं। मन को शांत रखने के लिए ध्यान का सहारा भी ले सकते हैं। मेंटल हेल्थ को लेकर इन दिनों लोग जागरूक होने लगे हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी बेहद जरूरी है। अच्छी सेहत के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, खान पान में परहेज से लेकर जिम में घंटे एक्सरसाइज करने तक आप सब कुछ करते हैं। आप अपने शरीर पर कितना भी मेहनत कर ले, अगर आप मेंटल हेल्थ पर ध्यान नहीं देते तो आप सेहतमंद नहीं हो सकते। मेंटल हेल्थ से अक्सर लोगों को दिमाग के डिप्रेशन जैसी चीजें सामने आती है। रोजमर्रा के छोटे छोटे तनाव के बारे में हम सोचते ही नहीं है। आपको बता दे कि ऑफिस में होने वाले रोज के टेंशन भी आपके सेहत के लिए बुरी साबित हो सकती है। ऑफिस के तनाव का आपके काम पर तो असर पड़ता ही है, आपकी सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। आपको कोशिश करना चाहिए कि ऑफिस में मिलने वाले प्रेशर का आप पर ज्यादा असर न पड़े और आपके आसपास का माहौल खुशनुमा रहे। आइए आज के लम्हे प्रोग्राम में आरजे चेतन आपको बताते हैं कि कैसे आप ऑफिस में भी अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com।

ऑफिस में अगर योगा, मेडिटेशन, डांस या कोई फन एक्टिविटीज हो रही है तो समय बचाने के चक्कर में न पड़े और बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें पूरे ऑफिस को बुलाया गया हो उसमें जरूर शामिल हो। अगर आपको कोई भी बात मानसिक रूप से परेशान कर रही है तो इस बारे में अपने सीनियर से बात करें। आपके बॉस को पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या दिक्कत है। बॉस के जवाब से आप भी समझ जाएंगे कि आगे आपको क्या कदम उठाने हैं। वर्क लाइफ बैलेंस ये बेहद जरूरी है। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाए बिना आपके दोनों ही गाड़ियां पटरी से उतर सकती है। ध्यान रहे कि घर में तनाव का असर आपके काम पर न पड़े। इसी तरह ऑफिस की टेंशन ऑफिस के एग्जिट तक ही आपके साथ रहनी चाहिए। इसके बाहर की दुनिया आपकी अपनी है। वर्क स्टेशन की सजावट, हाउ यू डेकोरेट योर वर्क प्लेस, ये छोटा सा लेकिन बेहद कारगर तरीका है। अपने वर्क स्टेशन पर अपने पसंदी के चीज सजाएं। अपने परिवार वालों के तस्वीर सजा सकते हैं और कोई मोटिवेशनल कोट सामने लगा सकते हैं या आपको चीयर करने में मदद करेंगे। सो ऑल चीयर्स टू लाइफ। विद दिस वी कंक्लूड टुडेस प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट सेगमेंट ऑफ लम्हे। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम माय डियर फ्रेंड्स, बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। इस समय आप हैं विविध भारती चंडीगढ़ के संग FM 107.2 MHz पर।

0: आइए अब सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
1: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
2: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारी मेहमान हैं एजुकेशनिस्ट श्रीमती हरजिंदर कौर। हरजिंदर कौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में।
3: शुक्रिया आपका।
2: हरजिंदर कौर जी, आपके जिंदगी के सफर की हम लोग शुरुआत करते हैं आपके बचपन से, तो आपका बचपन कैसे बीता, कहाँ बीता?
3: कपूर साहब, मेरा जन्म हुआ शहर लुधियाना में, और मेरे फादर साहब का जो रेजिडेंस है वो आज भी जीटी रोड पे स्थित है, और उसी जीटी रोड वाले घर में मेरा जन्म हुआ। मैं वहीं पे पली, पढ़ी और बड़ी हुई, और उसी घर से शादी होकर मेरी डोली गई, और मेरी एजुकेशन जो है वो भी लुधियाना शहर की ही है। मैंने अपनी शुरुआत लुधियाना से ही की, ग्रेजुएशन भी लुधियाना से, मास्टर्स पोस्ट ग्रेजुएशन भी लुधियाना से ही की, और मैंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से शॉर्ट कोर्सेज जैसे कुकिंग क्लासेस हो गई, बेकरी की क्लासेस हो गई, टेबल सेटिंग हो गई, नैपकिन अरेंजमेंट हो गया, फ्लावर अरेंजमेंट हो गया, उसमें फ्रेश फ्लावर अरेंजमेंट और ड्राई फ्लावर अरेंजमेंट, इंटीरियर डेको, ये मैंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से की है। और फिर एमफिल मैंने की है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से। मेरा जो डिसर्टेशन है वो है मेरे गाइड पंजाबी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर प्रभदयाल, तो वो मैंने 13 साल की उम्र से लेके 19 साल के बच्चों की जो एडोलेसेंट एज होती है कि कैसे उनका मानसिक विकास होता है, कैसे उनका शारीरिक विकास होता है, और किस तरह वो अपने मानसिक विकास को शारीरिक विकास के साथ कोऑर्डिनेट करके किस तरह अपनी जिंदगी में डिसीजन लेते हैं, उन सब के ऊपर मैंने होम टू होम जाकर भी ये रिसर्च की है।
2: जी हरजिंदर कौर जी, क्योंकि आप एजुकेशनिस्ट हैं, तो क्या शुरू से आपका सपना था कि आपने शिक्षाविद बनना है, एजुकेशनिस्ट बनना है? कहां से शुरुआत हुई?
3: एक्चुअली मेरे मदर फादर चाहते थे कि भी मुझे वो डॉक्टर बनाए, और मेरे मन में भी कहीं होगा कि मैं डॉक्टर बनूं, और मैंने 10th के बाद प्लस 1 में मेडिकल ले लिया, और खालसा कॉलेज में मैंने एडमिशन ले ली। 3-4 महीने लगाए मैंने, फ्रॉग्स की डिसेक्शन कॉलेज में तो कर ली, लेकिन प्रैक्टिस के लिए जब घर में की, यू वोंट बिलीव इट कि मैंने 15 दिन डिसेक्शन के बाद खाना नहीं खाया। तो मेरी माँ को ये चीज का सहन नहीं हुआ, तो उसने मेरे फादर को बोला कि जैसे बुजुर्ग लोग बोलते थे मदर्स के, पहाड़ च जाए इसकी पढ़ाई, मैंने नहीं इसको डॉक्टर बनाना, मेरी लड़की ने तो 15 दिन हो गए खाना ही नहीं खाया, तो मैंने वो मेडिकल छोड़ दिया। देन आई,
2: ऐसा क्या महसूस हुआ था आपको?
3: उसमें मैं बताती हूँ, जैसे ही वो फ्रॉग को हमारी फैक्ट्री में से, जहाँ वर्कर्स हमारे हाथ धोते थे, तो वो जमीन में एक खड्डा खोया हुआ था, टोड्स होते थे, वो मेरे भाई तो ले आए, जैसे ही उसको मैंने डिसेक्शन बॉक्स में उल्टा करके लगाया तो उसका तो खून इतना निकला, वो मेरे से देखा ही नहीं गया, तो वो फड़फड़ाने लगा, तो वो मेरे मन को नहीं बात अच्छी लगी, तो मैंने वो आइडिया दिमाग से ही निकाल दिया कि मैंने डॉक्टर नहीं बनना। तो मैंने दोबारा से अपनी प्लस 1, तब प्री यूनिवर्सिटी कहते थे, तो मैंने वो शुरू की, और टू माय ग्रेट सरप्राइज मैंने लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया। मेरे पास अब भी उसके अखबारों में जब निकला कि खालसा जी की लड़की ने इतने कॉलेजेस में टॉप किया, मेरे पास वो रिकॉर्ड है। तो मैंने बहुत अच्छे नंबरों में प्री यूनिवर्सिटी की, फिर ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन में भी मैंने फर्स्ट डिवीजन ली, और उसके बाद जैसे शादी की लड़कियों की बात होती है।
2: जी, शादी के बारे में भी आपसे पूछेंगे, लेकिन

0: आप ये बताएं कि एजुकेशनिस्ट बनने के पीछे क्या राज रहा, कहां से प्रेरणा मिली?
1: मेरे मामा जी एक एजुकेशनिस्ट रहे हैं और वो तब मुझे इतना पता था कि भी उनको मास्टर भजन सिंह बोलते थे, तो वो जब भी आते ऐसे अप टू डेट अच्छी अच्छी बातें करना, तो मुझे लगा कि भी ये विद्या देते हैं। हम लोग उनके पास जाते भी थे। एक बार कनीना में उनके बच्चे का जन्मदिन था तो मेरे माम डैड हम लोग सब वहां पे गए, तो मैंने देखा भी सब टीचर्स आए हुए हैं, बड़ा अच्छा अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, बड़ी अच्छी अच्छी लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये सबसे बड़ी एक जिंदगी का समय कि आप एजुकेशन देते हो तो लोगों की जीवन की पद्धति जीने का मकसद ही डिफरेंट हो जाता है। तो तब से मन में कहीं ये बात घर कर गई कि मैंने भी टीचर बनना है
0: जी।
1: और भगवान ने इतनी मेहर की मेरे ऊपर कि मेरे को अब मैं मान से कहती हूँ कि 50 साल का एजुकेशन फील्ड में एक्सपीरियंस हासिल है
0: जी। एक अरसा आपने गुजार दिया टीचिंग में, तो कहाँ कहाँ पढ़ाया आपने, क्या पढ़ाती थी आप?
1: मैं इंग्लिश पढ़ाती थी और सब तरह के बच्चों को मैंने पढ़ाया, बीए वालों को, बीएससी वालों को, बीकॉम वालों को, एमकॉम वालों को, यहाँ तक मैंने इंजीनियरिंग करने वाले बच्चों को, क्योंकि ये एक बेस है, और लॉ करने वाले बच्चों को, फार्मेसी करने वाले बच्चों को, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा विषय है कि जब तक आपको इंग्लिश की प्रॉपर प्रोनंसिएशन, उसका प्रॉपर लिखना पढ़ना बोलना नहीं आएगा, तो मेरे को नहीं लगता कि आप एक सफल स्टूडेंट बन सकते हो। तो वो सब भावनाओं की मैं तब से बचपन से कदर करती हूँ। मैं अपने भाइयों को सुनती थी कि वो फर इंग्लिश बोलते थे, तो मुझे भी लगता था क्या एक दिन मैं भी ऐसा कर पाऊंगी, तो भगवान ने कहीं मेरी नजदीक से सुन ली, तो मैंने वही बात दिमाग में रखी और बच्चों को वो शिक्षा दी
0: जी। तो हरजिंदर कौर जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। यहाँ पर हम आपकी पसंद का एक गीत आपको और अपने सुनने वालों को सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
1: मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: बहुत ही अच्छा गाना है, आइए सुनते हैं।

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, और इस कार्यक्रम में आज हमारी मेहमान हैं एजुकेशनिस्ट श्रीमती हरजिंदर कौर। हरजिंदर कौर जी, आप बताइए कि आपकी शादी किन के साथ हुई, कैसे हुई?
1: कपूर साहब, मेरे जो पार्टनर हैं, हम सफर हैं, वो हैं सरदार अनमोल सिंह। जैसे उनका नाम है, वो जिंदगी के हर पहलू में वैसे ही हैं, अनमोल। यस। और मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी हूँ, लुधियाना में पली बड़ी, स्कूटर होता था मेरे पास, गाड़ी होती थी, ड्राइवर होता था। तो उन दिनों में लाइसेंस लड़कियों को कहाँ घर वाले लेकर देते थे
0: जी,
1: तो ड्राइवर लेकर जाता। मेरे को अब भी मेरी आंखों के सामने ना वो एक जगह आ रही है जहां हम उसको बिठा देते। चाय की दुकान होती थी, पतला सा ड्राइवर था, उसकी जेब में 5-7 रुपए डाल देने और उसको कहना कि भी देख तू यहाँ बैठा रहे, मैं गाड़ी लेके जा रही हूँ, साथ में दोस्त, अगर तूने पिताजी को बताया ना कि आज बेटी वहां पे बैठी तो तेरी कल से छुट्टी। पूछता तो कोई नहीं था, कहाँ गया, अभी कॉलेज गई है
0: जी।
1: तो लेकिन उसको बिठा देना, हमने चले जाना कभी किधर कभी किधर। जवानी का समय था और लुधियाना था, पिक्चरें भी हमने भाग के देखी हैं। जब घर में आना तो सोचना भी नहीं आज नहीं पकड़े जाएंगे, क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है। कॉलेज टाइम गए, पिक्चर विक्चर देखी, वापस आ गए। लेकिन एक बार पकड़े भी गए, कैसे कि माँ ने वो विदाउट स्लीव्स जैकेट पहनी हुई थी, तो उसके अंदर वाली पॉकेट में टिकटे निकले जब माँ उसको धोने लगी
0: जी।
1: तो ऐसी शरारतें भी हम लोगों ने अपनी जवानी में की हुई है। उनकी वजह के कारण जब मैंने बच्चों को पढ़ाया तो बहुत सी बातें कॉलेजेस में हमने उनकी इग्नोर भी की हैं, ये सब बातें
0: जी। तो हरजिंदर कौर जी, आप बता रही थी शादी के बारे में अपनी।
1: शादी का रमेश जी ऐसे है, मैंने ये जब देखती थी ना लाइफस्टाइल को या लड़कों के चाल चलन को, तो ये बात मेरे मन में थी कि मैंने अमीर लड़के से शादी नहीं करनी, मैंने उस लड़के से शादी करनी है जो मेरे साथ समय बताए। तो उनमें से अनमोल जी इज वन ऑफ देम। और अनमोल जी मेरे एक टीचर हुआ करते थे, प्रोफेसर के एस अभिलाषी, और वो गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे हैं, और वो मेरे पापा के बहुत अच्छे मित्र भी रहे हैं, मैं उनकी अच्छी स्टूडेंट भी रही हूँ। और वो हमें ये फिक्शन पढ़ाते थे, अनमोल जी उनके रिश्तेदार थे भी, उन्होंने देखा भी ये लड़की उस लड़के के काबिल है, और ही वॉज इन गवर्नमेंट जॉब। तो उन्होंने बस मेरे को एक बार मिलाया अनमोल जी को, तो अनमोल जी इज अ वेरी हैंडसम सरदार जी, और वो मैं तो बोलूंगी कि वो इश्क मिजाजी को समझने वाले हैं
0: जी।
1: आज भी वो बहुत सुंदर गाते हैं, इतनी उम्र होने के बावजूद भी, और उनकी भी ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पे बहुत साल पहले हीर रिकॉर्ड हुई है, और वो पंजाबी

0: यूनिवर्सिटी में सेनेट की मेंबर रही हैं। जब मैंने इनको देखा तो उनका कद और मेरा कद ऑलमोस्ट बराबर ही है, तो मैंने उनके साथ अपने ही घर में एक फोटो खिंचवाई। मैंने कहा देखूं कि भी कहीं मैं उनसे लंबी तो नहीं।
1: अच्छा, बहाने से आपने फोटो खिंचवाई?
0: हाँ, और फोटो खिंचवाई ये देखने के लिए कि वो मेरे से ऊंचे हैं, वो मेरे पास फोटो आज भी है।
1: तो ये बात आपने उनको बताई अनमोल जी को कभी?
0: अनमोल जी को हाँ मैंने बता दी ये वाली बात, तो वो इस
1: कि आपने सिर्फ कद अपने के लिए फोटो खिंचवाई थी।
0: और अनमोल जी को इस बात का पता है, और उनकी मैं आगे बात बताऊं आपको, उन्होंने ये ठान रखा था कि मैंने लंबी लड़की के साथ शादी करनी है कि कहीं मेरे बच्चे ना छोटे हो। टू माय ग्रेट सरप्राइज एंड अ बिग ग्रेटिट्यूड टू गॉड कि मेरे दो बच्चे हैं, दोनों 6 feet है
1: जी,
0: लंबे हैं दोनों बच्चे, तो ऐसे फिर हमारी शादी हुई। अनमोल जी को मैंने इसलिए प्रायोरिटी पे रखा, मैंने ये एक डिटर्मिनेशन किया हुआ था, अपने को चैलेंज दिया हुआ था कि मैंने बिजनेसमैन के शादी कतई नहीं करनी। बिजनेसमैन कभी पत्नी को समय नहीं देते, बच्चों को समय नहीं देते, माँ बाप को समय नहीं देते, तो जो नौकरी वाले होते हैं उनका टाइम शेड्यूल एक बंधित होता है कि वो 10 बजे ऑफिस जाएंगे, 5 बजे घर आ जाएंगे, और अगर नजदीक है तो लंच के लिए भी आएंगे। और वो मेरे दिमाग में बात अपने घर के माहौल को देख के या बाहर के माहौल को देख के ठाना हुआ था मैंने।
1: जी हरजिंदर कौर जी, आपसे बातचीत का सिलसिला हम यूं ही जारी रखेंगे। यहाँ पर आपकी पसंद का एक और गीत आपको सुनवाना चाहेंगे, तो कौन सा गीत सुनवाएं?
0: मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले।
1: बहुत ही अच्छा गाना है, आइए सुनते हैं।
2: मुझे

0: गीत के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, और इस कार्यक्रम में आज हमारी मेहमान हैं एजुकेशनिस्ट श्रीमती हरजिंदर कौर। हरजिंदर कौर जी, क्योंकि आपको बहुत एक्सपीरियंस है, आपने बताया कि 50 साल से आप टीचिंग कर रही हैं, तो आप हमें ये बताएं कि इन 50 सालों में शिक्षा में क्या बदलाव आया है, क्या महसूस करती हैं आप?
1: देखिए, एजुकेशन में बहुत चेंजेस आई हैं। हमारे जमाने में सिर्फ दो ही डिपार्टमेंट थे कि बच्चे को इंजीनियर बनाओ और बच्चे को डॉक्टर बनाओ, लेकिन विद इन ए स्पैन ऑफ दिस मच लॉन्ग टाइम इतने एवेन्यूज आ गए हैं, हम स्किल की तरफ चले जाएं, हॉर्टिकल्चर की तरफ चले जाएं, एग्रीकल्चर की तरफ चले जाएं, ट्रांसपोर्टेशन की तरफ चले जाएं, फार्मेसी की तरफ चले जाएं, ढेर डिपार्टमेंट्स हैं कि जिसमें बच्चों ने इतनी प्रोग्रेस की है कि वो जिसमें भगवान ने स्किल डाली है वो हाथ के काम के ऊपर एक्सपर्ट बना है, और जिसमें दिमाग डाल दिया है वो दिमाग के काम के ऊपर एक्सपर्ट बना है। और देखिए, एआई का जमाना कहाँ चला गया, ये है तो दिमाग ही, और पहले सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना में था, और आज हर 15-20 किलोमीटर के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज बने हुए हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज बने हुए हैं, स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बने हुए हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज बनी हुई हैं, तो उसमें बहुत बड़ा कुछ आया है, बहुत बड़ा कुछ हुआ है। हाँ, डिपेंड करता है कि हमने अपने किरदार को कहाँ रखना है, हमने अपने शरीर और दिमाग को कोऑर्डिनेट कैसे करना है। सो अ बिग चेंज इज देयर इन एजुकेशन, इट्स नॉट ऑन द डिक्लाइनिंग साइड, इट्स ऑन द बेटर साइड।
0: क्योंकि आज एआई का जमाना है, तो आप क्या समझती हैं कि किस तरह की चुनौतियां एक टीचर को पेश आती हैं पढ़ाते वक्त बच्चों?
1: देखिए, चुनौतियां स्वीकार करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चुनौती को अपने बलबूते के ऊपर स्वीकार करता है तो ही इज ए विनर। अगर वो चुनौती को चुनौती ही नहीं लेता तो वो एक दलिद्री है
0: जी।
1: चुनौती को स्वीकार करना ही एक विजेता की निशानी होती है।
0: हरजिंदर कौर जी, क्योंकि बहुत से माँ बाप, आपने भी देखा होगा अपने टीचिंग प्रोफेशन में, कि जो खुद नहीं बन पाए वो अपने बच्चों को बनाने की सोचते हैं, प्रेशर बहुत रहता है बच्चों के ऊपर, तो आप क्या समझती हैं कि इस तरह का प्रेशर जो है वो जायज है, या माँ बाप को अपने बच्चों के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है उसी में उनको पढ़ने देना चाहिए?
1: मेरे पर्सनल हिसाब से बच्चों के ऊपर पेरेंट्स को किसी भी तरह का प्रेशर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि एक घर में जब से बच्चा बड़ा होता है वो घर के हालात वातावरण से सब कुछ सीख जाता है, तो जब वो एडोलेसेंट एज खत्म करके अपने करियर को चूज करता है तो वो अपने घर के माहौल के हिसाब के मुताबिक, अपने बुद्धि के मुताबिक जो सोचता है उसको वैसा ही करना देना चाहिए। इसके लिए मेरे पास एग्जाम्पल है मेरे अपने बेटे की। मेरा बड़ा वाला बेटा अच्छी सोच वाला, अच्छे बलबूते वाला, फिजिकली स्ट्रॉन्ग बेल बेल्ट वाला बच्चा है। वो पुलिस में जाना चाहता था, लेकिन यहाँ कुछ कमियां होने के कारण, मैं कभी नहीं कहूंगी कि हो सकता है हमारी पेरेंटिंग में कुछ कमियां रह गई हों, क्योंकि हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, वो यहाँ पे उस मुकाम को हासिल नहीं कर सका। मास्टर्स की उसने, इंजीनियरिंग की उसने, क्योंकि उसके ग्रेट ग्रैंडफादर्स आईआईटीएन थे, रुड़की के पास आउट थे। मेरे हस्बैंड साइंस ग्रेजुएट उसने कर ली,

0: वो कहने लगा कि मम्मा मेरे को बाहर भेज दो। तब तक छोटा बच्चा प्लस टू करने के बाद बाहर जा चुका था। मैंने भेज दिया। जैसे मैंने ठान रखी थी ना कि मैंने एक गवर्नमेंट नौकरी करने वाले के साथ शादी करनी है, डीएन ने तो मेरा ही था ना बच्चों में, उसने ठान रखी थी कि मैंने पुलिस में जाना है। मेहनत की उसने, टाइम लगाया, तो वो पुलिस में ऑस्ट्रेलिया चला गया। He is working with now police, Australian police. तो मैंने देखा, मैंने बच्चों को पढ़ाया। आपके प्रश्न के जवाब में मैं ये कहूंगी कि बच्चों के ऊपर प्रेशर मत डालो। बच्चे की रुचि क्या है, मानसिक बुद्धि पे, शारीरिक बुद्धि पे, बौद्धिक बुद्धि के मुताबिक बच्चे को उसके क्षेत्र में डालना चाहिए, ना कि माँ बाप को ये कहना चाहिए कि मैंने डॉक्टर बना मैंने तेरे को डॉक्टर बनाना, मैंने इंजीनियर बन सका मैंने तेरे को इंजीनियर बनाना, मैंने आर्किटेक्ट बन सका मैंने तेरे को बनाना, मैंने ऐसी जमीन बना सका, मैंने राइस मिल लगा सका, मैंने ऐसी खेती कर सका। नहीं, व्हाट आई थिंक कि आज बच्चे खुद इतने समझदार हो गई हैं कि वो खुद एक्सप्लोर करते हैं। अब मेरी ग्रैंड डॉटर, शी इज 9 years old, शी नोज कि व्हाट आई एम टू डू, वेदर आई एम टू गो दिस डांस क्लास, और मैंने ये क्लासिकल सीखना है कि मैंने इंग्लिश सीखना है कि मैंने अरेबियन सीखना है। उनको खुद पता है कि मेरे अंदर क्या है अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए, और सबसे ज्यादा बच्चों के फ्यूचर के लिए, कि अगर उनको उनके अपनी चॉइस के ऊपर छोड़ा जाए।
1: जी, तो हरजिंदर कौर जी, क्योंकि आज बहुत से सुनने वाले ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, क्योंकि आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, तो शिक्षा के बारे में आप हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगी?
0: देखिए, एजुकेशन एक इतना डिटेल्ड प्रोग्राम है, तो सभी एजुकेशन लेने वालों को मैं यही कहूंगी कि जिस भी क्लास में हो, अपने टीचर्स को पूरा 100% देकर सुनिए और उनकी कही बातों के ऊपर विश्वास करिए, तो अपने मुकाम में आप जरूर सफलता हासिल करें।
1: जी,
0: एजुकेशन आज के समय की बहुत बड़ी जरूरत है, तो मेरा ये एक आग्रह है आप सबको कि अपने बच्चों को एजुकेशन दिलवाओ, और स्पेशली जो डॉटर्स हैं, गर्ल्स हैं, उनको कभी पीछे मत रहने देना, लड़कियों को प्रोत्साहन देना कि वो एजुकेशन में आगे से आगे बढ़े और अपनी डिग्रीज हासिल करें और देश के विकास में अपनी कंट्रीब्यूशन करती रहे।
1: हरजिंदर कौर जी, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए, सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम का आप हिस्सा बनी। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच, यू नो आई एम फीलिंग ऑल द सेम, और आपने मेरे साथ जितनी भी बात की है, मेरे को आपकी बात सुन के भी बहुत अच्छा लगा, और ये मेरे लिए भी एक मेरे जीवन काल का सुहाना सफर रहेगा। थैंक यू सो मच।
1: दोस्तों, सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम में आज हमारी मेहमान थी एजुकेशनिस्ट श्रीमती हरजिंदर कौर। कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिया हमारे साथी आकाश भारद्वाज ने। अब आज का सुहाना सफर आकाशवाणी के संग कार्यक्रम समाप्त करने की अपने दोस्त रमेश कपूर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
2: सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
3: अभी आप सुन रहे थे साप्ताहिक कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग।
4: आवाज जो दिल से दिल तक पहुंची, आवाज जो वक्त के पार पहुंची,
5: यादें जो हर पीढ़ी में जिंदा रही। साल था 1936 जब भारत में पहली बार गूंजा
4: ये आकाशवाणी है।
5: तभी से शुरू हुआ एक सुनहरा सफर, सूचना, संस्कृति, खेल और संगीत का अद्भुत संगम।
4: 90 वर्षों से आकाशवाणी है भारत की आवाज।
5: कभी किसान का साथी तो कभी सैनिक की प्रेरणा,
4: कभी घर की सुबह की शुरुआत तो कभी देर रात का साथी।
5: आज जब डिजिटल दुनिया है, आकाशवाणी अब भी दिलों को छू रहा है अपनी सादगी, अपनी गरिमा और अपनी परंपरा से।
4: आइए मिलकर मनाएं आकाशवाणी के सुनहरे 90 वर्षों का सफर, क्योंकि ये है भारत की आत्मा।
5: 90 वर्षों के आगे भी सफर जारी है, नई आवाजों, नई कहानियों के साथ।
4: ये आकाशवाणी है। आकाशवाणी है।

अब से कुछ ही पलों में शाम के 6 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस दौरान विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। श्री मार्को रूबियो 26 मई को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया और मदर टेरेसा की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। श्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 19वें रोजगार मेले में कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: रोजगार मेले में आज 51,000 से भी अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात में वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भव्य योजना के माध्यम से कारोबारी सुगमता के लिए देश भर में 100 औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी। श्री गोयल ने कहा कि 33,600 करोड़ रुपए से अधिक के आवंटन वाली भारत औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घनमीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू होगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कोलकाता में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर हो गया है। मौसम विभाग ने केरलम में बुधवार तक अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त करते हुए 9 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज दक्षिण पश्चिम अरब सागर के कुछ हिस्सों और पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के अधिकांश हिस्सों में आगे बढ़ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz ਤੇ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵਿਵਿਧ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: आओ हुण सुनदे हां मोहम्मद अजीज दी आवाज विच फिल्म नगीना दा ए गीत। आनंद बख्शी दे बोल ते संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल दा

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਹ ਗੀਤ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਐਫ ਐਮ 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮਾਚਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब वैशाली चौधरी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नौकरी पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राष्ट्रीय रोजगार मेले के दौरान अंबाला में 120 युवाओं और पलवल में 93 विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कई देशों के मुकाबले भारत में तेल की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई। और हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने आज रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 950 विद्यार्थियों को डिग्री और 68 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नौकरी पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने नौकरी पाने वाले युवाओं को बधाई दी और कहा कि सभी युवा कठिन परिश्रम के बाद इस मुकाम पर पहुंचे हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी।
2: आज आप सभी देश की विकास यात्रा में अहम भागीदार बन रहे हैं, जिम्मेवार भागीदार बन रहे हैं। रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, हेल्थ, एजुकेशन और दूसरे कई क्षेत्रों में आप सभी नई जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। आने वाले वर्षों में विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने में आप सभी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की प्रौद्योगिकी तरक्की को लेकर बहुत उत्साहित है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ भागीदारी कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले और उनका सामर्थ्य बढ़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नव नियुक्त कर्मचारियों को आई गोट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: हरियाणा में अंबाला, पलवल सहित विभिन्न जिलों से भी आज राष्ट्रीय रोजगार मेले के आयोजन के समाचार मिले हैं। अंबाला रेल मंडल द्वारा आयोजित मेले में 120 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। अंबाला रेल मंडल प्रबंधक विनोद भाटिया ने बताया,
3: इस बार ये जो रोजगार मेला था मेनली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को एज ए ऑर्गेनाइजिंग मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी और आज हमने अंबाला में अराउंड 120

0: कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र दिए हैं और इसमें जो अराउंड 60 कैंडिडेट्स इंडियन रेलवे थे और बाकी 60 कैंडिडेट्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज थे, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पोस्टल, देन मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, MHA, एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए एक तरह से मोटिवेशन का ये बहुत बड़ा अवसर था.
1: एक बैंक में नियुक्ति पाने वाली मीनू ने आकाशवाणी संवाददाता को बताया,
2: मेरा नाम मीनू है और मैं रोहतक से आई हूँ. मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में सिलेक्शन हुआ है कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट पर. मैं मेरे परिवार में सबसे पहली हूँ जिसको सरकारी नौकरी मिली है और मैं बहुत खुश.

0: मेरा नाम मीनू है और मैं रोहतक से आई हूँ। मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में सिलेक्शन हुआ है कस्टमर सर्विस एसोसिएट की पोस्ट पर। मैं मेरे परिवार में सबसे पहली हूँ जिसको सरकारी नौकरी मिली है और मैं बहुत खुश हूँ। मेरा परिवार भी बहुत खुश है। सभी बच्चों को यही कहना चाहूंगी कि मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, आपको भी आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा।
1: श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर दिनेश कुमार ने आज 94 विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय कौशल विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कई अच्छी और नामचीन कंपनी विश्वविद्यालय में रोजगार देने के लिए आ रही हैं। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। मंत्रालय के अनुसार अधिनियम की धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के अनुसार मसौदा नियम तैयार किए गए हैं। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को 11 मई को अधिसूचित किया गया था। ये इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने अपने 2 दिवसीय करनाल दौरे के दौरान आज नीलोखेड़ी हल्के के करीब 10 गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में श्री मनोहर लाल ने कहा कि ग्रामीणों ने रेलवे से जुड़ी समस्याएं भी उनके सामने रखी हैं, जिन पर रेलवे अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस विषय पर न्यायालय की टिप्पणी आई है, लेकिन अंतिम फैसला विधायिका और राज्य सरकारों को करना है। उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना चाहिए। आईएएस अधिकारियों के बच्चों को आरक्षण देने का विषय उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऐसे अधिकारी पहले से ही सक्षम और उच्च स्तर पर होते हैं। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी पर मनोहर लाल ने कहा कि यह केवल भारत का विषय नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का असर है। उन्होंने कहा कि कई देशों में तेल की कीमतों में 60-100% तक वृद्धि हुई है, जबकि भारत में बढ़ोतरी बेहद मामूली है। हरियाणा में लाभार्थियों को आवास योजना की राशि जारी होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपना हिस्सा प्रदेश को जारी कर चुकी है। राज्य सरकार का हिस्सा मिलते ही लाभार्थियों को राशि जारी कर दी जाएगी। हरियाणा के राज्यपाल एवं कुलाधिपति प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने रोहतक के पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने दीक्षांत समारोह के दौरान 950 विद्यार्थियों को MBBS, BDS, MGMS, MDS, नर्सिंग, फार्मेसी और पैरा मेडिकल की उपाधि और 68 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। समारोह में राज्यपाल की धर्मपत्नी मित्रा घोष भी मौजूद रहीं। राज्यपाल व कुलाधिपति प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने उपाधि व स्वर्ण पदक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की शिक्षा व शोध के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान है। उन्होंने विश्वविद्यालय की ओर से चलाई जा रही अंगदान मुहिम की सराहना की। राज्यपाल ने उपाधि हासिल करने वाले विद्यार्थियों को मानवता की सेवा के लिए प्रेरित किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ा दी है। अब कल 24 मई तक स्कैन कॉपी प्राप्त की जा सकेगी। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार

बाजार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नौकरी पाने वाले 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने कहा कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त होते हैं।

0: घर खर्चे दे पैसे दियो हस्बैंड जी।
1: ए राशन दे 15,000, सब्जियां दे 2,000,
0: ते बिजली दे बिल दे
1: हुन 0 रुपए की मैं दवा।
0: ओहो भुली गई सी, हुन ता सोलर पैनल लग गए है ना, ता फिर जो बाकी बचे हुए 4,000 ने उसकी शॉपिंग करन चलिए।
1: जरूर, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ा नहीं, रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी है, हुन तुसी चंचल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दी खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वख-वख सरकारी विभागां ते संगठनां विच नवनियुक्त नौजवानां नूं 51,000 तों वध नियुक्ति पत्र तकसीम कीते। पंजाब च रोजगार मेले दौरान रेल कोच फैक्टरी कपूरथला च केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ते पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स च मुख्य प्रशासकीय अधिकारी नवनियुक्त नौजवानां नूं नियुक्ति पत्र वंडे। पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी बठिंडा वालों 11वें कन्वोकेशन समारोह का आयोजन। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने विद्यार्थियों को प्रगतिशील समाज के निर्माण च योगदान पाने लिए किया प्रेरित। सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह वालों सिविल सर्जना को गर्मी कारण होने वाली बीमारियों लिए तैयार रहन ते मेडिकल सप्लाई यकीनी बनाने के निर्देश। मोहाली की विशेष अदालत ने जलंधर स्थित एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों गिरफ्तार इंडियन कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के सकत्तर अजय सहगल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले 27 मई तक ईडी रिमांड पर भेजा। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला लखनऊ में शामी 7:30 बजे पंजाब किंग्स नाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज वख-वख सरकारी विभागों ते संगठनों विच नवनियुक्त नौजवानों नूं 51,000 तों वध नियुक्ति पत्र वंडे ने। रोजगार मेला देश भर विच 47 थावां ते आयोजित किया गया। देश भर तों चुने गए नवे भर्ती हुए उम्मीदवार रेलवे, गृह मंत्रालय, सेहत ते परिवार भलाई अते उच्च सिक्ख्या विभागों समेत वख-वख मंत्रालयां ते विभागों च शामिल होणगे। रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही संबोधन करदिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने की उत्सुक है। उन्होंने आख्या,
4: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
3: इधर पंजाब च 19वां रोजगार मेला आज रेल कोच फैक्टरी आरसीएफ कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स पटियाला समेत दो थावां ते करवाया गया, जिथे 281 नवनियुक्त उम्मीदवारां नूं नियुक्ति पत्र वंडे गए। आरसीएफ कपूरथला विखे केंद्रीय पेट्रोलियम ते कुदरती गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रोग्राम की प्रधानगी करदिआं कहा,
5: रोजगार मेला देश भर में पावरफुल नेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया है, जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, मेरिट बेस्ड और टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट के लिए। आज देश भर में 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स हैव बीन हैंडेड ओवर बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड ये ईच अपॉइंटमेंट लेटर एक सिर्फ सरकारी या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं है, एक तरह से ये नेशन बिल्डिंग के लिए प्लेज भी है फॉर द शेयर्ड ड्रीम ऑफ अ डेवलप्ड इंडिया।
3: बाद विच उन्होंने 93 नवनियुक्त उम्मीदवारों नूं नियुक्ति पत्र दिते। इस मौके नियुक्ति पत्र हासिल करने वाले नौजवानों ने सरकार का धन्यवाद किया।
6: मेरा नाम अजय कुमार है, मैं राजस्थान के जिला बीकानेर का रहने वाला हूं और मेरा चयन SBI जूनियर एसोसिएट के पद पर हुआ है। केंद्र सरकार का बहुत तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं।
7: मैं आकाश वर्मा जोधपुर राजस्थान से हूं, मुझे रेलवे में ऑफिस एग्जीक्यूटिव के पद पर नियुक्ति मिली है।
8: मेरा नाम ज्योति है, मैं हनुमानगढ़ राजस्थान की रहने वाली हूं। मैं SBI जूनियर एसोसिएट पद पर चयनित की गई हूं। मैं केंद्रीय सरकार को तहे दिल से इसके लिए धन्यवाद करती हूं।
9: माय नेम इज तेजेंद्र सिंह कंडा एंड आई एम फ्रॉम बठिंडा पंजाब and I'm selected for junior associate in State Bank of India. I'm so grateful for the central government to give me the opportunity to serve.
3: उधर पटियाला च पटियाला लोकोमोटिव वर्कर्स के मुख्य प्रशासकीय अधिकारी सुशील कुमार श्रीवास्तव ने मुख्य मेहमान वजो शिरकत करदिया वख-वख विभागों च नवे भर्ती किए 188 नौजवानों नियुक्ति पत्र दिते। उन्होंने नौजवानों प्रेरित करदिया कहा,

फिर भी आज शाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स का मुकाबला लखनऊ टू शामी 7:30 पंजाब किंग्स नाल होगा। इस दिन प्रदेशक खबरों का यह बुलेटिन खत्म होंगे। राष्ट्रीय खबर का अगला बुलेटिन तुम सुनोगे शाम 7:30। नमस्कार। FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। श्रोतियां हुण सुनदे हां कुछ पंजाबी गीत। शुरुआत जस्सी दे गाए इस गीते नाल।

आकाशवाणी चंडीगढ़ तो इस वेले तुसी सुन रहे हो कुछ चोणवें पंजाबी गीत प्रोग्राम दी अगली पेशकश जसपिंदर नरूला दी आवाज़

0: नमस्कार, मैं मीनू ऑर्गेन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में आपका स्वागत करती हूं। ऑर्गेन इंडिया दिल्ली की एनजीओ पराशर फाउंडेशन की पहल है, जो अंगदान, उत्तक दान और देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम करती है। आज के कार्यक्रम में हम अंगदान से जुड़ी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर आए हैं।
1: आप सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार, मैं हूं सागर। आज हमारे साथ हैं अमूल्या मैम। अमूल्या मैम हैं बेंगलोर की रहने वाली और इन्होंने अपना लिवर डोनेट किया था। हाय मैम, नमस्कार, आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले जानना चाहूंगा एक पूरी जर्नी के बारे में, थोड़ा सा हमें लेकर चलिए, बचपन से लेकर अपनी आपकी लाइफ कैसी रही।
2: मैं तो पूरे इंडिया में मतलब रह चुकी हूँ। मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि मैं अपने पापा के बैंक का जॉब था, तो ट्रांसफर्स के कारण हम साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, काफी अलग अलग प्रदेशों में रह चुके हैं। फिर आंध्रा में हम सेटल हुए, वहां से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की, फिर मैंने अपना MBA किया। तो ये मेरा प्रोफेशनल जर्नी रहा है अभी तक का।
1: तो सीधा मैम, मैं पॉइंट पर आना चाहूंगा कि आपने अपना लिवर डोनेट किया, किसको आपने डोनेट किया, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए, उनको क्या प्रॉब्लम हुई।
2: मैंने अपना लिवर डोनेट किया अपनी तब 7 साल वाली लड़की को, जिसका नाम मायरा है। तो ये लिवर डोनेशन मायरा के लिए था। हाँ, ये मेरी बेटी है। जैसे हमारे समक्ष आया, काफी मतलब सरप्राइजिंग और आश्चर्य वाली बात थी, क्योंकि हम लोगों का लाइफस्टाइल वैसे काफी सीधा साधा लाइफस्टाइल है। बट जब सडनली हम लोगों ने जॉन्डिस का थोड़ा सा हमें मतलब महसूस हुआ कि आंखें थोड़ी पीली दिख रही है, तो फिर हम ऐसे डॉक्टर के पास कंसल्ट करने गए थे। तो फिर तब जाकर मतलब काफी कुछ बदला अगले 7 दिनों में, जिसके लास्ट चरण में लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ा।
1: थोड़ा सा मायरा के बारे में हमें बताइए मैम, कि मायरा किस तरह की बच्ची है और क्या उसका लाइफस्टाइल हुआ करता था।
2: काफी एक्टिव है मायरा वैसे। तब तो वो बैडमिंटन खेला करती थी, डांस क्लासेस जाती है, कीबोर्ड सीखती है और काफी स्कूल में अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेती थी।
1: अमूल्य मैम, तो क्या कोई भी ऐसी चीज है मायरा की लाइफ की जो आपको ऐसा लगता हो कि ओके, इसको हम लोग अवॉइड कर सकते थे।
2: अभी जो हमारा केस था वो काफी मतलब जेनेटिकली मतलब जेनेटिक कंडीशंस में आता है। तो अगर मैं बोलूं कि अगर हम अवॉइड कर सकते थे, तो इसका मतलब एक ही उपाय होगा कि हम काफी स्क्रीनिंग और मेडिकल वैल्यूएशंस पे ज्यादा फोकस करें। जनरली बच्चों के चक्कर में हम लोग इतना मतलब, जैसे अभी हम एडल्ट्स में एनुअल हेल्थ चेकअप करवाते हैं, हम जनरली अपने बच्चों का ये सब नहीं करवाते। तो ये एक ऐसा तरीका हो सकता है जहां हम शायद आज नहीं सोच रहे हैं, बट जैसे अगर आपके बच्चे हैं, आपके घर में बड़े हो रहे हैं, तो एनुअल रूटीन होना चाहिए कि आप एक पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर रहे हो, उनसे पूछ रहे हो कि ऐसी कोई चीज है जो प्रॉबेबली हम अभी नजरअंदाज कर रहे हैं, या जिसका हमने टेस्ट नहीं करवाया है, या कोई ऐसा टेस्ट है वैक्सीनेशन लेने के बाद जो अब के जमाने में करवाना चाहिए, जो हमने पहले नहीं करवाया था।
1: थोड़ा सा हमें बताइए वो फेज कैसा था और क्या थॉट्स हुआ करते थे आपके, मायरा के सिम्टम्स क्या थे।
2: काफी पेनफुल और टर्मोइल वाली कंडीशन थी सागर जी। अभी मतलब आप जो कह रहे सही है, बट ये काफी इम्पोर्टेंट है कि दर्शकों तक ये समझ पहुंचे, ताकि अगर आपको ऐसा कुछ आपके आसपास में किसी की दशा ऐसी हो या कभी ना चाहते हुए आपके साथ घटे, तो आप इसको बेटर फेस कर पाओ। तो हम लोग जैसे जो हमारा जर्नी था वो ऑलमोस्ट 40 दिन का था। तो जिस दिन हमने मायरा को एडमिट किया था फॉर रेगुलर जॉन्डिस चेकअप, वहां से ये बात शुरू हुई थी। तो इसके बाद 2-3 दिन तक मतलब जॉन्डिस की ट्रीटमेंट की तरफ से ही सब कुछ चल रहा था, बट हमको भी काफी क्लैरिटी नहीं मिल रही थी डॉक्टर से कि ये हो क्या रहा है, मतलब

0: ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा था, ना कुछ समझ आ रहा था कि मतलब क्या, व्हाट इज नॉट वर्किंग. तो आफ्टर 2-3 डेज तब जाकर हमारी लिवर ट्रांसप्लांट टीम जो थी हॉस्पिटल की, तब जाके हमसे मिली और उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पे जो लिवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है वो मायरा का लिवर नहीं कर पा रहा है. तो देर इज एन एक्यूट लिवर फेलियर, ये टर्मिनोलॉजी थी. तो एक्यूट लिवर फेलियर होने के कारण मतलब वो जो भी खा रही है पी रही है वो एकदम से फ्लश आउट हो जाता था. तो इसीलिए बाहर से काफी सप्लीमेंट्स देने पड़ रहे थे इन टर्म्स ऑफ आईवी. बट एकदम 4 डे के बाद से जो हमने देखा उसकी काफी कंडीशन उसकी खराब होने लगी थी. पूरा उसका बॉडी जैसे एकदम पीला पड़ गया था, आइस काफी पीली हो गई थी, काफी हाई फीवर हो गया था. तब जाके हमको जब लिवर ट्रांसप्लांट टीम मिली तो उन्होंने बताया कि ऐसे लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा एंड दिस इज द ओनली ऑप्शन. एंड जब हमने पहली बार बात सुनी तो हमारे मतलब हमें रजिस्टर ही नहीं हुआ, क्योंकि ये पहली बार हमने सुना था, कभी हमने फैमिली में किसी का ऐसा कोई केस ना देखा था ना सुना था आसपास में भी. तो उन्होंने बोला कि नहीं मतलब उसका पूरा लिवर रिप्लेस किया जाएगा एंड हम बाहर से एक फॉरेन लिवर लेकर आएंगे एंड उसको बॉडी में ट्रांसप्लांट करेंगे. तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी डोनर है उनके पैरामीटर्स मैच करे, वो जो लिवर हम लेकर आएंगे वो लिवर हेल्दी हो, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो, सो दैट वी आर एबल टू गिव हर अ बेटर एंड अ न्यू लिवर. मतलब ऐसे प्रोसेस स्टार्ट हुआ, क्योंकि अब जब ट्रांसप्लांट वगैरह की बात करते हो तो इंश्योरेंस वगैरह भी एकदम हैंडी नहीं आता. तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आपके पास एक फाइनेंशियल सरप्लस भी हो. तो तभी हमने 2-3 और ओपिनियंस भी लिए. बहुत कम विंडो था हमारे पास, बट फिर भी मेरी छोटी बहन भी डॉक्टर है तो उसने भी अपने हॉस्पिटल में बात की. तब जाके थोड़े डॉक्टर रिकमेंडेशंस भी आए, बट लकीली उनका जो रिकमेंडेशन था जो हमारे डॉक्टर थे वो एक ही थे. तो काफी मतलब हमें वहां से कॉन्फिडेंस मिला. तो जैसे मेरी बहन थी तो वो काफी मतलब बात कर रही थी मेडिकेशंस के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कुछ बदला जा सकता है. तो वो काफी हमारे पास एक्सटेंसिव सपोर्ट था. अपार्ट फ्रॉम दैट फिर जब जाके हमने मतलब डोनर टेस्ट के लिए, जनरली पेरेंट्स आर द फर्स्ट चॉइस, तो डॉक्टर्स पेरेंट्स को फर्स्ट ऑप्शन देते हैं टू बी द डोनर. एंड बेस्ड ऑन द टेस्ट मेरा वाज अ रेलेवेंट प्रोफाइल फॉर हर डोनर. तो आइडियली वी वर आल्सो नॉट प्रिपेयर्ड कि मैं करूंगी. जब हमें पता चला था कि डोनर बनना है तो माय हस्बैंड ने बोला था कि कब मैं जाता हूँ, सो दैट मतलब मायरा के साथ आप रहोगे पोस्ट सर्जरी टू रिकवर एंड हेल्प हर रिकवर सूनर. तो बट उनका मतलब ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुआ तो फिर इट हैपेंड टू बी मी. तो ये थोड़ा हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, तो ये एक अलग जर्नी थी टू से कि आगे जाके अब क्या होगा. बट फिर मैंने अपने टेस्ट दिए पूरे 24 घंटे में, क्योंकि डोनर्स का भी एक एक्सटेंसिव टेस्ट प्रोफाइल होता है. तो जब ओनली वो टेस्ट प्रोफाइल क्रॉस होता है और सब रिजल्ट ठीक आते हैं तब जाके आपको फिट डोनर माना जाता है फॉर द सर्जरी. तो ये ऑलमोस्ट 5th डे की बात थी जब मेरे सारे रिजल्ट्स आए और मुझे फिट कहा गया था. वी वर ओके टू प्रोसीड विद द सर्जरी. तो तब जाके मैंने मायरा से बात की थी. तब उसको मैंने बताया था कि बेटा इस छोटा सा एक आपको इनसे मतलब छोटा सा कट होगा, वहाँ पे आपका जो लिवर काम नहीं कर रहा है उसको हटा के मम्मा का आपको लिवर देंगे, तो यू विल बी फाइन एंड आई विल बी फाइन. तो ऐसे करके बात हुई थी. उसके बाद नेक्स्ट डे सर्जरी चली. जब मेरा लिवर निकाल के उसको फिर मायरा में ट्रांसप्लांट किया गया, उसकी सर्जरी कुछ 12 घंटे चली. देन दैट वॉज द एंड ऑफ द प्रोसेस. बट वहां तक बात खत्म नहीं होती, क्योंकि उसके बाद पोस्ट रिकवरी इज अनदर चैलेंजिंग फेज. तो समवेयर ये हेल्प हुआ क्योंकि मुझे पता था कि व्हाट शी इज गोइंग थ्रू, तो मैं उसको गाइड भी कर पा रही थी. तो उसको पता था कि मम्मी के साथ ऐसे ही हुआ है, तो फिर वो भी काफी कॉन्फिडेंट थी जिसके वजह से वो काफी ज्यादा मतलब स्ट्रांग थी. तो रिकवरी में भी हमें उतना ही जल्दी और उसके बॉडी का सपोर्ट मिला. 40 दिन लगे, वो 40 दिन हॉस्पिटल में थी. मैं ऑलमोस्ट 7 दिन के बाद मैं वापस आ गई थी, बट वो 40 दिन तक हॉस्पिटल में थी. तो धीरे धीरे फिर हमने ब्रीथिंग करना सीखा, बॉडी की इलास्टिसिटी हमने बनानी सीखी, हमने फिर वॉक करना सीखा, खाना खाना सीखा, छींकना सीखा. तो ये पूरा हमारा जर्नी रहा. अब जाके हम अपने आप को नॉर्मल महसूस करते हैं, बट ऐसे दिनों में फिर याद आता है कि हम कितने ग्रेटफुल हैं.
1: अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ तो आपने 2-3 चीजें मेंशन की है, खाना खाना सीखा, छींकना सीखा, ये बहुत ज्यादा यू नो माइन्यूट लेवल पर चीजें आ जाती है.
0: क्योंकि आपकी जब सर्जरी होती है तो जो बॉडी का मतलब जो खोल के बंद किया जाता है उसके वजह से आपका जो नॉर्मल फंक्शनिंग होता है इन सब छोटी चीजों का, ये काफी डिस्टर्ब हो जाता है. तो आप जब खाते हो तो हर निवाले के साथ आपका जो इंसिशन है, जो स्टिचेस है, वो सब दर्द करते हैं. तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर एंड कम बैक टू नॉर्मल. जब आप ब्रीथ करते हो तो ऐसे आपको लगता है कि आप शायद सिर्फ 10% ऑफ द लंग कैपेसिटी के साथ ब्रीथ कर रहे हो. मतलब हम बात भी जब करते थे तो 3-4 शब्द के आगे हम बोल नहीं पाते थे. हमको ऑलमोस्ट

0: भी यही होता था कि ब्रीथिंग कैपेसिटी काफी लिमिटेड हो जाती थी, तो दो तीन स्टेप चलते थे फिर बैठ जाते थे, फिर दो तीन स्टेप चलते थे फिर बैठ जाते थे. मतलब दिस इज ऑल पोस्ट सर्जरी इम्प्लीकेशंस कि आपकी बॉडी काफी वीक हो जाती है, बॉडी में उतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती, एंड जस्ट बिकॉज सब कुछ खोल के फिर बंद किया जाता है तो द ऑर्गन्स ऑल्सो टेक अ वाइल टू गेट एडजस्टेड टू द न्यू रूटीन. तो इसीलिए आपका जो प्री सर्जरी बॉडी है उसकी फिटनेस काफी हेल्प करती है टू रिकवर लेटर आफ्टर दिस फेज.
1: आपके जो थॉट्स थे डोनेट करने के पहले और आफ्टर डोनेशन की जो आपकी लाइफ है, क्या कुछ आपने अलग पाया? हाउ डू यू फील अबाउट दिस कॉज नाउ? प्लीज वो थोड़ा सा हमें एलाबोरेट करके बताएं.
0: ड्यूरिंग द सर्जरी तो ऐसे था कि मतलब जो भी बन पाए हम करेंगे टू इंश्योर कि हम मायरा को एक दूसरा जन्म दे सके, और उसकी जो सर्जरी हुई थी वो उसके बर्थडे के दिन ही हुई थी, तो मैं तो उसको दूसरा जन्म ही कहूंगी. मैं तो सबको कहती हूँ कि मैंने अपनी बेटी को दो बार जन्म दिया है, तो मैं उसमें काफी अपने आप को प्राउड फील करती हूँ और भगवान का शुक्रिया करती हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली. बट तब डॉक्टर्स काफी आपको एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन भी करते हैं कि इसके क्या इम्प्लीकेशन हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, मैं वो काफी ट्रांसपेरेंटली भी बताऊंगी आपको. तो ऐसे होता है कि आफ्टर ऑर्गन हैज बीन ट्रांसप्लांटेड, रिसिपिएंट के लिए इम्यूनो सप्रेशन स्टार्ट किया जाता है ताकि जो ऑर्गन उनको नया मिला है वो उनकी बॉडी खुद रिजेक्ट ना करे. तो ये ऐसी मेडिकेशन होती है जो आपको हर 12 घंटे पे लेनी होती है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी थोड़ी कम की जाती है ताकि आपकी की बॉडी आपके न्यू ऑर्गन से फाइट ना कर पाए. तो जब आप इम्यूनिटी लो करते हो तो उसकी वजह से जो भी मतलब बाकी के वायरस बैक्टीरिया है वो काफी हद तक बॉडी को अटैक करने लगते हैं क्योंकि आपकी इम्यूनिटी कम है. तो ये ऐसा सिचुएशन हो जाता है जहाँ पे आप इम्यूनिटी बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाओगे तो वो जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसको इम्पैक्ट करेगा, तो आपको इम्यूनिटी कम ही रखनी पड़ेगी. बट अगर आप कम रखोगे तो आपके बाकी के इन्फेक्शन ज्यादा हो सकते हैं. तो इसमें जो पोस्ट ट्रांसप्लांट केयर है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है कि आप ऐसे सराउंडिंग्स में रहो जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है. आप बाहर जा रहे हो तो आप मास्क पहन के चलो, आप अपने हैंड्स को हमेशा क्लीन रखो, मल्टीपल टाइम्स वॉश करो, सैनिटाइज करो. अगर आप बच्चे के एज ग्रुप में हो तो आप ऐसा कोई स्कूल ढूंढो जहाँ पे आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सके. तो ये सारे जो हमने कोविड के टाइम पे थोड़े प्रिकॉशंस देखे थे ये बिकम अ पार्ट ऑफ आवर नॉर्मल लाइफ. तो मतलब काफी लंबा प्रोसेस रहा है, पूरे 12 महीने की जर्नी रही है.

0: मेरा ऑफिस वाइज भी मैंने ऐसे रूल्स लिए हैं जहाँ पे मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकूँ कि अगर मायरा को जरूरत पड़े तो आई एम अराउंड, बट काफी नॉर्मल हो चुका है इन टर्म्स ऑफ अवर फूड, अवर सोशल लाइफ, फ्रेंड सर्कल्स. ये तो मैं सबके लिए कहूंगी कि वन, आप भले लिविंग डोनर हो या ना हो, बट प्लीज साइन अप टू बी अ डोनर. आप जब मतलब अगर आप इस दुनिया में रहे ना रहे, बट आप कितने काफी लोगों को आप और जिंदगी दे सकते हैं. ये तो मैंने अपने नाना जी के टाइम से देखा है. वो खुद डॉक्टर थे तो उन्होंने मतलब इवन बिफोर ही वॉज क्लोज टू हिज डेथ उन्होंने ऑलरेडी साइन अप कर दिया था कि मेरे आंखों को डोनेट किया जाएगा, स्किन को डोनेट किया जाएगा एंड एनी ऑर्गन विच इज इन वर्किंग कंडीशन को डोनेट किया जाए. तो उनकी तो मतलब तभी से इच्छा थी. मैं तो एनकरेज करूंगी सबको कि आप वन एज एन ऑर्गन डोनर अपने आपको रजिस्टर करें कि कभी कोई नीड पड़े तो देयर इज समबडी हु कैन रीच आउट टू यू.
1: दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आज का ये शो आपके लिए काफी इंस्पायरिंग रहा होगा. नाउ विद दिस नोट हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे. अमूल्या मैम, इट मींस अ लॉट टू अस. थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट.
2: फिर लौटेंगे ऑर्गन इंडिया के कार्यक्रम जीवन एक अनमोल उपहार में. दोस्तों, अंगदान से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप ऑर्गन इंडिया की वेबसाइट organindia.org पर जा सकते हैं या उनके टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800120 3648 पर संपर्क कर सकते हैं. अंगदान के बारे में आप अपने परिवार को जरूर बताएं और अपने आसपास सबको प्रेरणा दें.

0: जीवन एक अनमोल उपहार है। अपने जाने के बाद किसी और के जीवन में उम्मीद भरें, अंगदान का संकल्प लें। अंगदान, जीवन दान।
1: धन्यवाद। नमस्कार।
2: रेडियो कार्यक्रम संबंधी अस्वीकरण द ऑर्गन रिसीविंग एंड गिविंग अवेयरनेस नेटवर्क पर आशा

0: फाउंडेशन तथा रेडियो स्टेशन, उसके मालिक, कर्मचारी, प्रबंधन, प्रायोजक एवं सहयोगी, जिन्हें यहाँ सामूहिक रूप से हम कहा गया है, वार्ता कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ताओं या उनके अतिथियों द्वारा दी गई किसी राय अथवा वक्तव्य की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते।
1: हुणे तुसी सुन रहे सी स्पॉन्सर प्रोग्राम ऑर्गन इंडिया। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे FM 107.2 MHz ते।

0: नमस्कार, हम आपके लिए लेकर आए हैं अपने संग्रहालय से हिंदी फिल्म जगत के चुनिंदा मोती। आज का विशेष जयमाला फौजी साथियों के लिए प्रस्तुत किया है फिल्म जगत की जानी मानी अभिनेत्री नरगिस ने।
1: सुनने वालों को मेरा आदाब। रेडियो पर और दूसरे प्रोग्रामों में मैं इतना बोल चुकी हूँ कि अब कुछ कहने के लिए सोचना पड़ता है, और ऐसे मौके पर जब अपनी याददाश्त पर जोर डालती हूँ तो गुज़िश्ता जिंदगी के वाकयात तस्वीर बन बनकर सामने आते हैं और मैं उन तस्वीरों में अपने आप को तलाश करने लगती हूँ, गोया जिंदगी में गुम हो जाती हूँ। और मेरा अकीदा भी यही है कि वो कलाकार कलाकार नहीं जो जिंदगी में खो ना जाए, समा ना जाए। मैंने अपनी फिल्मी जिंदगी में हमेशा ये कोशिश की है कि मेरा हर रोल बनावटी न मालूम होकर असली मालूम हो। इसकी एक वजह यह भी थी कि मेरी तालीम और तरबियत ऐसे माहौल में हुई जहां जिंदगी को जिंदगी की नजर से देखा जाता था। रहा फिल्मी दुनिया से मेरे रिश्ते का सवाल, तो बस यूं समझ लीजिए कि फिल्मों से मेरा रिश्ता पैदाइशी है, यानी उस वक्त से काम कर रही हूँ जब मुझे ठीक से बोलना भी नहीं आता था। लेकिन हीरोइन की हैसियत से मेरी पहली फिल्म थी तकदीर, जो महबूब साहब ने बनाई थी। सच तो ये है कि महबूब साहब ने मेरी फिल्मी जिंदगी को शुरू किया और आखिर में मदर इंडिया बनाकर मुझे एक बहुत ही बुलंद मुकाम पर पहुंचा दिया कि अगर मैं अपनी उस बुलंदी पर नाज करूं तो बेजा ना होगा। मैं महबूब साहब की जितनी भी तारीफ करूं कम होगी। मेरी शोहरत में महबूब साहब की ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे अपनी फिल्मी जिंदगी में इतना मेहनती और समझदार डायरेक्टर कोई दूसरा नहीं मिला। इस वक्त महबूब साहब की फिल्मों के बहुत से गाने याद आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको फिल्म मदर इंडिया का ये गीत सुना।

तकदीर में जब मैंने पहली बार हीरोइन की हैसियत से काम किया था तब क्या महसूस हुआ था ये तो ठीक से याद नहीं है। हाँ, लेकिन एक वाकया जरूर याद है। जैसा कि आप सब जानते हैं, मोतीलाल जी इस फिल्म के हीरो थे। वो हर लिहाज से मुझसे बड़े थे और मैं उन्हें हमेशा मोती भैया कहा करती थी। एक दिन एक रोमांटिक सीन की शूटिंग हो रही थी और मैं हर रिहर्सल के बाद कहती थी, क्यों मोती भैया, कैसा हुआ? और वो बिगड़ कर कहते थे, हद तेरा सत्यानाश, सारे रोमांटिक मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। खैर, फिल्म की शूटिंग पर इसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि मोतीलाल जी बड़े ऊंचे पाए के कलाकार थे, ऐसी बातों का असर उन पर नहीं होता था। हाँ, याद आया, इसी फिल्म में मशहूर आर्टिस्ट नूर मोहम्मद चार्ली ने मेरे बाप का रोल किया था। उनके साथ एक सीन ऐसा था कि वो जेल में बंद हैं और मैं यानी उनकी बेटी उनसे मिलने जाती। ये सीन जरा गमगीन था मगर चार्ली साहब हवालात में कुछ इस अंदाज से टहलते थे कि मुझे बहुत हंसी आ जाती थी। ऐसा कई बार हुआ और तब महबूब साहब झिल्ला गए और एकदम जोर जोर से चिल्लाकर मुझे डांटने लगे, यहाँ तक कि मुझे रोना आ गया। और उसी रोने के दरमियान ही महबूब साहब ने जल्दी जल्दी वो सीन मुझसे मुकम्मल करवा लिया। बहरहाल, इस वक्त मुझे ये डर है कि कहीं बातों में आपको गीत सुनवाना ना भूल जाऊं। लीजिए ये

0: विशेष जयमाला में आज आपके साथ हैं फिल्म जगत की जानी मानी अदाकारा नरगिस।
1: फिल्म एक्टिंग के बारे में आप लोग आम तौर पर तरह तरह के ख्यालात रखते हैं और अलग अलग बातें सुनते रहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टर्स जैसा कहते हैं या चाहते हैं वैसा तो हर कलाकार करता है या करने की कोशिश करता है, मगर खुद फनकार को भी चाहिए कि वो अपने फन को निखारने के लिए, उसमें जान पैदा करने के लिए जिंदगी की बहुत करीब से नाप तोल करे और खास तौर पर जो टिपिकल कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं उन्हें गौर से समझे। इस सिलसिले में मैं आपको अपनी ही मिसाल देती हूँ। फिल्म अनहोनी में मेरा डबल रोल था। जो खास और मुश्किल रोल था वो एक तवायफ का कैरेक्टर था। उसे सही ढंग से अदा करने के लिए मैं अपने भाई के साथ मर्दाना भेस बदल कर एक कोठे पर गई। वहाँ आए हुए लोगों के बीच बैठकर मुजरा सुना और उस नर्तकी की चाल ढाल, बातचीत, नाच गाना, पान पेश करने की अदा वगैरह वगैरह मैंने बहुत अच्छी तरह से देखा, ताकि मैं अपनी एक्टिंग से उस किरदार के साथ पूरा पूरा इंसाफ कर सकूं। इसलिए मेरा तो यही कहना है कि कलाकार को खुद भी काफी मेहनत करनी चाहिए। और अब इससे पहले कि कोई नई बात शुरू करूँ, ये गाना पेश करना चाहती हूँ।

मदर इंडिया के बाद मैंने सिर्फ एक फिल्म में काम किया है और वो फिल्म है दिन और रात, वो भी किसी खास वजह से। दरअसल मेरे भाई अख्तर हुसैन की जिद थी कि मैं ही इस फिल्म में काम करूं, क्योंकि इस कहानी में एक ही लड़की के दो किरदार एक साथ चलते हैं। लड़की स्किज़ोफ्रेनिया की मरीज है, ये एक दिमागी बीमारी होती है। उस रोल को करने के लिए मैंने कई माने हुए डॉक्टरों से इस मर्ज की जानकारी हासिल की, हॉस्पिटल में जाकर शॉक ट्रीटमेंट भी देखा। खैर, शॉक देते वक्त जो हालत मरीज की होती है वो एक्टिंग से जाहिर नहीं की जा सकती। बहरहाल मैंने कोशिश की थी हकीकत तक पहुंचने की। मतलब सिर्फ ये है कि एक्टिंग को अगर हम आर्ट समझ कर करें तो हमें काफी मेहनत और रियाज करना पड़ता है। ये छोटी छोटी बातें तो होती ही रहेंगी, लीजिए बातों के साथ साथ गीतों का भी मजा लेते चलिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: देखने के बाद लोगों ने सवालों की बौछार कर दी थी कि ये आइडिया आपको कहां से आया, कैसे आया वगैरह वगैरह। किस्सा यूं है कि मैं यूरोप एक फिल्म फेस्टिवल में गई थी, बच्चे भी मेरे साथ थे और सुनील उस वक्त मद्रास में शूटिंग कर रहे थे। अचानक एक दिन सुनील का दिल घबराया तो वो बंबई के लिए रवाना हुए। रास्ते में ये सोचते हुए कि घर पहुंचकर बच्चे ऐसे मिलेंगे, ऐसी ऐसी बातें होंगी, लेकिन जब यहाँ पहुंचे तो कोई भी नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। तब उन्हें याद आया कि सब लोग तो लंदन गए हैं। बहरहाल जब वो अकेले घर में सोए

0: नाथ और
1: विशेष जयमाला कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स और हवन सामग्री।
3: सुबह जलाओ शाम जलाओ
4: देव दर्शन धूप।
3: सुबह जलाओ शाम जलाओ
4: देव दर्शन धूप।

0: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत की जानी मानी अदाकारा नरगिस ने। सुनिए कार्यक्रम का शेष भाग।
1: जैसा कि आप सब जानते हैं, फिल्मों से मेरा संबंध काफी पुराना है, इसीलिए पुरानी फिल्मों में और आज की फिल्मों में काफी फर्क मुझे नजर आता है। खास तौर पर टेक्निकली हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, लेकिन स्टोरी और डायलॉग के मामले में हम लोग तरक्की करने के बजाय कुछ पीछे ही खिसक आए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग अब ऊपरी सजावट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। आजकल फिल्मों में कश्मीर, कुल्लू और मनाली की हसीन वादियां तो देखने में आती ही हैं, लेकिन पत्थर को मोम कर देने वाले डायलॉग सुनने में नहीं आते। बहरहाल ऐसा भी नहीं कि आजकल हर फिल्म ऐसी ही होती है, बल्कि कुछ अच्छी फिल्में भी बनती हैं। अच्छा, बातें तो होती ही रहेंगी।

0: विशेष जयमाला में आज आपके साथ हैं फिल्म जगत की जानी मानी अदाकारा नरगिस।
1: इसमें कोई शक नहीं कि आज फिल्म हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है और हम इसके जरिए किसी भी अच्छे ख्याल का प्रचार कर सकते हैं, समाजी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। मगर मुश्किल ये है कि आज का समाज दो बड़े हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा वो है जो कहता है कि फिल्मों में उन चीजों को जरूर दिखाना चाहिए जो हिंदुस्तानी फिल्मों में नहीं दिखाई जाती। दूसरा हिस्सा वो है जो लाज और हया को औरत का सबसे बड़ा जेवर समझता है। अब सवाल ये है कि फिल्मी दुनिया किसके तकाजे को पूरा करे और प्रोड्यूसर किस तरह की फिल्में बनाए। होता यह है कि प्रोड्यूसर्स फिल्म में

को भी तरह तरह से एक्सप्लॉइट करता है और हिंदुस्तानी कल्चर की सादगी और सभ्यता भी दिखाने की कोशिश करता है। उसका नतीजा ये होता है कि फिल्म चूचू का मुरब्बा बनकर रह जाती है। बहरहाल ये टॉपिक बड़ी लंबी चौड़ी बहस चाहता है। इस वक्त ना मैं बहस में उलझना चाहती हूँ और ना आपको उलझाना चाहती हूँ। लीजिए इस गीत से अपना मूड बदलिए।

पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जय माला। आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम प्रस्तुत किया है फिल्म जगत की जानी मानी अदाकारा नरगिस ने। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का शेष भाग।
1: हमने राजस्थान में फिल्म रेशमा और शेरा की शूटिंग की और वहाँ का जिक्र बहुत जरूरी है, इसलिए नहीं कि हमने वहाँ शूटिंग की है, बल्कि इसलिए कि वहाँ के लोगों ने जो हौसला, जो भाईचारा देखा, वो हमारे मुल्क के लिए और दुनिया के लिए मिसाल है। आप खुद ही गौर कीजिए, पानी न बरसा हो, जहाँ एक हरी पत्ती की तलाश में आंखें पथरा जाएं, जहाँ के लोग भूख प्यास का सामना करते हुए तपती हुई रेत पर चलकर मीलों दूर से पानी ले आएं, मगर अपने गांव को न छोड़ें, उन्हें अपनी धरती से कितना प्यार होगा। करीब 2 महीने हम लोग वहाँ रहे, मुश्किल से 10-12 घरों का गांव था। वहाँ के सब लोग हमसे इतना घुल मिल गए थे कि जब हम लोग वहाँ से चलने लगे तो उनकी आंखों में आंसू।

थे। हम भी अपने जज्बात पर काबू पाने की कोशिश कर रहे थे और सुनील की तो अजीब ही हालत थी। उन्होंने कहा कि मैं अपना टेंट खुद उखाड़ूंगा। उस वक्त सुनील की आवाज रुंधी हुई थी, दिल भरा हुआ था और शायद वो अपने आप को काबू में रखने के लिए खुद से जंग कर रहे थे। हम लोग शुक्रगुजार हैं उन गांव वालों के जिन्होंने हमें प्यार और मोहब्बत का ना खत्म होने वाला खजाना दिया। बेशक जैसलमेर के उस गांव के वो लोग हमारी तहजीब का जीता जागता नमूना है। आखिर में अपने सुनने वालों को रेशमा और शेरा का गीत सुनवाती हूँ जिसे बाल कवि बैरागी जी ने लफ्जों का जामा पहनाया है और राजस्थान के उस इलाके की पूरी मंजर कशी की है। संगीतकार हैं जयदेव और जयदेव के लिए ये जरूर कहूंगी कि जयदेव ने कभी दौलत के आगे सर नहीं झुकाया। वो म्यूजिक उतना ही देते हैं जितनी जरूरत होती है, बल्कि जयदेव एक ऐसा कलाकार है जो गीत को संगीत से सजाता है, गीत के लिए संगीत को बेचता नहीं। लीजिए रेशमा और शेरा का ये गीत सुनिए।

फौजी साथियों की सेवा में इसे प्रस्तुत किया फिल्म जगत की जानी मानी अदाकारा नरगिस ने। विविध भारती के संग्रहालय से ये रिकॉर्डिंग हम खास आपके लिए लेकर आए।

अज दे पंजाबी गीतां दे प्रोग्राम च तुसी सुन रहे से विनोद सहगल दी आवाज च कुछ पंजाबी गीत। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz ते। श्रोते बस कुछ ही पलां दे इंतजार बाद तुसी सुनोगे विविध भारती मुंबई तो अगला प्रोग्राम हवा महल।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: दोस्तों, हवा महल कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी। सुनो कहानी के अंतर्गत आपको सुनवा रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ, पत्नी का पत्र। इस कहानी का चौथा और अंतिम भाग लीजिए आज प्रस्तुत है। वाचन स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का।

दोस्तों, पिछले हफ्तों में आपने सुना, बिंदु का रंग काला होने से उसके विवाह में अड़चने आती हैं, लेकिन एक पागल व्यक्ति से उसका विवाह तय हो जाता है। बिंदु कतई नहीं चाहती शादी करना, लेकिन उसकी शादी एक पागल व्यक्ति से हो जाती है। कुछ ही दिनों में वो मृणाल के घर वापस शरण लेती है, लेकिन उसके ससुराल से उसके जेठ आते हैं और हंगामा खड़ा करते हैं। अब आगे। मेरा छोटा भाई शरद कलकत्ता में कॉलेज में पढ़ता था। तुम तो जानते ही हो, तरह तरह से वॉलेंटियरी करना, प्लेग वाले मोहल्लों में चूहे मारना, दामोदर में बाढ़ आ जाने की खबर सुनकर दौड़ पड़ना, इन सब बातों में उसका इतना उत्साह था कि एफए की परीक्षा में लगातार दो बार फेल होने पर भी उसके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मैंने उसे बुलाकर कहा, शरद,

0: जैसे भी हो बिंदु की खबर पाने का इंतजाम तुझे ही करना पड़ेगा। बिंदु को मुझे चिट्ठी भेजने का साहस नहीं होगा, वो भेजे भी तो मुझे मिल नहीं सकेगी। शरद के साथ बातचीत कर रही थी तभी तुमने मेरे कमरे में आकर कहा, तुम फिर ये क्या बखेड़ा खड़ा कर रही हो? मैंने कहा, वही जो शुरू से करती आई हूं जब से तुम्हारे घर आई हूं। लेकिन नहीं, वो तो तुम्ही लोगों की कीर्ति है ना। तुमने पूछा, बिंदु को लाकर फिर कहीं छिपा रखा है क्या तुमने? मैंने कहा था, बिंदु अगर आती तो मैं जरूर छिपा कर रख लेती, लेकिन वो अब नहीं आएगी। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। शरद को मेरे पास देखकर तुम्हारा संदेह और भी बढ़ गया। मैं जानती थी कि शरद का हमारे यहाँ आना जाना तुम लोगों को पसंद नहीं है। तुम्हें डर था कि उस पर पुलिस की नजर है, अगर कभी किसी राजनीतिक मामले में फंस गया तो तुम्हें भी फंसा डालेगा। इसीलिए मैं भैया दूज का तिलक भी आदमी के हाथों उसी के पास भिजवा देती थी, अपने घर नहीं बुलाती थी। एक दिन तुमसे सुना कि बिंदु फिर भाग गई है, इसीलिए उसका जेठ हमारे घर उसे खोजने आया है। सुनते ही मेरी छाती में शूल चुप गया। अभागिनी का असह्य कष्ट तो मैं समझ गई, पर फिर भी कुछ करने का कोई रास्ता नहीं था। शरद पता करने दौड़ा। शाम को लौटकर उसने मुझसे बोला, बिंदु अपने चचेरे भाइयों के यहाँ गई थी, लेकिन उन्होंने अत्यंत क्रुद्ध होकर उसी वक्त उसे फिर ससुराल पहुंचा दिया। इसके लिए उन्हें हर जाने का और गाड़ी के किराए का जो दंड भोगना पड़ा उसकी खार अब भी उनके मन से नहीं गई है। श्री क्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए तुम लोगों की काकी तुम्हारे यहाँ आकर ठहरी। मैंने तुमसे कहा, मैं भी जाऊंगी। अचानक मेरे मन में धर्म के प्रति ये श्रद्धा देखकर तुम इतने खुश हुए कि तुमने तनिक भी आपत्ति नहीं की। तुम्हें इस बात का भी ध्यान था कि अगर मैं कलकत्ता में रही तो फिर किसी न किसी दिन बिंदु को लेकर झगड़ा कर बैठूंगी। मेरे मारे तुम्हें बड़ी परेशानी थी। मुझे बुधवार को चलना था, रविवार को ही सब ठीक ठाक हो गया। मैंने शरद को बुलाकर कहा, जैसे भी हो बुधवार को पूरी जाने वाली गाड़ी में तुझे बिंदु को चढ़ा ही देना पड़ेगा। शरद का चेहरा खिल उठा था। वो बोला, डर की कोई बात नहीं जीजी, मैं उसे गाड़ी में बिठाकर पुरी तक चला चलूंगा। इसी बहाने जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे। उसी दिन शाम को शरद फिर आया। उसका मुंह देखते ही मेरा दिल बैठ गया। मैंने पूछा, क्या बात है शरद, शायद कोई रास्ता नहीं निकला? वो बोला, नहीं ऐसा नहीं है। मैंने पूछा, क्या उसे राजी नहीं कर पाए? उसने कहा, जी जी अब जरूरत भी नहीं है। कल रात अपने कपड़ों में आग लगाकर वो आत्महत्या करके मर गई। चलो छुट्टी मिले। बिंदु। गांव भर के लोग चीख उठे, कहने लगे, लड़कियों का कपड़ों में आग लगाकर मर जाना तो अब एक फैशन सा हो गया है। तुम लोगों ने कहा, अच्छा नाटक है। ऐसा ही था बिंदु का दुर्भाग्य। जितने दिन जीवित रही तनिक भी यश नहीं मिल सका, न रूप का न गुण का। मरते वक्त भी ये नहीं हुआ कि सोच समझकर कुछ ऐसे नए ढंग से मरती कि दुनिया भर के लोग खुशी से ताली बजा उठते। मरकर भी उसने लोगों को नाराज ही किया। बिंदु।
1: आप सुन रहे हैं कहानी पत्नी का पत्र, लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर।
0: जीजी कमरे में जाकर चुपचाप रोने लगी, लेकिन उस रोने में जैसे एक सांत्वना थी। कुछ भी सही, जान तो बची, मर गई, यही क्या कम है? अगर बची रहती तो न जाने क्या क्या हो जाती।

अतः मैं तीर्थ में आ पहुंची हूं। बिंदु के आने की तो जरूरत ही न रही, लेकिन मुझे जरूरत थी। लोग जिसे दुख मानते हैं वो तुम्हारी गृहस्थी में मुझे कभी नहीं मिला। तुम्हारे यहां खाने पहनने की कोई कमी नहीं। तुम्हारे बड़े भाई का चरित्र चाहे जैसा हो, तुम्हारे चरित्र में ऐसा कोई दोष नहीं जिसके लिए विधाता को बुरा कह सकूं। वैसे अगर तुम्हारा स्वभाव तुम्हारे बड़े भाई की तरह भी होता तो भी शायद मेरे दिन करीब करीब ऐसे ही कट जाते और मैं अपनी सती साध्वी बड़ी जेठानी की तरह पति देवता को दोष देने की बजाय विश्व देवता को ही दोष देने की चेष्टा करती। इसलिए मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करना चाहती। मेरी चिट्ठी का कारण ये नहीं है, लेकिन मैं अब माखन बड़ाल की गली के तुम्हारे उस 27 नंबर वाले घर में लौटकर नहीं जाऊंगी। मैं बिंदु को देख चुकी हूं। इस संसार में नारी का सच्चा परिचय क्या है ये मैं पा चुकी हूं। अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और फिर मैंने ये भी देखा है कि वो लड़की ही क्यों न हो, भगवान ने उसका त्याग नहीं किया। उस पर तुम लोगों का चाहे कितना ही जोर क्यों न रहा हो, वो उसका अंत नहीं था। वो अपने अभागे मानव जीवन से बड़ी थी। तुम लोगों के पैर इतने लंबे नहीं थे कि तुम मनमाने ढंग से अपने हिसाब से उसके जीवन को सदा के लिए उनसे दबा कर रख सकते। मृत्यु तुम लोगों से भी बड़ी है। अपनी मृत्यु में वो महान है। वहां बिंदु केवल बंगाली परिवार की लड़की नहीं है, केवल चचेरे भाइयों की बहन नहीं है, केवल किसी अपरिचित पागल पति की प्रवंचिता पत्नी नहीं है। वहां वो अनंत है। मृत्यु की उस वंशी का स्वर उस बालिका के भग्न हृदय से निकलकर जब मेरे जीवन की यमुना के पास बजने लगा तो पहले पहल मानो मेरी छाती में कोई वाण बिंध गया हो। मैंने विधाता से प्रश्न किया, भगवन इस संसार में जो सबसे अधिक तुच्छ है वही सबसे अधिक कठिन क्यों है? इस गली में चार दीवारी से घिरे इस निरानंद स्थान में ये जो तुच्छतम बुद्बुद है वो इतनी भयंकर बाधा कैसे बन गया? तुम्हारा संसार अपनी षठ नीतियों से क्षुधा पात्र को संभाले कितना ही क्यों ना कोई पुकारे, मैं उस अंतपुर की जरा सी चौखट को क्षण भर के लिए भी पार क्यों नहीं कर सकी? ऐसे संसार में ऐसा जीवन लेकर मुझे इस अत्यंत तुच्छ काठ पत्थर की आड़ में ही तिल तिल कर क्यों मरना होगा भला? क्यों? कितनी तुच्छ है ये मेरी प्रतिदिन की जीवन यात्रा। इसके बंधे नियम, बंधे अभ्यास, बंधी हुई बोली, बंधी हुई मार, सब कुछ कितनी तुच्छ है। फिर भी क्या अंत में दीनता के उस नागपाश बंधन की जीत होगी? और तुम्हारे अपने इस आनंद लोक की, इस सृष्टि की हार। लेकिन मृत्यु की बंसी बजने लगी। कहां गई राजमिस्त्रियों की बनाई हुई वो दीवार? कहां गया तुम्हारे घोर नियमों से बंधा वो कांटों का घेरा? कौन सा है वो दुख, कौन सा है वो अपमान जो मनुष्य को बंदी बनाकर रख सकता है? ये लो, मृत्यु के हाथ में जीवन की जय पताका उड़ रही है। तरी मझली बहू, तुझे डरने की अब कोई जरूरत नहीं। मझली बहू के इस तेरे खोल को छिन्न होते एक निमेश भी नहीं लगा। तुम्हारी गली का अब मुझे कोई डर नहीं। आज मेरे सामने नीला समुद्र है, मेरे सिर पर आषाढ़ के बादल। तुम लोगों की रीति नीति के अंधेरे ने मुझे अब तक ढक के रखा था। बिंदु ने आकर क्षण भर के लिए उस आवरण के छेद में से मुझे देख लिया। वही लड़की अपने मृत्यु द्वारा सिर से पैर तक मेरा वो आवरण उघा

उतार दिया। आज बाहर आकर देखती हूं, अपना गौरव रखने के लिए कहीं जगह ही नहीं है। मेरा ये अनाहत रूप, जिनकी आंखों को भाया है, वे सुंदर आज संपूर्ण आकाश से मुझे निहार रहे हैं। अब मछली बहू की खैर नहीं, तुम सोच रहे होगे मैं मरने जा रही हूं। नहीं, डरने की कोई बात नहीं। तुम लोगों के साथ मैं ऐसा पुराना मजाक नहीं करूंगी। मीरा बाई भी तो मेरी ही तरह नारी थी, उनकी जंजीरें भी तो कम भारी नहीं थी। मीरा बाई ने अपने गीत में कहा था, बाप छोड़े माँ छोड़े, जहाँ कहीं भी जो भी है सब छोड़े। लेकिन मीरा की लगन वहीं रहेगी प्रभु। अब जो होना है सो ये लगन ही तो जीवन है। मैं अभी जीवित रहूंगी। मैं बच गई हूँ। जीवित रहूंगी। तुम लोगों के चरणों के आश्रय से छूटी हुई मैं जीवित रहूंगी।

सुनो कहानी में इन दिनों आप सुन रहे हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानियाँ, पत्नी का पत्र। इस कहानी का ये था चौथा और अंतिम भाग, वाचन स्वर ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म सूबेदार से, आवाज़ जी डी कौर की थी। गीत के बोल यंगवीर, रोहिताश और गैक्सी ने की थी। संगीत ऋत्विक और शाइन और राज मावेर का था।

श्रोता, ये गीत आपने सुना फिल्म ओ रोमियो से। आवाजें शुकवंदर सिंह, रेखा भारद्वाज की थी। गीत के बोल गुलजार के और संगीत विशाल भारद्वाज का।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: समय एक छोटे से अंतराल का, शेष कार्यक्रम इस छोटे से अंतराल के बाद।

श्रोता ने गीत आपने सुना फिल्म पुष्पा टू द रूल से, आवाज जावेद अली और मधुबंती बागची की थी। गीत के बोल रकीब आलम सिजू थरवूर के थे, संगीत देवी श्री प्रसाद का था।

0: विविध भारती मुंबई तो हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम चित्रलोक। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz ते। हुण तो कुछ ही पहलां च असी आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो समाचार रिले करांगे। 8:45 ते तुसी सुनोगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का भी उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के

0: खदान में विस्फोट में 90 लोगों की मौत। और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका विश्व कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमरीकी विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मार्को रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। श्री मार्को रूबियो इस महीने की 26 तारीख को होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। श्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: हमने यह समझा, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: श्री सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवा विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रोजगार मेले में आज सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार का मुख्य प्रयास भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करना रहा है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नए भर्ती हुए लोग वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
3: विकसित भारत 2047, जब उस गोल, उस विजन को सामने रखते हैं तो हमारा काम भी बड़ा सुगम हो जाएगा। और हिम्मत से काम करें, अच्छा काम करें, बदलाव में पहल करें। जहां जहां कोई चीज में हमारे नई सोच है, नए आइडियाज हैं, अगर हम सब ने नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट किया, हम भी अपने आप को रिट्रेन करें, रिस्किल करें, अपग्रेड करें हमारी नॉलेज, और आगे बढ़ने के लिए कंटिन्यूस लर्निंग शुड बी अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ।
0: श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद भारत में बुनियादी अर्थव्यवस्था मजबूत और निर्यात में जबरदस्त वृद्धि बनी हुई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल के बाद मई माह में भी निर्यात वृद्धि जारी रही, जो वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। नई दिल्ली में आज श्री गोयल ने कहा कि सरकार ने किसानों को बढ़ती लागत से बचाने के लिए उर्वरकों की बढ़ी कीमतों का बोझ स्वयं वहन किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नए गैस भंडार का पता लगाया है। श्री पुरी ने कहा कि उथली सानू भौगोलिक संरचना से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रतिदिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में सहायता मिलेगी। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: विकसित भारत जी राम जी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। VBG रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की 11 तारीख को अधिसूचित

0: किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली के जामिया नगर में एक दलित महिला के कथित अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और जबरन धर्म परिवर्तन से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने इस संदर्भ में दिल्ली पुलिस आयुक्त से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियू शेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। भारतीय सूचना सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी त्रिलोकीनाथ का आज दोपहर निधन हो गया। वे 79 वर्ष के थे। वे कुछ समय से बीमार थे। श्री त्रिलोकीनाथ ने आकाशवाणी के हिंदी समाचार कक्ष में संपादक के रूप में वर्षों तक अपनी सेवाएं दी। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एतजान खलमा खानाउ से हार का सामना करना पड़ा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक लखनऊ ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 158 रन बना लिए हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने कल पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू से लेकर भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद और कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को अमेरिका के दृष्टिकोण से हिंद प्रशांत क्षेत्र की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। महाराष्ट्र के शिरडी में तोप के गोले बनाने के संयंत्र का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने नई दिल्ली के जिमखाना क्लब को रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए अगले महीने की 5 तारीख तक अपना परिसर सौंपने को कहा। चीन के कोयला खदान विस्फोट में 90 लोगों की मौत। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी ते चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते। आहुन सुनने विविध भारती मुंबई तो अगला प्रोग्राम आपके लिए।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मल

हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमान में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में मीठी मीठी बातों में
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी, मैंने उसे बहुत बहुत

0: पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं किसे दिखाऊं।
1: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठूं।
2: ऐसी अनमोल यादें

प्रस्तुत है कार्यक्रम आज के फनकार। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। एक अभिनेत्री जो अपने अभिनय की शुरुआत स्कूल और कॉलेज के थिएटर से करती है, धीरे धीरे टीवी सीरियल की ओर बढ़ती है, बॉलीवुड में आकर अपनी एक्टिंग के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाती है और आज OTT की क्वीन कहलाती है, वो

बॉलीवुड की ये खूबसूरत अदाकारा आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। 22 मई 1973 को महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मी शेफाली बचपन से ही अभिनय करना चाहती थी। वे एक मॉडल, अभिनेत्री और चित्रकार के रूप में जानी जाती हैं। उनके पिता का नाम सुधाकर शेट्टी और माता का नाम शोभा शेट्टी है। वे अपने माता पिता की इकलौती लाडली संतान हैं और उनका पालन पोषण एक गैर फिल्मी पृष्ठभूमि में हुआ। साल 2000 में उन्होंने निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह से शादी की, जिनके साथ उनके दो

शेफाली शाह का अभिनय करियर गुजराती मंच से शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें कला की ओर बहुत झुकाव था, जिसमें गायन और नृत्य शामिल थे। उन्होंने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण

0: दीवाना हो।
1: शेफाली शाह का अभिनय करियर गुजराती मंच से शुरू हुआ। बचपन से ही उन्हें कला की ओर बहुत झुकाव था, जिसमें गायन और नृत्य शामिल थे। उन्होंने भरतनाट्यम में प्रशिक्षण लिया। उनकी अभिनय यात्रा 10 वर्ष की आयु में गुजराती मंच पर किए नाटक द ओमेन से शुरू हुई, जिसमें उन्होंने डेमियन थॉर्न पर आधारित चरित्र को बखूबी निभाया। इंटर कॉलेजिएट नाटकों में काम करने के साथ साथ उन्होंने गुजराती रंगमंच में काम करके अपनी अभिनय क्षमता का परिचय दिया।

शेफाली शाह ने थिएटर करने के बाद साल 1993 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। बनेगी अपनी बात सीरियल से छोटे पर्दे पर उन्होंने डेब्यू किया, फिर आरोहण, हसरतें, पतझड़, कभी कभी, सी हॉक्स, राहें और रामायण जैसे सीरियलों में अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। शेफाली शाह कमाल की एक्ट्रेस, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। आज उनके नाम 25 से ज्यादा फिल्में हैं और इन सभी फिल्मों में उनका काम बोलता है। उनकी फिल्मी यात्रा की शुरुआत पर बात की जाए तो 1995 में आई राम गोपाल वर्मा की फिल्म रंगीला से उन्होंने डेब्यू किया। इस फिल्म में उनकी भूमिका बहुत छोटी थी।

1998 में रामगोपाल वर्मा की ही एक फिल्म सत्या में शेफाली ने भीकू महात्रे की पत्नी प्यारी महात्रे की भूमिका निभाई, जो मनोज बाजपेयी द्वारा निभाई गई एक माफिया सरगना की पत्नी थी। इस फिल्म में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड जीता। उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर के लिए नामांकित किया गया और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का

एक साल बाद यानी 2001 में उन्हें मीरा नायर की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म मानसून वेडिंग में लिया गया। इस फिल्म में शेफाली ने रिया वर्मा की भूमिका निभाई। ये फिल्म अपने समय से आगे की फिल्म मानी गई। रिया वर्मा की भूमिका में शेफाली वास्तविक पात्रों में से एक थी। उन्होंने बचपन में बहुत दर्द का अनुभव किया था, जिसके कारण रिया वर्मा रिश्ता नहीं बना सकी और अविवाहित रहने का फैसला करती हैं। एक ऐसा किरदार शेफाली का था जो सबसे जटिल था। इसे शेफाली ने बखूबी निभाया। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा मिली और

सत्या में अपने शानदार काम के बावजूद शेफाली शाह को उतनी फिल्मों के प्रस्ताव नहीं मिले जितनी उन्हें उम्मीद थी। विपुल शाह द्वारा बनाई गई गुजराती फिल्म दरिया छोरू में कास्ट किया गया। विपुल शाह की इस फिल्म के लिए शेफाली शाह को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2000 में निर्माता निर्देशक आदित्य चोपड़ा की फिल्म आई मोहब्बतें। इस रोमांटिक फिल्म में

2005 में विपुल शाह के निर्देशन में शेफाली ने पारिवारिक मेलोड्रामा वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम में काम किया। इस फिल्म में वे अमिताभ बच्चन की पत्नी और अक्षय कुमार की माँ के रोल में नजर आती हैं। सुमित्रा ठाकुर के रूप में उनकी भूमिका एक सख्त माँ की थी, जो अपने पति को अपने गैर जिम्मेदार बेटे को अनुशासित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस फिल्म में शानदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए दूसरी बार फिल्म फेयर का नामांकन मिला। अभिनय के वक्त वो अमिताभ बच्चन से आधी उम्र की और अक्षय कुमार से लगभग 4 साल छोटी थी, लेकिन अपने अभिनय के दमखम से उन्होंने भूमिका में जान डाल दी।

निर्देशक फिरोज अब्बास खान की फिल्म गांधी माय फादर का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है। 2007 में आई इस फिल्म में दर्शन जरीवाला और अक्षय खन्ना के साथ कस्तूरबा की भूमिका में शेफाली शाह नजर आती हैं। ये फिल्म महात्मा गांधी के सबसे बड़े बेटे हरिलाल गांधी की जीवनी पर आधारित फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली ने कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाई, जो अपने पति महात्मा गांधी और बेटे हरिलाल के बीच आजीवन संघर्ष से त्रस्त हैं। इस फिल्म में उनकी भूमिका ज्यादा आंतरिक है, क्योंकि वो चुपचाप सब कुछ देखती हैं कि हरिलाल क्या कर रहा है। उन्होंने अपने दो अहम दृश्यों में बेहतरीन काम किया, जिसमें वे गांधी पर हरिलाल को छात्रवृत्ति न देने के लिए भड़कती हैं, और जहां वे धर्म परिवर्तन के बाद हरिलाल से भिड़ जाती हैं। कस्तूरबा के रूप में उनका अभिनय शानदार नजर आता है। टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उन्हें इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार और 2008 में जी सिने अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया।

2007 में ही फिल्म द लास्ट लियर में शेफाली ने अमिताभ बच्चन के साथ परेशान और चिड़चिड़ी स्वभाव वाली और लिव इन पार्टनर की भूमिका निभाई है। ये एक ऐसी भूमिका थी जिसे वे अपनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ भूमिका मानती हैं। इस फिल्म का प्रीमियर 2007 के टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ। फिल्म को सराहना के साथ ही 55वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का नाम दिया गया और शेफाली शाह ने सहायक अभिनेत्री का खिताब भी जीता। इस फिल्म के निर्देशक थे ऋतुपर्णो घोष।

सुभाष घई की क्राइम थ्रिलर फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में शेफाली ने रीमा माथुर की भूमिका निभाई। 2008 में आई इस फिल्म में शेफाली एक बंगाली कार्यकर्ता और एक उर्दू प्रोफेसर अनिल कपूर की पत्नी के अहम रोल में नजर आती है।

2011 में उन्होंने विपुल शाह के प्रोडक्शन में कुछ लव जैसा फिल्म में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई, जो जेल से भाग रहे एक अपराधी राहुल बोस के साथ एक रोमांटिक दिन बिताती है। कहते हैं अपने इस रोल को समझने के लिए शेफाली ने ठाणे जेल का दौरा भी किया और अपने चरित्र को समझने के लिए कैदियों से बात भी की।

साल की अनुपस्थिति के बाद शेफाली शाह ने मोनाली ठाकुर के साथ नागेश कुकनूर की सामाजिक समस्या पर बनी फिल्म लक्ष्मी में काम किया। इस फिल्म में शेफाली शाह ने एक वैश्याले की मालकिन ज्योति की भूमिका अदा की है। 2014 में आई ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित फिल्म थी। दिल धड़कने दो, जी हाँ, 2015 में निर्देशिका जोया अख्तर की ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म आई। इस फिल्म में शेफाली अनिल कपूर की पत्नी के रोल में नजर आई। फिल्म के अन्य कलाकार प्रियंका चोपड़ा और रणवीर सिंह हैं। इस फिल्म में उनके प्रभावी अभिनय के लिए तीसरा सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर नामांकन उन्हें मिला।

मल्होत्रा की अमेरिकी स्पोर्ट्स ड्रामा वॉरियर के रीमेक में उन्हें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली। इस फिल्म में उनके चरित्र मारिया फर्नांडिस को एक ऐसी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो अपने व्याभिचारी पति के विवाह के बाद हुए अवैध बच्चे को स्वीकार करती है। शेफाली के बारे में कहा जाता है कि वो अपने किरदार में एक ऐसी सादगी लाती हैं जो मुख्य धारा के सिनेमा में शायद ही कभी देखी जाती है। फिल्म जूस नीरज घायवान द्वारा 2017 में आई एक ऐसी ही फिल्म है। इस फिल्म में शेफाली की निगाहें शब्दों से कहीं अधिक बयां करती है और उनका अभिनय लाजवाब नजर आता है।

वंस अगेन रोमांटिक फिल्म का जिक्र भी यहाँ करना बहुत जरूरी है। 2018 में आई इस फिल्म को कमल सेठी ने लिखा और निर्देशित किया। शेफाली शाह और नीरज का भी अभिनीत ये फिल्म दो मध्यम वर्गीय आयु वर्ग के लोगों की कहानी है। इस फिल्म में काम करने के बाद शेफाली ने कहा कि वो लंबे समय से इस तरह की फिल्म का इंतजार कर रही थी। शेफाली इन सभी फिल्मों के अलावा ब्रदर्स, द जंगल बुक, कमांडो 2 और डॉक्टर जी जैसी फिल्मों के लिए भी काफी प्रसिद्ध हैं।

शेफाली शाह ने इन सभी फिल्मों में अपनी एक्टिंग और किरदार से दर्शकों का दिल जीत लिया हो, लेकिन ये स्टारडम तब और बढ़ा जब उन्होंने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा। जी हाँ, शेफाली शाह ने साल 2019 में आई वेब सीरीज दिल्ली क्राइम से अपनी प्रतिभा की एक अलग ही मिसाल पेश की। 2023 में उन्हें दिल्ली क्राइम में उनके अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। इस सीरीज में उनकी प्रतिभा जो दर्शकों के सामने आई उसे देखकर हर कोई अवाक रह गया। इस वेब शो में शेफाली ने डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी का किरदार निभाया, जिन्हें दिल्ली में एक क्रूर सामूहिक बलात्कार की जांच करने का काम सौंपा जाता है।

ब्लैक कॉमेडी डार्लिंग्स में शेफाली और आलिया भट्ट माँ और बेटी के रूप में अभिनय करती हैं। इस फिल्म को जसमीत केवीन द्वारा सहलिखित और निर्देशित किया गया है। ये उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म है जिसकी पटकथा परवेज शेख ने लिखी। फिल्म में विजय वर्मा और रोशन मैथ्यू भी

2022 में आई ह्यूमन में शेफाली ने डॉक्टर गौरीनाथ की भूमिका निभाई। विपुल शाह द्वारा निर्देशित ये शो दवा कंपनियों और बड़े निजी अस्पतालों के बीच साठगांठ की पड़ताल करता है। वहीं सोशल थ्रिलर फिल्म जलसा में उन्होंने विद्या बालन के साथ अभिनय किया। वे इसमें रुखसाना नाम की महिला का किरदार निभाती नजर आती हैं, जिसकी बेटी एक हिट एंड रन दुर्घटना का शिकार हो जाती है। इस फिल्म के लिए उन्हें मेलबर्न के वार्षिक भारतीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला।

अविनाश अरुण द्वारा सहलिखित और निर्देशित थ्री ऑफ अस 2023 की फिल्म है। इसमें शेफाली ने शैलजा देसाई की भूमिका निभाई है, जिसे डिमेंशिया है और वो अपने बचपन को याद करने के लिए यात्रा पर निकलती हैं और अपने दर्दनाक अतीत का सामना करती हैं। स्वानंद किरकिरे इस फिल्म में उनके पति और जयदीप अहलावत बचपन के दोस्त की भूमिका में हैं। इससे पहले 2020 में शेफाली शाह ने दो स्व अभिनीत कोविड-19 आधारित लघु फिल्मों समडे और हैप्पी बर्थडे मम्मी जी में लेखन और निर्देशन भी किया। 2025 में निर्देशक विपुल अमृतलाल शाह की आगामी फिल्म हिसाब, इस फिल्म में शेफाली शाह, जयदीप अहलावत और अभिषेक सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

0: शेफाली शाह को अपने बेजोड़ अभिनय के लिए कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, फिल्म फेयर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार शामिल हैं। सेट पर सबसे ज्यादा खुश रहने वाली बहुमुखी प्रतिभा की धनी अभिनेत्री शेफाली ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो जो भूमिकाएं निभाती है वे उस फिल्म का मुख्य किरदार होती हैं और वो अपनी भूमिकाओं में खामोशी को ढूंढती हैं। शेफाली अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि वास्तव में मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कलाकार बनूंगी और फिल्मों में यूं काम करूंगी। लंबे वक्त तक मुझे पता ही नहीं था कि मैं पूरी तरह से अभिनय करूंगी, ये बस होता गया और जो भी किरदार मैंने निभाए वो बहुत मजबूत किरदार बनकर उभरे हैं। तो ये था अभिनेत्री शेफाली शाह पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार। आलेख, शोध और स्वर मंदाकिनी जोशी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती राष्ट्रीय सेवा छाया गीत कार्यक्रम के लिए थोड़ा सा इंतजार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: नमस्कार। कहते हैं जिसे मोहब्बत हो गई उसे अपने महबूब के अलावा दुनिया में कुछ नजर नहीं आता। इश्क में डूबे इंसान को अपने महबूब की हर चीज दुनिया जहान की सबसे खूबसूरत चीज नजर आती है। उसकी मासूमियत, उसकी सादगी, नाजुकी, उसका हुस्न, उसकी नजरें। जिसने तेरी नजर को देख लिया उसको दुनिया नजर नहीं आती। सच, उन्हें देखकर ये लगता है जैसे हर अधूरी मोहब्बत मुकम्मल हो गई हो।

मिटता भीगी हुई एक शाम का मंजर, तेरी आंखें, आप इश्क में हैं और दिल में जख्म ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन तमाम दर्द और जख्म के बाद भी दिल लगाना भला कौन छोड़ पाता है। जख्म झेले, दाग भी खाए बहुत, दिल लगाकर हम तो पछताए भी बहुत। वो तमाम पन्ने जिन पर लिखी है तेरी मेरी कहानी, सच कहूं इश्क हो जाएगा मेरी दास्ताने इश्क से, रात भर जागा करोगे इस कहानी के लिए।

चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मुद्दत के बाद आज उसे देखकर एक बार दिल तो धड़का मगर फिर संभल गया। उनके आने के बाद भी देर तलक उनका इंतजार रहा। कभी चांदनी रातों में तेरे ख्वाबों में खो जाते थे हम, अब अकेले रातों में तेरी यादों में बिखर जाते हैं हम। शाम होते ही चिरागों को बुझा देता हूं, दिल ही काफी है तेरी याद में जलने के लिए। उजड़ उजड़ कर संवरती है तेरे हिजर की शाम, उजड़ उजड़ कर संवरती है तेरे हिजर की शाम। न पूछ कैसे गुजरती है तेरे हिजर की शाम।

जाने क्यों हमें इस दम तुम्हारी याद आती है, जब आंखों में सितारे चमकते हैं शाम से पहले। दिल की चाहत होती है तुम बैठो कुछ देर हमारे सामने यकीन के लिए। दवा जरूरी तो नहीं हर वक्त सुकून के लिए। तुम्हें पता है जब तेरा दर्द मेरे साथ वफा करता है, एक समंदर मेरी आंखों से बहा करता है। ये शाम की तन्हाइयां तेरी यादों के काफिले, एक कसक, एक टीस, एक सूनापन, एक अधूरी सी आहट। दर्द खामोश रहा, टूटती आवाज रही।

जुगनू जले बुझे मेरी पलकों पे सुबह तक, जब भी तेरा ख्याल सरे शाम आ गया। एक ही मिट्टी से हम दोनों बने हैं, तुझ में और मुझ में मगर फासला यूं कितना है। पूछते हो तो सुनो, है और तो कोई सबब उसकी मोहब्बत का नहीं, बात इतनी है कि वो मुझसे जफा करता है। वो मुझको टूट के चाहेगा, छोड़ जाएगा, मुझे खबर थी उसे ये हुनर भी आता है। कब लौटा है बहता पानी, बिछड़ा साजन, रूठा दोस्त, हमने तो उसको अपना जाना जब तक हाथ में दामा था। वक्त के बदलने से दिल कहां बदलते हैं जाना, वक्त के बदलने से दिल कहां बदलते हैं जाना। आपसे मोहब्बत थी, आपसे मोहब्बत है।

0: जी से।
1: अक्सर पूछते हैं लोग, किसके लिए लिखते हो? अक्सर कहता है दिल, काश कोई होता। साथियों, इन्हीं अफसानों के साथ पूरा होता है आज के छाया गीत का सफर। गीत संगीत की ऐसी ही सुरीली महफिल में फिर होगी मुलाकात। शिफाली कपूर को दीजिए इजाजत, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
2: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: वीको टर्मरिक

0: त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही, वीको टर्मर क्रीम। मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: विविध भारती मुंबई तो हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम छाया गीत। असी आकाशवाणी ते चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते। हुन पेश ने मुख प्रदेशक खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज 19वें रुजगार मेले विच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही वक्-वक् सरकारी विभागां ते संगठनां विच नौकरियां प्राप्त करन वाले 51,000 तों वध नौजवानां नूं नियुक्ति पत्र वंडे। श्री मोदी ने कहा कि नौजवान भारत नूं विकसित राष्ट्र बनाउण विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाउणगे। अंबाला विच रेल मंडल वल्लों आयोजित राष्ट्रीय रुजगार मेले विच 120 नौजवानां नूं नियुक्ति पत्र दित्ते गए। श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी दे वाइस चांसलर प्रोफेसर दिनेश कुमार ने अज वक्-वक् कंपनियां विच चुने गए 94 विद्यार्थियों नूं नियुक्ति पत्र वंडे। केंद्र सरकार ने जनतक सलाह मशवरे लई विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 दे तहत ड्राफ्ट नियम प्रकाशित किते ने। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कई देशों के मुकाबले भारत विच तेल दियां कीमतां विच मामूली वाधा होया। हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार कोश ने अज रोहतक विच पंडित भागवत दयाल शर्मा सेहत विज्ञान यूनिवर्सिटी के डिग्री वंड समारोह विच 950 विद्यार्थियों नूं डिग्रियां ते 68 विद्यार्थियों नूं सोने दे तमगे प्रदान किते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी

योजना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-doj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो इस वेले तुसी सुन रहे हो सुरा नाल सजी शाम प्रोग्राम दा नाम है सुर सांझ। प्रोग्राम सुर सांझ दा अगला गीत पेश कर रहे हैं हंसराज हंस दी आवाज़

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापार वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।

0: रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी, जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांस्की प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या 90 हो गई है। ये विस्फोट कल क्यूआन काउंटी की लियुशेन्यू कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार और दुर्घटना के कारणों की जाँच के आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एक्तुकोव से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एहतजान खालमा से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 किलोग्राम भार वर्ग और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक के मुकाबले जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। इस वेले रात दे 11:05 ते 11 सेकंड होए ने। साडी अज दी सभा हुण खत्म हुंदी है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडे नाल फेर मुलाकात होवेगी। तद तक ले सानू दवो इजाजत। जय हिंद।